शुभ प्रभात दोस्तों, एक नई सुबह, नई रोशनी और नए विचारों के साथ आपका स्वागत है हमारे आध्यात्मिक कार्यक्रम दिव्य दर्शन में। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे सकारात्मक सोच, मन की स्थिरता और दिन की शुरुआत शांति और ऊर्जा के साथ करने की। तो चलिए एक गहरी सांस लीजिए, मन को हल्का कीजिए और हमारे साथ इस सुंदर सुबह की यात्रा शुरू कीजिए। और आज हमारे साथ एक प्रबुद्ध मेहमान मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे आध्यात्म के बारे में, धर्म के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं दिव्य दर्शन।

0: नमः। आइए दोस्तों, दिव्य दर्शन के इस बहुत ही पवित्र और प्यारे से प्रोग्राम में आप सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूं। जैसा मैंने कई बार कहा, दिव्य दर्शन यानी कि अपने आप को पहचानने का ये प्रोग्राम है, जहां पर हम एक दूसरे से संबंधित बिल्कुल साधारण मनुष्यों से, साधारण इंसानों से बातचीत करते हैं कि ये विषय दरअसल आम जनता के लिए क्या है। आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद है वो है प्रवीण कुलकर्णी साहब। हम उन्हीं से बातचीत करेंगे कि वो क्या समझते हैं, क्या हमें बताते हैं, कैसी वो प्रैक्टिसेस करते हैं, कैसा उनका जीवन है। तो मैं प्रवीण जी से आभार प्रकट करते हुए, उनका स्वागत करते हुए उनसे गुजारिश करूंगा कि प्रवीण जी अपने बारे में थोड़ा सा हमें बताइए, हमारे सुनने वालों को बातचीत कीजिए उनसे कि आप कौन हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं।
1: सबसे पहले नमस्कार और अभिनंदन और आभार प्रकट करना चाहूंगा समीर जी कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं अपने सर्वसाधारण विचार आपके सामने प्रस्तुत करूं। तो पेशे से मैं एक फ्रीलांस ट्रांसलेटर हूं
0: जी,
1: और कंटेंट राइटिंग करता हूं, माने वेब कंटेंट जो होता है वो
0: जी।
1: मैं कर्नाटका से हूं और बस अपनी 60 साल की जिंदगी में जो भी सीखा है वो आपके सामने बातचीत के थ्रू शेयर करना चाहूंगा बस।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो दोस्तों, जाहिर से बात है, जब व्यक्ति, जैसे प्रवीण जी ने बताया कि वो कंटेंट राइटर हैं, तो उनके पास शब्द हैं, उन्होंने वाक्यों को बनाना सीखा है, वो जानते हैं शब्दों का मतलब क्या होता है, उनमें कितनी गरिमा होती है। मैं पूरी पूरी उम्मीद करता हूं कि आज का ये विषय, आज की ये बातचीत बहुत समझदारी से भरपूर होगी, हमें कुछ तयशुदा तौर पर सीखने को मिलने वाला है। तो प्रवीण जी, चलिए बिल्कुल आसान भाषा में, बिल्कुल साधारण इंसान के लिए बात करते हुए करें, ये जो स्पिरिचुअलिटी है, यानी कि हिंदी में कहें तो आध्यात्म, इसको आप कैसे समझाएंगे, क्या मतलब है इसका?
1: आध्यात्म, आद्य माने सबसे पहला, आत्मा माने अपनी आत्मा, आध्यात्म माने जो अपने आत्मा से शुरू हुआ, आत्मा माने खुद, जो मुझे जो चीज पहले रखती है, समथिंग दैट कीप्स मी इन फ्रंट, समथिंग दैट ओरिएंट्स मी, दैट इज अध्यात्म। वैसे स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करूं तो मेरी इंट्रोडक्शन हुई स्पिरिचुअलिटी में मेरे स्कूल के सालों में।
0: ओह, दैट्स नाइस।
1: अध्यात्म मेरे ख्याल से ये होता है कि खुद की आत्मा को समझें, खुद की आत्मा को समझें और वो जो निर्माता है उसके साथ अपना संबंध जोड़ें और वो संबंध समझें। मेरे लिए ये अध्यात्म है।
0: ओके, बिल्कुल ही सरल भाषा में, बिल्कुल ही आसान तरीके से प्रवीण जी ने जैसे हमें बताया है दोस्तों, उसको लिटरली ही लीजिए एक बार को, क्योंकि उससे समझने में, आगे की बातचीत को समझने में जरा आसानी हो जाएगी। सुंदर। अगर आज के जो जनरेशन है, ठीक है, हम तो एक जनरेशन पहले की बात कर रहे हैं जिन्होंने कुछ समझा, जिन्होंने कुछ महसूस किया, अनुभव किया अपने

0: डेज
1: जी
0: आई स्टडीड इन इंग्लिश मीडियम, एक जेसुइट स्कूल में पढ़ा मैं, और उन दिनों हमारे लिए एक माने पूरे दिन में एक क्लास वो होता था जिसे कहा जाता था मॉरल साइंस।
1: मॉरल साइंस
0: बीइंग अ जेसुइट स्कूल, जो कैथोलिक बच्चे थे वो बच्चे अपना रिलीजन पढ़ते थे, और हम लोग जो नॉन कैथोलिक थे हमें मॉरल साइंस का क्लास लिया जाता था। तो उस मॉरल साइंस के क्लास में आई वॉज इंट्रोड्यूस टू द टीचिंग्स एंड प्रीचिंग्स ऑफ यू नो स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती। और ऐसे चलते चलते जब मैं कॉलेज के मेरे दिनों में मेरी इंट्रोडक्शन हुई स्वामी चिन्मयानंद के राइटिंग्स पे
1: जी,
0: तो ये तो मैंने बहुत सालों से है ही
1: जी।
0: और अध्यात्म ना जैसे मैंने कहा अध्यात्म अनादि है अनंत है। आज की पहले की पीढ़ी में था और हमारे पहले की जो पीढ़ी थी उनको भी यही लगता था कि हमारे जैसे हमारे बच्चे नहीं हैं
1: जी।
0: लेकिन आज हमें हम में से भी कई लोगों को ऐसा लगता हो कि हमारे बच्चे हमारे जैसे है नहीं। लेकिन मैं यहां ये कहूंगा कि उतना वक्त भी तो मिलना चाहिए अगली पीढ़ी को कि पिछली पीढ़ी को पढ़ें, उनका काम समझें, जानें। उतना अगर हम उन्हें वक्त दें तो शायद वो पढ़ भी लें। सो लाइक आई सेड, स्पिरिचुअलिटी इज the understanding of the self, the inner self and the higher self, which could be interpreted as the mind, the soul and the universe,
1: right?
0: लेकिन इन चीजों को समझने के लिए हमारी जो पीढ़ी है अगली पीढ़ी उन्हें उतना वक्त भी देना चाहिए, उन्हें उतना अवेयरनेस और उतना एक्सपोजर भी देना चाहिए।
2: शुभ प्रभात दोस्तों, एक नई सुबह, नई रोशनी और नए विचारों के साथ आपका स्वागत है हमारे आध्यात्मिक कार्यक्रम दिव्य दर्शन में। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे सकारात्मक सोच,

शुभ प्रभात दोस्तों, एक नई सुबह, नई रोशनी और नए विचारों के साथ आपका स्वागत है हमारे आध्यात्मिक कार्यक्रम दिव्य दर्शन में। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे सकारात्मक सोच, मन की स्थिरता और दिन की शुरुआत शांति और ऊर्जा के साथ करने की। तो चलिए एक गहरी सांस लीजिए, मन को हल्का कीजिए और हमारे साथ इस सुंदर सुबह की यात्रा शुरू कीजिए। और आज हमारे साथ एक प्रबुद्ध मेहमान मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे आध्यात्म के बारे में, धर्म के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं दिव्य दर्शन।

आइए दोस्तों, दिव्य दर्शन के इस बहुत ही पवित्र और प्यारे से प्रोग्राम में आप सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूं। जैसा मैंने कई बार कहा, दिव्य दर्शन यानी कि अपने आप को पहचानने का ये प्रोग्राम है, जहां पर हम एक दूसरे से संबंधित बिल्कुल साधारण मनुष्यों से, साधारण इंसानों से बातचीत करते हैं कि ये विषय दरअसल आम जनता के लिए क्या है। आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद है वो हैं प्रवीण कुलकर्णी साहब। हम उन्हीं से बातचीत करेंगे कि वो क्या समझते हैं, क्या हमें बताते हैं, कैसी वो प्रैक्टिसेस करते हैं, कैसा उनका जीवन है। तो मैं प्रवीण जी से आभार प्रकट करते हुए, उनका स्वागत करते हुए उनसे गुजारिश करूंगा कि प्रवीण जी अपने बारे में थोड़ा सा हमें बताइए, हमारे सुनने वालों को बातचीत कीजिए उनसे कि आप कौन हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं।

0: सबसे पहले नमस्कार और अभिनंदन और आभार प्रकट करना चाहूंगा समीर जी कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं अपने सर्वसाधारण विचार आपके सामने प्रस्तुत करूं। तो पेशे से मैं एक फ्रीलांस ट्रांसलेटर हूं
1: जी,
0: और कंटेंट राइटिंग करता हूं, माने वेब कंटेंट जो होता है वो।
1: जी जी जी।
0: मैं कर्नाटका से हूं और बस अपनी 60 साल की जिंदगी में जो भी सीखा है वो आपके सामने बातचीत के थ्रू शेयर करना चाहूंगा बस।
1: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो दोस्तों, जाहिर सी बात है, जब व्यक्ति, जैसे प्रवीण जी ने बताया कि वो कंटेंट राइटर है, तो उनके पास शब्द हैं, उन्होंने वाक्यों को बनाना सीखा है, वो जानते हैं शब्दों का मतलब क्या होता है, उनमें कितनी गरिमा होती है। मैं पूरी पूरी उम्मीद करता हूं कि आज का ये विषय, आज की ये बातचीत बहुत समझदारी से भरपूर होगी, हमें कुछ तयशुदा तौर पर सीखने को मिलने वाला है। तो प्रवीण जी, चलिए बिल्कुल आसान भाषा में, बिल्कुल साधारण इंसान के लिए बात करते हुए करें, ये जो स्पिरिचुअलिटी है, यानी कि हिंदी में कहें तो आध्यात्म, इसको आप कैसे समझाएंगे, क्या मतलब है इसका?
0: अध्यात्म, आद्य माने सबसे पहला, आत्मा माने अपनी आत्मा, अध्यात्म माने जो अपने आत्मा से शुरू हो, आत्मा माने खुद, जो मुझे मुझे जो चीज पहले रखती है, समथिंग दैट कीप्स मी इन फ्रंट, समथिंग दैट ओरिएंट्स मी, दैट इज अध्यात्म। वैसे स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करूं तो मेरी इंट्रोडक्शन हुई स्पिरिचुअलिटी में मेरे स्कूल के सालों में।
1: ओह, दैट्स नाइस।
0: अध्यात्म मेरे ख्याल से ये होता है कि खुद की आत्मा को समझें।
1: जी।
0: खुद की आत्मा को समझें और वो जो निर्माता है उसके साथ अपना संबंध जोड़ें और वो संबंध समझें। मेरे लिए ये अध्यात्म है।
1: ओके, बिल्कुल ही सरल भाषा में, बिल्कुल ही आसान तरीके से प्रवीण जी ने जैसे हमें बताया है दोस्तों, उसको लिटरली ही लीजिए एक बार को, क्योंकि उससे समझने में, आगे की बातचीत को समझने में जरा आसानी हो जाएगी। सुंदर। अगर आज के जो जनरेशन है, ठीक है, हम तो एक जनरेशन पहले की बात कर रहे हैं जिन्होंने कुछ समझा, जिन्होंने कुछ महसूस किया, अनुभव किया, अपने चारों तरफ देखा, अपने बड़ों लोगों को ऑब्जर्व किया और कुछ मान्यताएं हमको सिखाई गई, हमने बनाई। लेकिन यही चीज अगर हम आज की जनरेशन को समझाना चाहें तो आज की जनरेशन कुछ भी आध्यात्मिक आपको दिखाई देती है या सिर्फ बस मजे कर रही है, या फिर यूं कह लीजिए फैशन है तो उसको फॉलो करते चलो, कुछ ऐसा हो रहा है, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप?
0: अध्यात्म तो पहले से ही है, माने अनादि और अनंत है
1: जी।
0: अध्यात्म का तो ना ही, अध्यात्म की तो ना ही शुरुआत हुई ना ही उसका अंत होगा। जैसे मैंने कहा, आई वॉज इंट्रोड्यूस टू स्पिरिचुअलिटी ड्यूरिंग माई स्कूल डेज। आई स्टडीड इन इंग्लिश मीडियम, एक जेसुइट स्कूल में पढ़ा मैं। और उन दिनों हमारे लिए एक, माने पूरे दिन में एक क्लास वो होता था जिसे कहा जाता था मॉरल साइंस।
1: मॉरल साइंस,
0: बीइंग अ जेसुइट स्कूल, जो कैथोलिक बच्चे थे वो बच्चे अपना रिलीजन पढ़ते थे और हम लोग जो नॉन कैथोलिक थे हमें मॉरल साइंस का क्लास लिया जाता था। तो उस मॉरल साइंस के क्लास में आई वॉज इंट्रोड्यूस टू द टीचिंग्स एंड प्रीचिंग्स ऑफ यू नो स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती। और ऐसे चलते चलते जब मैं कॉलेज के मेरे दिनों में मेरी इंट्रोडक्शन हुई स्वामी चिन्मयानंद के राइटिंग्स पे
1: जी,
0: तो ये तो मैंने बहुत सालों से है ही
1: जी।
0: और अध्यात्म ना, जैसे मैंने कहा, अध्यात्म अनादि है, अनंत है। आज की पहले की पीढ़ी में था और हमारे पहले की जो पीढ़ी थी उनको भी यही लगता था कि हमारे जैसे हमारे बच्चे नहीं हैं
1: जी।
0: लेकिन लेकिन आज हमें हम में से भी कई लोगों को ऐसा लगता हो कि हमारे बच्चे हमारे जैसे हैं नहीं। लेकिन मैं यहां ये कहूंगा कि उतना वक्त भी तो मिलना चाहिए अगली पीढ़ी को कि पिछली पीढ़ी को पढ़ें, उनका काम समझें, जानें। उतना अगर हम उन्हें वक्त दें तो शायद वो पढ़ भी लें। सो लाइक आई सेड, स्पिरिचुअलिटी इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेल्फ, द इनर सेल्फ एंड द हायर सेल्फ, which could be interpreted as the mind, the soul, and the universe.
1: Right.

0: लिए हमारी जो पीढ़ी है, अगली पीढ़ी, उन्हें उतना वक्त भी देना चाहिए, उन्हें उतना अवेयरनेस और उतना एक्सपोजर भी देना चाहिए, जहां से ये बच्चे कुछ समझ सकें।
1: जी।
0: वो समझते नहीं है, इसका इसका थोड़ा दोष तो हम पर भी आता है कि हमने उन्हें समझाया नहीं। ये होता है कि समझाने वाला और समझने वाला जब दोनों मोर और लेस एक ही प्लेन पे,

0: certain level of maturity, understanding.
1: Correct. So the point is, G.
0: वो अचार अचार इमीडिएटली मैच्योर नहीं होता है.

0: सारे मसाले डाले जाते हैं, मसाले उस चीज में, नींबू हो या आम हो, अचार में मिलजुल गुल जाने के बाद तब जाके अचार तैयार होता है. लाइकवाइज वी ऑल्सो नीड टू इन्वेस्ट इन अवर नेक्स्ट जनरेशन. वी नीड टू इंट्रोस्पेक्ट फॉर आवर सेल्स एंड वी नीड टू इंट्रोस्पेक्ट, वी नीड टू गिव देम ऑल्सो टाइम टू इंट्रोस्पेक्ट. इंट्रोस्पेक्शन पे एक छोटी सी कविता मुझे याद आती है डॉक्टर हरवंश राय बच्चन की
1: जी.
0: और ये कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी का इसके साथ संबंध है या नहीं है मुझे पता नहीं है, बट माय स्पिरिचुअलिटी ऑफ लाइफ हैज बीन दिस, माय अप्रोच टू लाइफ हैज बीन दिस, कि हरवंश राय जी की वो कविता कि
2: ओम भास्कराय नमः.
1: मैं हूं आपका रेडियो दोस्त समीर.

Hello, hello, hello. Mic check, 1, 2, 3. Energy check. Chai ready? Dil ready? मैं हूँ तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट शो बातें इधर की उधर की, जहाँ बातें सिर्फ होती नहीं, घुमा फिरा कर दिल तक पहुँचती हैं। यहाँ हम गॉसिप नहीं करते, हम हिस्ट्री को थोड़ा सा फन बना देते हैं। यहाँ फैक्ट्स बोर नहीं करते, वो डांस करते हुए आते हैं। कभी किसी चाय की कहानी में दुनिया देख लेते हैं, और कभी किसी सिंपल इंसान की स्टोरी में रेवोल्यूशन पकड़ लेते हैं। तो वॉल्यूम थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, स्माइल थोड़ी सी और वाइड कर दीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट में आपकी सोच थोड़ी सी अपग्रेड जरूर होने वाली है। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ये है बातें इधर की उधर की, ओनली ऑन SN रेडियो एंड रेडियो तात्या भील 90.8 FM। दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाली हूँ जो हम सबके अंदर कहीं न कहीं बैठी होती है। मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं मैनेज कर लूंगी, मैं बहुत स्ट्रांग हूं। लेकिन सच बताऊं, कभी कभी ये स्ट्रेंथ नहीं होती, ये थकान होती है। लंदन की सियोन जोन्स का एक केस सुन लीजिए और खुद ही जज करिए। उनके फादर ICU में एडमिट हुए। डॉक्टर से बात करना, मेडिकल नोट्स लेना, ट्रीटमेंट समझना, अपडेट्स लेना, सब कुछ उन्होंने अकेले हैंडल किया, हर चीज। रिजल्ट, स्ट्रेस इतना बढ़ गया कि उनके बाल झड़ने लगे उम्र से पहले। फिर भी उन्होंने किसी से हेल्प नहीं मांगी। क्यों? क्योंकि आजकल का नया ट्रेंड है ना, हाइपर इंडिपेंडेंस, हर चीज हाइपर, हर चीज खुद करना, फिर किसी पे डिपेंडेंट मत होना, और इमोशनली भी खुद को सिर्फ मिसहैंडल करते रहना हर समय। साइकोलॉजिस्ट कैथलीन सैक्सटन कहती हैं, आज के टाइम में लोग आई डोंट नीड एनीवन को पावर समझने लग गए हैं। लेकिन रियलिटी में ये लोनलीनेस, बर्नआउट और डिस्टेंसेस क्रिएट करता है और कुछ नहीं। सोचिए, अगर आप हमेशा सब कुछ खुद करते रहोगे तो लोग इवेंचुअली मान लेंगे इसे हेल्प की जरूरत ही नहीं है, और फिर जब सच में जरूरत होगी शायद कोई आगे ही नहीं आएगा। बहुत बार ये हैबिट बचपन से शुरू होती है, जब इमोशनल सपोर्ट कंसिस्टेंट नहीं मिलता, जब ट्रस्ट्स बार बार ब्रेक होते हैं, जब बच्चा क्वाइटली यही डिसाइड कर लेता है कि फाइन, मैं खुद कर लूंगा सब कुछ, और वो सर्वाइवल मोड अडल्टहुड तक चलता है। लेकिन सर्वाइवल और कनेक्शन अलग चीजें हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। हम इंसान हैं, कोई सोलो प्रोजेक्ट नहीं। उर्वशी लाड 43 साल तक सिंगल रही। उन्हें लगता था हेल्प मांगना मतलब वीक दिखना है। उन्होंने थेरेपी और जर्नलिंग स्टार्ट की, स्लोली खुद को ओपन करना सीखा। उन्होंने बताया, पहली बार जब उन्होंने किसी को कॉफी के लिए पे करने दिया, उन्हें बहुत ऑकवर्ड फील हुआ। कॉफी लेने देना भी अनकंफर्टेबल लग रहा था, लेकिन वही स्मॉल स्टेप उनकी लाइफ चेंज कर गया। आज वो शादी करने वाली हैं। कभी कभी हीलिंग ग्रैंड जेस्चर नहीं, छोटी सी कॉफी से शुरू होता है। सारा हार्टिश एक बड़ी सिस्टम को सजेस्ट करती हैं। एक ऐसा फ्रेंड या पार्टनर चूज करो जो आपसे थोड़ा डिफरेंट हो। वीक में एक बार उसके साथ बैठो, अपना वर्कलोड शेयर करो, उनसे एडवाइस मांगो। बस एक एडवाइस मांगना ये सिग्नल देता है कि तुम मैटर करते हो मेरे जीवन में। और डॉक्टर नादिया रहमान भी यही कहती हैं कि हम सब बायोलॉजिकली कनेक्शन के लिए बने हैं, कोलैबोरेशन ह्यूमन नेचर है। तो हेल्प लेना वीकनेस का साइन कैसे हो सकता है? शायद प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम परफेक्शन में ट्रैप हो गए हैं, प्रॉब्लम ये है कि हम बस हेल्प लेने से डरते हैं। हमें लगता है अगर किसी ने हेल्प दी और वो परफेक्ट नहीं हुई तो शायद हम डिसअपॉइंट हो जाएंगे, या शायद कोई मना कर दे हेल्प करने से तो हम डिसअपॉइंट हो जाएंगे। पर रिलेशनशिप परफेक्ट आउटपुट के लिए नहीं होते, वो शेयर्ड एफर्ट के लिए होते हैं।
अगली बार जब कोई चैलेंज आए तो खुद से एक लाइन बोल कर देखिए, इस बार अकेला नहीं, इस बार मिलकर। हो सकता है पहले ऑकवर्ड लगे, हो सकता है सामने वाला आइडियल रिस्पॉन्स ना दे, पर स्ट्रॉन्ग होना ये नहीं है कि आप कभी रोए नहीं। स्ट्रॉन्ग होना ये है कि जब रो रहे हो तो किसी को कॉल कर सको और बिलीव करो कि वो उठाएगा, वो रहेगा, वो साथ देगा। दोस्तों, हाइपर इंडिपेंडेंस शील्ड लग सकता है, लेकिन शील्ड पहनकर आप किसी को गले नहीं लगा सकते। कभी कभी आमर उतारना पड़ता है, हेल्प मांगनी पड़ती है। हेल्प मांगना कोई वीकनेस नहीं है, वो सच में करज है, और शायद असली स्ट्रेंथ यही है जब आप एक्सेप्ट करते हो, मैं अकेला नहीं रहना चाहता।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय।
1: सोशल मीडिया पे सबकी लाइफ बहुत शॉर्टेड चलती है। सुबह 6 बजे योगा, ग्रीन माचा, सनराइज की रील। मैं सुबह उठती हूँ 6 बजे तो मेरी सिर्फ एक ही रील चल रही होती है, मेरी बेडशीट लपेटने की रील। लोग कहते हैं ग्रेटफुल फॉर दिस ब्यूटिफुल लाइफ, मैं कहती हूँ ग्रेटफुल कि वाईफाई चल रहा है यार।

जब खामोशी ने जान बचाई। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि खामोशी भी किसी की जान बचा सकती है? हम अक्सर सोचते हैं कि हीरो वो होता है जो जोर से बोलता है, जो स्पीचेस देता है, जो आवाज उठाता है। लेकिन आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसकी सबसे बड़ी ताकत थी खामोशी। नाम था मार्सल मार्सियो। आज सारी दुनिया उन्हें सबसे मशहूर माइम आर्टिस्ट के नाम से जानती है। एक ऐसा कलाकार जो बिना एक शब्द बोले हंसा देता था, रुला देता था और सोचने पर मजबूर कर देता था। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं उन्हें खामोश रहना सीखा कैसे और क्यों। वर्ल्ड वॉर टू का वक्त था, फ्रांस पर नाजीज का कब्जा था। मार्सल एक यंग ज्यूइश लड़का था। स्टेज और स्पॉटलाइट के सपने देखने की जगह वो सर्वाइवल का मतलब समझ रहा था। ये वो दौर था जहां गलत नाम, गलत पहचान और एक गलत आवाज मौत का सबब बन जाता था। मार्सल ने फ्रेंच रेजिस्टेंस ज्वाइन की। वो बंदूक लेकर लड़ने नहीं गया, उसका मिशन कुछ और था। उसे बच्चों को बचाना था। सोचिए, छोटे छोटे बच्चे, कुछ इतने छोटे कि उन्हें समझ भी नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, खतरा होता क्या है। उन्हें नाजी टेरिटरी में चुपचाप निकलना था, फॉरेस्ट से गुजरना था, चेक पॉइंट्स क्रॉस करने थे, सोल्जर्स खड़े थे जो जरा सी भी आवाज पे सब खत्म कर देते थे, और सबसे मुश्किल काम, बच्चों को चुप रखना। आपने कभी छोटे बच्चों को 5 मिनट से ज्यादा चुप करवाने की कोशिश की है? यहां बात घंटों की थी, दिनों की थी, जिंदगी की थी। ना गाना, ना कहानी जोर से, ना हंसी की आवाज, सिर्फ खामोशी, एक लंबी खामोशी। लेकिन मार्सल ने कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी किया। उसने खामोशी को पनिशमेंट नहीं बनाया, उसने खामोशी को खेल बना दिया। अपने एग्जैजरेटेड एक्सप्रेशन से, इनविजिबल ऑब्जेक्ट से, हवा में कहानियां बनाकर, बॉडी लैंग्वेज से, आंखों की चमक से वो बच्चों को एंटरटेन करता। वो हवा में इमेजिनरी बॉल उछालता, इनविजिबल रोप खींचता, गिरते हुए वॉल का ड्रामा करता। बच्चे हंसते थे लेकिन बिना आवाज के। वो डर को वंडर बना देता था, खौफ को क्यूरियोसिटी में बदल देता था। वो फॉरेस्ट के बीच कॉन्स्टेंट थ्रेट के नीचे एक साइलेंट परफॉर्मेंस चलता था, और वो परफॉर्मेंस सिर्फ आर्ट का नहीं था, वो शील्ड था, एक प्रोटेक्शन था। बच्चे चुप थे क्योंकि वो डरे हुए नहीं थे, वो कैप्टिवेटेड थे। एक एक करके मार्सल उन्हें सेफ बॉर्डर तक ले गया। हर बच्चा, जो भी बचा, एक फ्यूचर था जो जिंदा रहा, एक कहानी जो खत्म नहीं हुई। वॉर के बाद जब दुनिया ने क्लैप किया, जब स्टेज लाइट्स जली, जब मार्सल ने अपना आइकॉनिक कैरेक्टर बिप द क्लाउन क्रिएट किया, तब तक वो सिर्फ परफॉर्मर नहीं था, वो इंसान था जिसके लिए खामोशी का मतलब अप्लॉज नहीं, जिंदगी था। उसकी साइलेंस एम्प्टी नहीं थी, वो फिल्ड थी, भरी हुई थी यादों से, ट्रॉमा से, करेज से और सबसे ज्यादा ह्यूमैनिटी से। इसलिए शायद जब मार्सल स्टेज पर इनविजिबल वॉल बनाता था, लोग सिर्फ एक फनी एक्ट नहीं देखते थे, वो देखते थे एक इंसान जिसे पता था कभी कभी आवाज से ज्यादा ताकत खामोशी में होती है। आज के दौर में हम नॉइस से घिर गए हैं। नोटिफिकेशंस, डिबेट्स, ओपिनियंस, लाउड रिएक्शंस, ट्विटर वॉर्स एंड क्या नहीं। हर किसी को बोलना है, हर किसी को सुना जाना है। लेकिन शायद मार्सल की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि साइलेंस भी एक एक्शन है। कभी कभी सबसे बड़ा प्रोटेस्ट जिंदा रहना होता है।

सबसे बड़ी आर्ट प्रोटेक्ट करना होता है, और सबसे बड़ा करेज होता है डर के बीच में किसी और को मुस्कुराने का एक रीजन देना। मार्सल मार्सियो ने दुनिया को सिर्फ हंसाया नहीं, उसने दुनिया को बचाया, और शायद इसीलिए आज भी उसकी खामोशी बोलती है, क्योंकि वो खामोशी कभी खाली नहीं थी, वो इंसानियत से भरी हुई थी। सुनकर देखिए।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय।
1: आजकल डिलीवरी एप्स का प्रेशर अलग ही है भाई। डिलीवरी वाला आता है और स्माइल करके सबसे पहले कहता है, मैडम 5 स्टार दे देना। उसकी आंखों में वो इंटेंसिटी देखकर ऐसा लगता है जैसे यूपीएससी का रिजल्ट रेटिंग इसी पे डिपेंड करता हो। एक बार मैंने 4 स्टार दिए तो दिया, बट रात भर मुझे गिल्ट रहा। मुझे लगा मैंने किसी का करियर रुइन कर दिया। अब तो 5 स्टार दे ही देती हूँ, चाहे समोसा थोड़ा फिलोसफिकल ही लगे।

खामोशी से खिलना और खामोशी से खिलने की कला। कभी ऐसी सुबह होती है जब दुनिया थोड़ी ज्यादा तेज लगती है, हॉर्न की आवाज, नोटिफिकेशंस की वाइब्रेशंस, डेडलाइंस का प्रेशर और वो अजीब सी थकान जो पूरी नींद लेने के बाद भी फील होती है। लेकिन इसी दुनिया में किसी कोने में एक छोटा सा फूल खिला होता है। ना कोई अनाउंसमेंट, ना कोई स्पॉटलाइट, ना कोई सेलिब्रेशन, बस धीरे से एक पंखुड़ी खुलती है और उस खामोशी में जीने का एक पूरा लेसन छुपा होता है। मैं इसे कहती हूं द फ्लावर बींग, जैसे ह्यूमन बींग होता है। फ्लावर मेडिटेशन कोई टेक्निक नहीं है, ये याद करना है, वापस आना है, खुद से खुद को मिलवाना है। जब हम सच में किसी फूल के पास बैठे होते हैं, सिर्फ देखने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए, तब कुछ बदलने लगता है। आप नोटिस करना अगर अभी तक नहीं किया, उस फूल की खूबसूरती में कोई एफर्ट नहीं है, वो इम्प्रेस नहीं कर रहा, वो परफॉर्म भी नहीं कर रहा, वो बस धूप को एक्सेप्ट कर रहा है, बाहें फैलाए हवा को महसूस कर रहा है और वक्त को अलाउ कर रहा है। और धीरे धीरे हमारा मन भी कोमलता में घिर जाता है। कभी आपने फूल को ध्यान से देखा है, सच में देखा है? उसकी स्टेम का हल्का सा झुकना, पेटल्स का टेक्सचर, लाइट का उनके किनारों पर हिलना, बस कुछ पल के लिए अंदर की सारी नॉइज खत्म हो जाती है, अर्जेंसीज डिसॉल्व होने लगती हैं। जो बचता है वो होता है एक प्रेजेंस, और वही मेडिटेशन है। हर फूल के अंदर एक सीक्रेट होता है, ब्यूटी और इम्परमनेंस दुश्मन नहीं होते। बट किसी कली का फूल तक जो सफर होता है वो इतना सुंदर होता है, इतना सेक्रेट होता है कि देखने वाला बस देखता रह जाए। फूल को कोई पैनिक नहीं होता खिलने का, उसे डर भी नहीं होता मुरझाने का, वो सिर्फ अपने सीजन्स को ऑनर करता है। और हम क्या करते हैं? हम सब समय एंडिंग से डरते हैं, हम विंटर्स को जल्दी खत्म करना चाहते हैं, हम नेक्स्ट स्प्रिंग का आतुरता से सिर्फ वेट करते रहते हैं। लेकिन असली ग्रोथ सरेंडर मांगती है। जैसे अनीस निन ने कहा है, एक दिन आता है जब बड बनकर रहना ब्लॉसम होने से ज्यादा पेनफुल हो जाता है। फूल कभी कली बनकर छिप नहीं सकता, ना छिपा रहता है, वो खुलने का रिस्क लेता है। अलग अलग कल्चर्स में फूल हमेशा अवेकनिंग का सिंबल रहे हैं। वेदास में सहसरा लोटस, जो सर के ऊपर डिवाइन अवेयरनेस की अनफोल्डिंग है, बुद्धिज्म लोटस में कीचड़ से उठकर प्रिस्टीन ब्लूम बन जाना, और सूफी पोएट्स के लिए हर पत्ता हर बूटा एक कहानी कहता है। रूमी कहते हैं हर पंखुड़ी एक विजिबल प्रेयर है, और साइंस भी मानता है फूल देखने से हार्ट बीट स्लो होती है, स्ट्रेस कम होता है और मूड अपलिफ्ट होता है। जापान के शिरिन योकू, फॉरेस्ट बेदिंग जिसको कहते हैं, ये बताता है कि नेचर वापस देता है वो सब जो नॉइस छीन लेती है। लेकिन सच कहूं, हमें रिसर्च की जरूरत नहीं थी। जो इंसान शाम के वक्त एक गेंदे के फूल को देख चुका है वो जानता है कि थेरेपी क्या होती है। जब हम फूल के साथ बैठते हैं, पहले हम उसका कलर देखते हैं, उसकी खुशबू महसूस करते हैं, धीरे से बाउंड्री ब्लर होने लगती है। आप सन को लाइट नहीं, वार्म्थ के रूप में महसूस करते हैं, हवा को सिर्फ हवा नहीं, स्पर्श के रूप में देखते हैं। फूल अपनी जगह क्वेश्चन नहीं करता, वो कंपेयर भी नहीं करता, और वो जल्दबाजी तो बिल्कुल नहीं करता। वो अपने टाइम पर खुलता है, अपने टाइम पर बंद होता है, और अपने टाइम पर मिट्टी में लौट जाता है।
उसका ट्रस्ट क्वाइट है पर कंप्लीट है, मुकम्मल है, और शायद वही विजडम हम सभी ढूंढ रहे हैं। अपने टाइम पर भरोसा करना। हमारे अंदर भी सीजन्स होते हैं, कभी हम बड होते हैं यानी कि कली, हेजिस्टेंट डरे हुए बट पोटेंशियल से भरे हुए, कभी हम ब्लूम करते हैं एक्सप्रेसिव और खिले हुए, और कभी हम बस फेड हो जाते हैं जैसे फूल का गिरना या मुरझा जाना, जिसको हम जानते हैं लेटिंग गो के नाम से। हर फेज जरूरी होता है। मॉडर्न लाइफ हमें सिर्फ करने पर फोकस करना सिखाती है, फिक्स करो, इम्प्रूव करो, चेस करो, लेकिन फूल एक सच कहता है, बिकमिंग फोर्स से नहीं होती, बिकमिंग स्पेस देने से होती है। आप हैमर से बड को नहीं खोल सकते, पुश करके पेटल्स नहीं ला सकते, ग्रोथ को सिर्फ अलाउ किया जा सकता है। जब मैं आज एक फूल देखती हूँ, मुझे उसकी फ्रेजिलिटी नहीं दिखती, उसकी कोमलता सिर्फ नहीं दिखती, मुझे उसमें दिखती है एक क्वाइट स्ट्रेंथ, वो स्ट्रेंथ जो चिल्लाती नहीं, जो कंपेयर भी नहीं करती, जो बस अपनी जगह पर खिलती रहती है। हर ब्लूम एक छोटा सा मिरेकल है, और जब उसका सीजन खत्म होता है वो जमीन पर गिरता है, कुछ भी वेस्ट नहीं होता, सब कुछ ट्रांसफॉर्म होता है। तो अगली बार जब आप किसी फूल के पास से गुजरें, जरा सा रुकिए।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय।
1: ऑनलाइन शॉपिंग ने सेल्फ कॉन्फिडेंस डिस्ट्रॉय कर दिया है। फोटो में मॉडल को देख के लगता है ये जैकेट में तो मैं हीरो लगूंगा। पार्सल आता है, मैं पहनता हूँ, मिरर के सामने खड़ा होता हूँ और लगता है जैकेट नहीं, मेरी एक्सपेक्टेशंस टाइट थी। फिर रिव्यू पढ़ता हूँ,

तो दोस्तों, आज की बात ने आपको थोड़ा सा इंस्पायर जरूर किया होगा, थोड़ी सी स्माइल जरूर दी होगी, या थोड़ा सा सोचने पर मजबूर तो जरूर किया होगा। मेरा मिशन तो अकम्प्लिश्ड है। मैं हूँ आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और ये था आपका शो बातें इधर की उधर की, सिर्फ SN रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM पे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, थोड़ा यूमर, थोड़ा हार्ट और थोड़ा हटके लेकर एंगल। तब तक के लिए याद रखिए, स्टोरीज हर जगह होती हैं, बस उन्हें सुनाने का नजरिया चाहिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे क्यूरियस। बाय।

जिंदगी के रंग गीतों के संग प्रोग्राम में दोस्तों आपका स्वागत है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आपके जैसे सज्जनों और महिलाओं से, जिनकी बातें सुनकर, जिनसे बातचीत करके आपको बड़ा मजा आएगा और उन्हीं के पसंद के गीत भी हम इस प्रोग्राम में सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जिंदगी के रंग गीतों के संग। और आज का रंग है कविता की रूह का, जो देखा नहीं जा सकता बल्कि महसूस किया जा सकता है।

0: उस पल को आप कैसे याद करती हैं, क्या महसूस करती हैं अगर आज भी आपको ख्याल आता है उस पल के बारे में?
1: तो वो मेरे लिए बहुत भावनात्मक पल था, क्योंकि रूह की आवाज मेरी पहली सोलो किताब है और इसमें हर कविता मेरी आत्मा का एक टुकड़े की तरह है। तो जब मुझे एमिली डिकिंसन अवार्ड मिला तो मुझे लगा कि मेरे रूह को सुना गया है, और वो सम्मान हर उस संवेदनशील आत्मा का था जो अपने एहसासों को शब्दों में डालने की हिम्मत रखती है। और इसमें एक बहुत बड़ा थैंक्स पे अपने पब्लिशर को भी देना चाहूंगी कि उन्होंने मेरे शब्दों को इतना सराहा।
0: बहुत अच्छी बात है। ये एमिली डिकिंसन अवार्ड आपको कब मिला था, मैं वैसे ही पूछना चाह रहा हूँ।
1: जनवरी 2025 में
0: चलिए, बहुत बहुत बधाई एक बार फिर से हमारी तरफ से। क्या कोई विशेष विषय या भावना है जो बार बार आपकी लेखनी में लौट आती है, कुछ हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे उसके बारे में?
1: जी विशेष भावना तो नहीं, विशेष रिश्ता है। एक मेरा मेरे कृष्ण से और एक मेरा मेरी माँ से। माँ हम सबका सबसे पहला रिश्ता होता है, हमारी जीवन की शुरुआत ही वहीं से होती है। और अब क्योंकि मैं खुद एक माँ हूँ, तो इस बंधन की गहराई और निस्वार्थता को बहुत अच्छे से महसूस करती हूँ। और कृष्ण से मेरा एक ऐसा जुड़ाव है जो कभी मेरे गुरु हैं, कभी मेरे सखा हैं, कभी मेरे पूज्य हैं। उनके बिना जीवन का हर पथ मुझे अधूरा लगता है। तो कृष्ण और माँ मेरी हर कविता में लौट के जरूर आते हैं।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो इस कृष्ण की बात पे और माँ की बात पे हम एक रिया जी गाने के लिए रुक जाते हैं और एक गाना सुनते हैं आपकी इन भावनाओं को लेकर।

0: अब रिया जी हम आपकी लेखन प्रक्रिया पर आते हैं। लेखन के लिए आप प्रेरणा का इंतजार करती हैं या आपके पास कोई एक डिसिप्लिन रूटीन सा है, किस तरह से आपको का ये प्रोसेस है लिखने का?
1: प्रेरणा अगर मैं कहूँ तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि जीवन खुद अपने आप में बहुत प्रेरणात्मक है, और मुझे ऐसा लगता है कि शब्द खुद अपने वक्त पर मुझे दस्तक देते हैं, कभी सुबह की चुप्पी में तो कभी रात की थकान में, और कभी अचानक मन की दीवार पर उतर आते हैं। और जहां तक मैं रूटीन का बात करूं तो मैं रोज कुछ ना कुछ लिखती जरूर हूँ। तो जब मैं लिख रही होती हूँ तो वो कभी कविता बन जाती है, तो कभी कोई अधूरी कहानी, तो कभी किसी किताब से उठी एक नई सोच। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं रिव्यूज भी करती हूँ, तो मेरे लिए लिखना एक आदत नहीं, एक एहसास है, मेरे दिल की धड़कन है वो एक तरह से।
0: बहुत सुंदर। आपने हाल ही में ज्योतिर्मय उजाले की ओर एक संकलन प्रकाशित किया है जिसमें 40 कवियों को जोड़ा है, ये अनुभव कैसा रहा? मुझे तो लगता है ये काफी डिफिकल्ट काम है 40 कवियों को एक साथ जोड़ना, कुछ इसके बारे में हमारे साथ साझा करिए।
1: तो डिफिकल्ट भी है, चैलेंजिंग भी है, पर अपने आप में ये अनुभव बहुत सुंदर रहा और प्रेरक भी रहा। हर कवि अपने भीतर एक रोशनी लेकर आया, जब उनकी सभी रचनाएं एक जगह आई तो लगा जैसे शब्दों का उजाला फैल गया हो, इसीलिए मैंने इसका नाम भी ज्योतिर्मय रखा। और ये पुस्तक अपने आप में बहुत प्रेरणात्मक है।
0: तो जब इतने अलग अलग स्वरों को एक साथ लाना होता है तो कंपाइलर के तौर पर आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या था, उनकी रचनाओं का चुनाव करना या वो खुद अपनी रचनाओं का चुनाव करते थे, किस तरह से करते हैं, मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ।
1: रचनाओं का चुनाव उन्होंने ही किया था, मैंने उनको, मैं चाहती थी कि मोटिवेशनल रहे, कि हम सबको एक प्रेरणा मिले। शब्द अपने आप में बहुत गहराई लिए होते हैं और बहुत ताकत रखते हैं, पर जो सबसे बड़ी चुनौती थी मेरे लिए वो था विविधता में एकता को बनाए रखना, क्योंकि हर कवि का स्वर अलग होता है और मुझे उन सबको जोड़ना था एक साझा संवेदना के तौर पर, हर आवाज को उसकी जगह देते हुए एक सामूहिक सामंजस्य जो बनाना था वो बहुत मुश्किल था, पर बहुत मेहनत की मैंने और ये बहुत खूबसूरत किताब पब्लिश हुई है मेरी।
0: वैसे ही मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि इनके पब्लिशर कौन है इसके, आपके ज्योतिर्मय उजाले की ओर के?
1: जी, ये सोच पब्लिकेशन हाउस है मुंबई से, और ये इनकी जो हेड है वो भी एक फीमेल ही है, तो नारी शक्ति जब जुड़ जाती है किसी चीज से तो बहुत मेहनत करती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम वी कैन अंडरस्टैंड दैट। आपने कई संकलन में सह लेखक के रूप में भी योगदान दिया है, जैसे चयनिका, सृष्टिमन, स्वाभिमानी नारी आदि, कौन सा संकलन आपके दिल के सबसे करीब है?
1: सर, हर संकलन एक नई सीख थी, एक नई यात्रा रहा मेरे लिए, पर मैंने जो अपने जीवन की पहली कविता लिखी थी वो लिखी थी ग्रहण। मैं खुद एक गृहिणी हूँ और मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ कि गृहिणी का जीवन कैसा होता है, और वो मेरी पहली कविता चयनिका में पब्लिश हुई थी, तो चयनिका मेरे लिए हमेशा खास रहेगा क्योंकि शायद वहीं से मेरी लेखक के तौर पे जर्नी शुरू हुई थी उस किताब से।
0: आपकी एक नई रचना है समन्वय, इसके बारे में हमारे श्रोताओं को थोड़ा बताइए।
1: समन्वय का शाब्दिक अर्थ होता है संतुलन और सामंजस्य, और इस संग्रह को हम लिख रहे हैं 4 जन में। हम चारों जिंदगी के अलग अलग पहलुओं के राही हैं, किसी ने शब्दों में जीवन खोजा है, किसी ने अनुभवों में, पर हमारे रास्ते भले ही जुदा रहे हों पर इस नए सफर में हम सब हमराह बने हैं, और शायद इन्हीं भिन्नताओं का एक सुंदर मेल है समन्वय, एहसासों का एक सफर।
0: ओके ओके, मतलब आप 4 लेखक 4 विभिन्न विषयों पर या 4 विभिन्न भावनाओं पर अपनी अपनी बात लिख रहे हैं।
1: जी बिल्कुल।
0: जी, बहुत सुंदर है, मेरे ख्याल में बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है। क्योंकि मैंने
1: जी
0: कुछ फिल्में तो देखी हैं ऐसी के कई डायरेक्टर्स अलग अलग शॉर्ट स्टोरीज बनाते हैं। तो यहाँ इस समन्वय के नाम पर रिया जी हम एक गाने का आनंद लेते हैं।
1: जी जरूर सर।
2: दिल का साथी है जब दिल, कैसा रास्ता क्या मंजिल। याद आया?

0: मत गाइए गाइए।
1: हम भी राहों में खड़े हैं यार, इधर देख लो जाने मन प्यार से एक नजर देख लो। हम भी राहों में
0: बात
1: इधर देख लो जाने मन

0: इधर देखियो यानी मन कर दे एक नजर देखियो ला ला ला रिया जी, आपका पॉडकास्ट रिया रेकमेंड्स काफी पॉपुलर है। ये आइडिया कैसे आया कि किताबों पर बातचीत को एक ऑडियो फॉर्म पे लाया जाए?
1: मैं चाहती थी कि लेखक अपनी कहानियां खुद पाठकों तक पहुंचाए, और दूसरी वजह ये रही कि मैं हमेशा से बहुत रीडिंग राइटिंग भी करती रही हूँ और बहुत सारे लिटरेरी क्लब से जुड़ी हुई थी। जब मैं वहां जाती थी, मैं देखती थी ऐसे बहुत सारे लेखक हैं जो बहुत उम्दा लिखते हैं, पर वो ना, उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। तो मैंने कोशिश की कि मैं उनकी आवाज बन सकूं। ऐसा मुझे कहा गया कि मेरी आवाज बहुत अच्छी है, तो मैंने इसीलिए रिया रिकमेंड शुरू किया, ताकि उन लेखकों की लेखनी हम सब तक पहुंचे और सुनी जाए, और ये अपने आप में बहुत सुकून देता है मुझे जब मेरे पास सबकी कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं कि उनका शब्दों को दुनिया सुन रही है।
0: बहुत सुंदर। आपने करीब 40 जाने माने लेखकों से बातचीत की है, कोई एक ऐसा इंटरव्यू जो आपके दिल के बहुत करीब रहा हो?
1: ये बड़ा मुश्किल सवाल है वैसे। मेरे लिए हर संवाद अपने आप में बहुत खास रहा है। हर लेखक अपने अनुभव और दृष्टिकोण के साथ जैसे एक नई दुनिया ही खोल देता है मेरे लिए। और पर मैं कुछ लोगों का नाम लेना चाहूंगी यहाँ पे, मसलन तस्नीम खान जी की ऐ मेरे रहनुमा का लेखिका है, उनकी बेबाकी और निर्भीकता उन्हें एक सच्ची साहित्यकार बनाती है। और जैसे सत्यार्थ नायक जी हैं, जिन्होंने श्रीदेवी जी की बायोग्राफी लिखी है द इटर्नल गॉडेस, वहीं उन्होंने महागाथा जैसी बुक भी लिखी है जिसमें उन्होंने 100 स्टोरीज लिए पुराना में से। तो वो एक बड़ा ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट है कि एक जो बॉलीवुड की लेजेंड पे एक स्टोरी लिख रहा है, फिर वो पुराना उस पर लिख रहा है। तो उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। और वही अगर मैं बात करूं कि सबसे खास, तो उसमें मैं राजेश शर्मा जी की बातचीत को बड़ा खास मानना चाहूंगी। डॉक्टर राजेश शर्मा जी लेखक भी हैं, कवि भी हैं, डीन भी हैं और उद्यमी भी हैं। उनके साथ उनका एक प्रोजेक्ट है गुंजिश्ता बरेली। आप ये सोचिए कि उन्होंने एक फेसबुक पे ब्लॉग स्टार्ट किया था जिसमें बरेली जैसे शहर में से उन्होंने 100 ऐसे व्यक्तित्व ढूंढे जिनकी वजह से बरेली आज जाना माना है, और आज उस पे 3 बुक्स पब्लिश हुई है सीरीज में। और उनके उनके साथ मेरा एक पॉडकास्ट रहा, वो बहुत फेमस हुआ था। और दूसरा पॉडकास्ट हमने उनके साथ किया था, एक बुक है गली कासिम जान, अगर आपने उनका जिक्र सुना हो तो। गली कासिम जान किताब पर जो विनोद भारद्वाज ने लिखी है, हम दोनों के गालिब फेवरेट हैं, हम दोनों की फेवरेट बुक थी। तो उस पे जो हमारा कॉन्वर्जेशन हुआ था, जो हमने गालिब पे और उस गली उस दौर को जिया था हमने उस बातचीत में एक बार दोबारा, वो शायद मैं ज्यादा इंटरेस्टिंग मानूंगी, जो मेरे लिए भी था और शायद मेरे ऑडियंस के लिए भी।
0: गालिब पे आप लोगों ने लिखा है, ये तो भाई मेरा भी पसंदीदा विषय है। खैर, इस पे हम बात कभी फुर्सत में करेंगे दोबारा, या फिर आपको कभी पॉडकास्ट में फिर बुलाएंगे तो फिर बात करेंगे। आज जब पॉडकास्ट का ट्रेंड बढ़ रहा है, तो क्या आपको लगता है ये साहित्य को नए श्रोताओं तक पहुंचा रहा है? क्योंकि ये काफी साहित्य से भी बाहर आ रहा है, पहले तो किताबों में ही था जो कुछ था, लेकिन अब ये एक आम पहुंच तक है एक तरह से कहा जा सकता है।
1: अगर साहित्य को इस नजर से देखा जाए तो हाँ, बहुत हद तक पॉडकास्ट मदद कर रहा है, और आज की पीढ़ी सुनना ज्यादा पसंद करती है क्योंकि शायद हमारे समय से वो ज्यादा बिजी हैं। अगर मैं आज के स्टूडेंट्स की बात करूं, हमारे टाइम पे शायद हम सिर्फ पढ़ रहे होते थे, एग्जाम्स दे रहे होते, आज उनको कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स भी देने हैं, जिमिंग भी करनी है, बहुत कुछ करना है। तो इस केस में वो हेडफोन्स पे पॉडकास्ट सुनना ज्यादा पसंद करते हैं, और अगर शब्द दिल से बोले जाए तो वे असर जरूर छोड़ते हैं। तो मुझे लगता है कि पॉडकास्ट साहित्य और श्रोताओं के बीच एक नया पुल बनने का काम कर रहे हैं।
0: ये बात बहुत थोड़ी विचारणीय है जो आपने कही है कि साहित्य एक तरह से सुलभ हो रहा है एक दूसरे फॉर्म में।
1: जी बिल्कुल।
0: अब मैं जो सवाल पूछने वाला हूँ थोड़ा सा हर पॉडकास्टर के लिए एक ट्रिकी सा है। पॉडकास्ट बनाते समय आपका मकसद क्या रहता है, लेखक की सोच को सामने लाना या पाठक को प्रेरित करना?
1: सर, पॉडकास्ट बनाते समय मेरा मकसद होता है कि मैं लेखकों की सोच को सामने लाना चाहती हूँ और पाठकों को प्रेरित भी करना चाहती हूँ कि सुनने वाला सिर्फ किताब नहीं बल्कि उस सोच को भी समझे जो किताब के पीछे है। अगर हम कुछ कहते हैं तो हमारा कोई ना कोई मकसद होता है, और अगर उस मकसद को जान लिया जाए तो शायद किताब को पढ़ना आसान हो जाता है। तो ये बहुत मुझे लगता है कि जरूरी है।
0: नहीं, बिल्कुल सही है। और साहित्य और संगीत का भी हमेशा से बहुत अच्छा एक जुड़ाव रहा है, तो आपकी साहित्य की बात पे हम यहाँ एक अच्छा कोई गाना सुनते हैं जिसमें कुछ साहित्यिक शब्द आए।

0: रिया जी, आप अपने इंस्टा पेज बिटवीन द पेजेस पर बहुत गहराई से किताबों की समीक्षा करती हैं। रिव्यू लिखना आपने कब और कैसे शुरू किया?
1: सर, मैं हमेशा से एविड रीडर रही हूँ, मुझे पढ़ना बहुत पसंद है। अब मैं यहाँ पे एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि मुझे जिंदगी में कई चीजों से डर लगता था, क्योंकि डरते हम उस चीज से जिनकी जानकारी हमें नहीं होती, और किताबें मुझे निडर बनाती, बुक्स मेक्स मी ब्रेव। सो मैंने हमेशा से पकड़ा था और मैं हमेशा से पढ़ती रही, और मैं जो भी किताब पढ़ती थी मैं उसको समराइज जरूर करती थी और उसके कुछ कोट्स लिख दिया करती थी। और ऐसे ही ये जो समरीज और नोट्स की थी, जब इंस्टाग्राम का दौर आया तो मुझे लगा कि मुझे अपने व्यूज हर बुक पे शेयर करने चाहिए, तो उन अनुभवों को मैंने बिटवीन द पेजेस डॉट इन पे शेयर करना शुरू कर दिया। और वहां मेरी कोशिश यही रहती है कि किताबों के पन्नों के बीच छिपी आत्मा तक पहुंचा जा सके, उसके जिस तक, उसे जिस नजर से मैं देखती हूँ, मैं उसे शेयर कर देती हूँ।
0: बहुत अच्छा। तो एक अच्छे रिव्यू में आपके हिसाब से क्या ज्यादा मायने रखता है, ईमानदारी या एनालिसिस या विश्लेषण?
1: सर, मेरे लिए ना किताब एक एहसास की तरह है, और मुझे लगता है उसे परखना नहीं समझना ज्यादा जरूरी है। तो मैं अपने रिव्यू में आलोचना नहीं संवाद खोजती हूँ, जहां लेखक की रूह और पाठकों का मन दोनों का मेल किया जा सके, क्योंकि मैं पाठक भी हूं और मैं उस नजर से ही उसको शेयर करती
0: हूँ। ये बात बहुत सुंदर कह दी आपने। आप बहुत ज्यादा उसमें आलोचना समालोचना या क्रिटिकल एनालिसिस करने के बजाय वो क्या कन्वे करना चाह रहा है इस बात पे ज्यादा जोर देती है, अगर मैं सही समझाऊं आपकी बात।
1: जी सर, बिल्कुल।
0: रिया जी, आप नए लेखकों को भी लगातार प्रमोट कर रही हैं, इस पहल के पीछे आपकी सोच क्या है?
1: जी, मुझे हमेशा लगता है कि हर कलम को एक मौका जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा, मतलब ऐसा लगता है कि बुक पब्लिश हो गई तो उसके पीछे पता नहीं कितने सालों की मेहनत होती है, फिर उसको कंपाइल करना, फिर पब्लिशर्स ढूंढना, बहुत मेहनत लगती है किताब को बनने में, एक तपस्या की तरह होती है हर किताब। तो मुझे इसीलिए लगता है कि सबको बहुत मौका मिलना चाहिए, और जब मैंने शुरुआत की तब मुझे भी इसी तरह से किसी ने मोटिवेट किया था, तो अब मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रही हूँ।
0: आई कम्प्लीटली अग्री। आजकल का जो लैंडस्केप है वो बहुत बदल गया है, पब्लिशिंग बहुत ज्यादा है, डिजिटलाइजेशन होने से पब्लिशिंग कुछ तरह से आसान भी हो गई। पहले तो पब्लिशर को ढूंढना एक बहुत मुश्किल काम होता था।
1: जी, पब्लिशर्स को ढूंढना भी आसान हो गया है, बट उसके बाद भी बहुत कुछ होता है कि वो पब्लिशर उस आपकी किताब की रूह को समझे, आप जो कन्वे करना चाह रहे हो उसे उसी नजर से देखे और पब्लिश कराए, बहुत मुश्किल काम है ये भी।
0: बिल्कुल सही बात। और चलिए, इस मुश्किल की पहल पर या मुश्किल के काम पर हम लोग एक गाने के लिए रुक जाते हैं, गाना सुनते हैं।
1: जी सर।

0: जी, आजकल कहा जाता है यंग जनरेशन में पढ़ने की आदत कम हो रही है, ये क्या, ये भी हालांकि बहुत ज्यादा एक डिबेटेबल सा सब्जेक्ट है, आप क्या सहमत हैं इस बात से?
1: सर, मैं इससे कुछ हद तक सहमत हूँ। पढ़ने की आदत कम हो गई है क्योंकि किताबों से इश्क नहीं रहा, पर उनमें क्यूरियोसिटी कम नहीं है। वो जानना चाहते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है या क्या हो चुका है, तो आई थिंक वो ऑडियो बुक या किंडल के फॉर्मेट में पढ़ रहे हैं, पर उसे वो पेपर बैक या उस फॉर्मेट में नहीं भर रहे हैं। तो जो जैसे हमें होता था कि कलेक्शन ऑफ बुक्स होती थी या कुछ और होता था, वो नहीं रहा है। वो चलते फिरते समरी सुनना या ऑडियो बुक के फॉर्मेट में सुनना वो जरूर कर रहे हैं। तो लिटरेचर की तरफ प्यार कम हुआ है या वो नहीं कह सकते हम, पर उसका एक फॉर्मेट चेंज हो गया है कि वो स्क्रीन टाइम पर चला गया इंस्टेड ऑफ अ पेपर बैक थिंग।
0: हाला, मेरे ख्याल में बहुत ही वाजिब बात कह रही हैं आप,
1: डिबेटेबल
0: बहुत ही वाजिब बात कह रही हैं। नहीं, अब कुछ साल पहले तक तो वास्तविकता
1: कर
0: थोड़ा सा कम हो गया था, लेकिन अब लास्ट 5-10 ईयर्स से तो मैं देख रहा हूँ काफी बच्चों में पढ़ने की आदत बढ़ रही है। और इसी कंटेक्स्ट में हम आ जाते हैं जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में। जयपुर में हम बैठे हो, जयपुर JLF की बात नहीं करें तो मजा नहीं आता ना। तो इस तरह के जो आयोजन होते हैं, ये कितने जरूरी हैं आपकी नजर?
1: सर, बेहद जरूरी है। उसका जैसे अभी हमने युवा पीढ़ी की ही बात करी, तो युवा पीढ़ी उसे एक बार आउट ऑफ क्यूरियोसिटी जाते जरूर है, और वहां पर जब वो देखती है मंच पे लेखकों को बोलते हुए और अपनी बुक के बारे में बातचीत करते हुए, तो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा वो प्रेरित होते हैं। और हमारे जैसे साहित्य प्रेमियों के लिए तो वैसे भी उत्सव से कम है भी नहीं। जहाँ शब्द हो, विचार हो, संवाद हो, सब हो, वहां पर हमें तो बहुत अच्छा लगता है। और आई थिंक युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं, चाहे वो एक बार जाती है चेक इन डालने के लिए कि चलो हम भी जा रहे हैं लिटरेचर फेस्टिवल, बट दे गेट इंस्पायर्ड। उसके बाद उनको मैंने देखा है कि वो ऑथर से बात करने में भी इंटरेस्टेड रहते हैं, बुक्स लेने में भी इंटरेस्टेड रहते हैं। तो ये जो वापस पेपर बैग का दौर है, शायद इस वे में ही सही वापस आ सकता है। तो ऐसे फेस्टिवल और बहुत होने चाहिए जहां वे रूबरू हो सके ऑथर्स के साथ में।
0: चलिए, हालांकि ये भी मेरा बड़ा फेवरेट सा टॉपिक है, क्योंकि मैं इसको 2008 से अटेंड कर रहा हूँ फेस्टिवल को। अब इसमें मुझे मतलब महसूस होता है कि थोड़ा कमर्शलाइजेशन ज्यादा हो गया, बट इन एनी केस बच्चे बहुत आ रहे हैं इसमें, इतनी भीड़ होती है बच्चों की, यंगस्टर्स की रादर, कि बहुत अच्छा लगता है एक बार इतने यंगस्टर्स को किताबों के बारे में बात करते सुनना, किताबों को देखते हैं, वो ब्राउज करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। रिया जी, आजकल AI लेखन में भी काफी इस्तेमाल हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस राइटिंग में भी काफी यूज हो रही है, आइडियाज, एडिटिंग, समरीज तक। आपको क्या लगता है, इससे क्रिएटिविटी को मदद मिल रही है या खतरा सा हो रहा है?
1: सर, क्रिएटिविटी को तो मदद नहीं मिल रही। अगर मैं कहूं कि मैं कुछ टाइप कर देती हूँ और वो मुझे लिख के दे देता है, तो मशीन कुछ महसूस नहीं कर सकती। AI काइंड ऑफ, हम उसे गैजेट मान लेते हैं या एक सॉफ्टवेयर जो भी है, तो वो हमारी सुविधा के लिए बनाया गया है ताकि हमारा थोड़ा टाइम सेव हो सके। जैसे हम पहले हाथों से अकाउंट्स बनाया करते थे, अब लैपटॉप पे हो जाते हैं और वो सेव रहते हैं बहुत सालों तक। आपको इतने सारे जर्नल्स को संभालने नहीं पड़ते। तो AI एक टूल है, अगर उसे एक टूल के तौर पर अपना टाइम और एनर्जी सेव करके उस टाइम और एनर्जी को कहीं अच्छी जगह यूटिलाइज करने के लिए हम कर रहे हैं, तब तक वो ठीक है। पर हर गैजेट का कोई ना प्रोज और कॉन्स होती है, तो इसके भी नुकसान है। और वो अगर स्टार्ट से उसे एक बैलेंस वे में नहीं यूज किया गया तो शायद वो एक खतरा हो सकता है। पर मुझे लगता है कि हम 90s के जो किड्स रहे हैं, उन्होंने जितने ज्यादा चेंजेस देखे हैं, अगर आपको याद हो तो बचपन में एक फोन होता था जिसे हम फर्स्ट नंबर को पूरा राउंड करके घुमाते थे, फिर वो वापस टर्न होता था, फिर दूसरा नंबर घुमाते थे और बहुत देर
0: जी
1: लगती थी
0: जी
1: एक नंबर को डायल करने में। तो
0: जी
1: हमने उधर से लेके अगर मोबाइल के टच स्क्रीन तक सरवाइव किया, तो हम AI भी सरवाइव कर ही लेंगे। हम लोग काफी
0: बिल्कुल
1: बैलेंस हैं, हम कर ही लेंगे उसे।
0: बिल्कुल। अब ये भी बड़ा डिबेटेड सा है, क्या मशीन कभी इंसान जैसी इमोशनल डेप्थ जितना लिख पाएगी, क्या कर पाएगी मशीन, ऐसा कर पाएंगी क्या कभी? क्या सोचती हैं आप इसके बाद?
1: सब मशीन महसूस नहीं कर सकती ना, उसे दर्द नहीं होता, उसे खुशी नहीं होती, तो वो नहीं कर सकते. वो एनी डे ह्यूमन बीइंग और रोबोट्स में फर्क तो रहेगा ही ना, दे कांट क्रिएट द इमोशंस.
0: बिल्कुल सही बात है. चलिए इस मशीन और इंसान की जद्दोजहद पे एक गाने के लिए हम रुक जाते हैं और एक गाना सुन लेते हैं.
1: जी

0: रिया जी, अब थोड़ा सा रुख बदलते हैं। हमने बहुत सारी आपकी लेखन के बारे में बात कर ली। आप एक कवित्री हैं, माँ हैं, गृहिणी हैं, कंपाइलर हैं, रिव्यूअर हैं, सब कुछ है। इतनी भूमिकाएं निभाते हुए आप अपना मी टाइम कैसे निकालती हैं?
1: सर, राइटिंग इज माय मी टाइम. एक्चुअली मेरा मेन प्रोफेशन अगर मैं बोलूंगी तो मैं गृहिणी ही हूँ, और उसमें अगर मी टाइम की बात करूँ तो राइटिंग इज माय मी टाइम, जिसमें मुझे बहुत सुकून मिलता है और पेशेंस भी आते हैं, सुकून भी मिलता है. तो दिस इज माय मी टाइम. मेरा मेन प्रोफेशन आप गृहिणी ही मानिए कि वो मेरा, राइटिंग इज माय मी टाइम. जैसे लोगों का टीवी देखना होता है या म्यूजिक सुनना होता है, मेरे लिए लिखना पढ़ना मेरा मी टाइम होता है. मुझे उसमें सुकून मिलता है.
0: वंडरफुल। मतलब आप जब लिखती है तो बिल्कुल एकदम फ्रेश हो जाती है, एक रिफ्रेश बटन है आपके लिए। रिफ्रेश बटन है आपके लिए, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। कई लोगों का म्यूजिक होता है, म्यूजिक सुनते हैं तो बिल्कुल तनाव मुक्त हो जाते हैं। तो इस तरह लिखना आपका है, बहुत बहुत खूबसूरत बात है। तो लिखने के अलावा रिया को और किन चीजों में आनंद मिलता है? कोई और शौक, कोई और हॉबीज क्या है आप?
1: सो आई लव गार्डनिंग. मुझे गार्डनिंग बेहद पसंद है. एक बीज को पौधा बनते हुए देखना, फिर उसको पेड़ का स्वरूप लेते हुए देखना, और जो पतझड़ का मौसम होता है कि सब खत्म, और फिर अचानक उसमें जो हरी हरी पत्तियां आती है, वो बड़ी इंस्पायरिंग लगती है मुझे. तो एक अजीब सा सुकून है, और ये जो सफर है इतना बड़ा, उसमें एक पेशेंस भी है, सब्र भी है, और एक उम्मीद भी है, जो जिंदगी को समझने का एक नया नजरिया देती है कि एक बार सब खत्म भी हो जाए पर सब सही भी हो जाता है. तो मुझे गार्डनिंग बेहद पसंद है.
0: बहुत खूबसूरत। आपका तो ये जो क्लिप है गार्डनिंग के बारे में आपने बोला है, हमें इसको रिकॉर्ड करके अलग से दिखा रहे हैं। ये एक आपने शब्द चित्र जिसको कहते हैं वो खींच दिया गार्डनिंग का, बहुत बढ़िया। तो रिया जी, क्या मदरहुड ने आपकी कविताओं को किसी तरह से प्रभावित किया है? कुछ इन्फ्लुएंस आया है?
1: सर बहुत बहुत गहराई आई है मेरी मदरहुड की वजह से. जैसे मैंने पहले भी कहा था कि माँ हमारा पहला रिश्ता होता है, और अब क्योंकि मैं खुद एक माँ हूँ, तो एक माँ होने और एक माँ के होने का फर्क बहुत गहराई से समझती हूँ. कि तो मैं कह सकती हूँ कि माँ बनने के बाद मेरी कविताएं और मेरा जीवन दोनों अपने आप में एक संपूर्ण में पहुंचा है.
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो फिर अगर रिया राइटर पॉडकास्टर नहीं होती तो क्या बनना पसंद करती?
1: सर, शब्दों के बिना भी मैं शायद जीवन का अर्थ ही खोजती, क्योंकि रचना तो सिर्फ कलम से नहीं है ना, दिल से होती है. तो लेखक ना सही, शायद एक बेहतर इंसान बनना ही मेरी सबसे बड़ी रचना होती.
0: नहीं, अगर मैं पूछूं प्रोफेशन वाइज, साइंटिस्ट बनना चाहती, कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाहती, ऐसा क्या मन होता अगर इस जो आप करेंटली कर रही हैं ये नहीं कर रही? तो आपको लगता होगा ना, भाई ये पायलट है लेडी, ये हवाई जहाज चला रही है, ये ट्रेन चला रही है, मैं भी ऐसा कुछ करती। आजकल क्रिकेटर भी बन रही है लड़कियां। हाँ
1: मैं
0: बिल्कुल, क्यों नहीं।
1: शू डिजाइनर बनना चाहती
0: वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल, शू डिजाइनर बनना चाहते हैं। लेट अस कम आउट समथिंग वेरी गुड। मुझे याद है एक एड आता था शू डिजाइनर का, बहुत पहले टीवी में, मुझे याद है, बड़ा एक जेंटलमैन

0: सा आदमी वो शू डिजाइन करता था, वही उसकी याद आ गई मुझे आपकी बात सुन के।
1: मैंने भी बचपन में, हम सब ने एक कहानी जरूर सुनी होगी कि एक कॉबलर था जो हर रात एक जोड़ी जूती बनाता था पर उसकी सेल नहीं हो पाती थी। फिर कुछ छोटी परियां आई थी जिन्होंने जूतियां बनाई तो बड़े महंगे दामों में बिकी थी और उसकी लाइफ चेंज हुई थी। तो जब मैं बहुत छोटी थी और मैंने एक कहानी सुनी थी तब मुझे लगता था कि एक दिन मैं भी ऐसा कुछ बनाऊंगी जिससे जिंदगी, किसी की जिंदगी बदल जाए जिसको चलने से। तो मैं कॉबलर होती शायद, शू डिजाइनर।
0: तो आपकी कल्पना की इस उड़ान के लिए हम एक बढ़िया से गाने के लिए रुक जाते हैं और सुनते हैं एक गाना।

0: रिया जी, अब हम करीब करीब आखिरी पायदान पे आ गए हैं। कुछ बताइए, कौन से कवि या लेखक आपके लिए प्रेरणा रहे हैं, कोई खास?
1: सर, किसी एक कवि का आप इधर नाम कैसे ले सकते हैं? मतलब रविंद्रनाथ टैगोर हो, गुलजार हो, एमिली डिकिंसन, शेक्सपियर, शिवानी जी, अमृता प्रीतम जी, सब की लेखनी में वो आत्मबस्ती जो पाठकों को भीतर तक छू लेती है, और इन सब से मैंने बहुत कुछ सीखा है। पर अगर मैं कहूं तो मैं किसी दिन उस गहराई और बेबाकी से लिखना चाहूंगी जिस तरह अमृता प्रीतम जी ने लिखा था, बिना किसी डर के, बिना किसी रोक के, बस दिल की सच्चाई के साथ। तो मैं शायद उनके जैसा किसी दिन लिखना चाहूंगी।
0: बहुत सुंदर, ये तो आपने मेरी फेवरेट राइटर उनका नाम ले लिया,
1: जी
0: क्योंकि बहुत खूबसूरत इनकी वो जो है ना रसीदी टिकट, वो भी मैंने पढ़ी हुई है, और हम लोग किसी जमाने में उससे बड़े इन्फ्लुएंस थे।
1: सर,
0: चलिए
1: मैंने
0: साहब,
1: रसीदी टिकट हो, दस्तावेज हो, खतों का सफरनामा हो, मैंने पिंजर हो, मैंने इनका
0: पिंजर,
1: बहुत सराहती हूँ मैं इनके काम को।
0: बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
1: जी
0: चलिए रिया जी, अब मैं आखिरी सवाल तो नहीं कह सकता, लेकिन आखिरी पायदान पे हम आ गए। आपको अपनी
1: जी
0: क्रिएटिव फिलॉसफी अगर एक लाइन में बतानी हो तो वो क्या होगी?
1: क्रिएटिव फिलॉसफी। सर, अगर जिंदगी एक कहानी है, अगर जिंदगी एक कहानी है और कहानी तुम्हारी है, तो कलम भी तुम्हारे ही हाथ में होनी चाहिए। मैं यही कहना चाहूंगी।
0: बहुत खूबसूरत। अगर जिंदगी एक कहानी है तो उस कहानी को लिख के
1: बिल्कुल
0: लिए कलम भी तुम्हारे हाथ में होनी चाहिए। बहुत खूबसूरत। तो दोस्तों, आज की ये बातचीत रिया मनोज के शब्दों की तरह ही गहराई और सादगी से भरी रही। उनकी कविताएं हमें एहसास कराती हैं कि भावनाएं आज भी सबसे बड़ी प्रेरणा है, और सृजन की दुनिया में सच्चाई और संवेदना की जगह कम नहीं हुई है। एक कवयित्री, लेखिका, रिव्यूअर और पॉडकास्टर के रूप में रिया न सिर्फ खुद लिखती हैं, बल्कि दूसरों को भी लिखने, सोचने और महसूस करने के लिए प्रेरित करती हैं। रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज अपने अनुभव और संवेदनाओं को हमारे श्रोताओं के साथ बांटा।
1: सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पर बुलाने का और मेरे को इतनी पेशेंस के साथ सुनने का, इस खूबसूरत बातचीत के लिए और इस शब्दों के सफर में साथ देने के लिए। सच में बेहद आभार।
0: रिया, हम आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आपकी रचनात्मक यात्रा यूं ही उजालों से भरी रहे। अगले
1: शुक्रिया सर आपका, आपको और आपकी टीम को भी बहुत बहुत गुड विशेस।
0: एपिसोड में फिर मुलाकात होगी एक नई शख्सियत, नई सोच और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए, शब्दों से जुड़े रहिए और महसूस करते रहिए जिंदगी को। मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार, आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।
2: जिंदगी के रंग हजार।
3: दोस्तों, जिंदगी के रंग गीतों के संग के आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल एक और नए सज्जन और महिला हमारे साथ हाजिर होंगे, आपके लिए मजेदार बातें और गीत लेकर। सुनना ना भूलिएगा।
2: छोटी सी हमारी कायनात बन गई।
4: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो टंट्याभील 90.8 FM जाबुआ की आवाज।
5: हमारे जल संसाधन।
6: पानी या जल प्रकृति की अनमोल देन है। जीवन और उसके अस्तित्व के लिए ये इतना जरूरी है कि इसके बिना तो जीवन ही असंभव है। जैसा कि किसी ने ठीक ही कहा है, ना होता जल तो जग जाता जल। वास्तव में जीवन की उत्पत्ति जल से ही प्रारंभ हुई है। हमारे शरीर का लगभग 65% भाग पानी ही है। दैनिक जीवन की प्रत्येक घरेलू प्रक्रिया में, जैसे खाना बनाने से लेकर पीने के पानी तक, नहाने से लेकर कपड़े धोने तक, शॉर्ट से लेकर सफाई तक, प्रतिदिन एक व्यक्ति लगभग 120 लीटर पानी खर्च करता है, जिसमें औसतन 2 लीटर पानी पीने के लिए ही चाहिए।
7: हमारे देश में पानी का सबसे अधिक उपयोग कृषि में फसलों की सिंचाई के लिए होता है। मवेशियों को भी काफी मात्रा में पानी चाहिए। इसी प्रकार विभिन्न उद्योगों में भी इसकी जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये एक अच्छा घोलक, शीतक और सफाई का माध्यम है। बिजली बनाने का एक मुख्य साधन पानी ही है, जिसे जल विद्युत या पन बिजली कहते हैं। आज भी परिवहन का सबसे सस्ता साधन नदियों में चलने वाली नौकाएं या समुद्री जहाज ही हैं।
6: काफी हद तक मौसम भी तो पानी और उसकी मात्रा पर निर्भर करता है। जलाशय और खासकर विशाल सागर, जो ऊष्मा ऊर्जा के बैंक का कार्य करते हैं, जो ऊष्मा को अवशोषित करते हैं और उसे छोड़ते हैं। इस कारण समुद्र तट के क्षेत्रों की जलवायु समुद्र से दूर के क्षेत्रों से भिन्न होती है। समुद्र तट के इलाकों में न तो सर्दी में ज्यादा सर्दी और न ही गर्मियों में ज्यादा गर्मी ही पड़ती है।
7: मगर ये पानी आता कहाँ से है, यानी इसके मुख्य स्रोत क्या क्या हैं?
6: आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि पृथ्वी पर कुल पानी का लगभग 97% महासागरों और समुद्रों में है, जो कि धरती की 3/4 सतह पर फैले हुए हैं। समुद्र का पानी खारा होता है, इसका उपयोग सीधे तौर पर नहीं किया जा सकता। शेष 3% ताजे जल के रूप में उपलब्ध है। इस 3% में से 2% जल हमारी पहुंच के बाहर है, क्योंकि ये जमा हुआ है। हिम के रूप में पहाड़ों की चोटियों पर, या ग्लेशियरों के रूप में, या फिर अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और ध्रुवों पर बर्फ की विशाल और मोटी चादर के रूप में, जहां पेंगुइन और सील रहते हैं। इस प्रकार सिर्फ 1% जल ही नदियों और झीलों में है, या फिर भूमिगत जल जो हम कुओं और नलकूपों के द्वारा निकालते हैं, और कुछ हवा में नमी और बादलों के रूप में। इसे यूं समझें कि अगर धरती पर 9 चम्मच पानी जमी हुई बर्फ के रूप में है, तो नदियों में बहता पानी 1 बूंद के बराबर है।
7: सच कहा जाए तो पानी हमारे आसपास चारों तरफ है। यहाँ तक कि रेगिस्तान की सूखी हवा में भी पानी की आर्द्रता अवश्य होती है। हमारे पैरों के नीचे की मिट्टी में कुछ न कुछ मात्रा में पानी मौजूद रहता है, और उसके नीचे भूमिगत जल।
6: आपने सही बताया, मगर पानी तो वर्षा से भी आता है।
7: हमारे खेतों की फसलों के लिए और पीने का पानी काफी मात्रा में वर्षा से ही आता है। इस विषय पर आप कुछ और बताना चाहेंगे?
6: हाँ, क्यों नहीं। हमारे देश में जलवायु की विविधताएं हैं। कहीं थार जैसे रेगिस्तान हैं, तो कहीं हिमालय जैसे बर्फ से ढके हुए पहाड़। इसलिए वर्षा में काफी असंतुलन और असमानता है। जैसे राजस्थान के जैसलमेर में 20 सेंटीमीटर के लगभग वर्षा प्रतिवर्ष होती है, तो आसाम के चेरापूंजी में लगभग 1100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इसी तरह मुंबई और पुणे के बीच सिर्फ 160 किलोमीटर की दूरी पर भौगोलिक कारणों से मुंबई में मानसून के समय लगभग 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है, और इतने ही समय में पुणे में लगभग 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तभी तो किसी कवि ने कहा है, भारत तेरी अजब कहानी, 2 कोस पर बदले पानी और 100 कोस पर वाणी।
7: फिर भी हम वर्षा के मामले में भाग्यशाली हैं। मिलाकर हमारे देश में औसत प्रतिवर्ष 115 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जो विश्व के अन्य भागों की तुलना में बहुत अधिक है। भारत सबसे अधिक वर्षा के क्षेत्र में ब्राजील के बाद दूसरे स्थान पर आता है। कई कारणों से कुल वार्षिक वर्षा का दसवां भाग ही हम उपयोग में ला पाते हैं। एक अनुमान के अनुसार अगर स्थितियां बदली नहीं तो आज से 40 वर्ष बाद भी एक चौथाई से ज्यादा पानी हम उपयोग में नहीं ला सकेंगे।
6: हमारे देश में व्यापक जल स्रोतों का प्राकृतिक खजाना है, कहीं विशाल नदियां तो कहीं आभूषणों जैसी झिलमिलाती झीलें, कहीं झरझर करते जलप्रपात। और तीन तरफ फैला लंबा समुद्री किनारा, इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारे देश में पानी की कोई कमी नहीं है।
7: पानी तो एक मुख्य समाचार बन जाता है जब देश के किसी भाग में सूखा पड़ जाता है।

0: या गर्मियों में महानगरों में पानी का अभाव हो जाता है, जीवन के लिए कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं।
1: हमारे देश में पानी की प्रत्यक्ष अधिकता भ्रामक है और हम ऐसा मान लेते हैं कि हमें पानी का अभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन इस सच्चाई से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि पानी का हम दुरुपयोग भी करते हैं और कभी कभी अधिक और अनुचित उपयोग भी करते हैं। परिणाम स्वरूप पानी की गंभीर कमी की परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं।
0: हमारे देश में हर एक को आवश्यकता अनुसार पानी क्यों नहीं मिल पाता है, इसके क्या कारण हैं?
1: पानी की कमी के कई कारण हैं। इनमें प्रमुख हैं बढ़ती हुई आबादी की बढ़ती हुई पानी की आवश्यकताएं, पीने के पानी का मुख्य स्रोत भूमिगत जल है। अधिक जरूरतों को पूरा करने के लिए यह संसाधन तीव्र गति से कम हो रहा है। कई प्रदेशों में भूमिगत जल का बहुत उपयोग होने लगा है। भूमि के नीचे से जल निकालने की दर भूमि में जल रिसने की दर से अधिक है। परिणाम स्वरूप भूमिगत जल स्तर यानी वाटर लेवल बहुत नीचे चला गया है।
0: देखिए, बरसात तो सिर्फ वर्षा ऋतु में होती है ना, इसलिए दूसरे समय के लिए पानी का संचय करना पड़ता है, और पानी का संचय करना कोई आसान काम नहीं है।
1: पानी को जमा करके रखने का एक मुख्य तरीका है बांध बनाना। पानी को बड़े पैमाने पर बांध बनाकर उसे एक जगह पर विशेष उद्देश्यों के लिए रोक लिया जाता है। बांध के जल का उपयोग कृषि में सिंचाई के लिए नहरों के माध्यम से किया जाता है और सूखे में पानी की कमी से बचा जा सकता है। भारत में भाखड़ा बांध, टिहरी बांध, हीराकुंड बांध, रिहंद बांध, मिस्र में अश्वान बांध और पाकिस्तान में तरबेला बांध और अमेरिका में कूली और हैवर बहुउद्देश्य परियोजनाओं के उदाहरण हैं। वर्षा के पानी को जमा करके खेती के लिए और यहाँ तक कि घरेलू जरूरतों के लिए भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। सावधानी से जमा किया हुआ पानी साफ होता है और सुरक्षित भी।

0: दुनिया रेडियो टंटिया भील 90.8 एफएम झाबुआ की आवाज।
1: वन में मेरा मन है। पेड़ों की हरियाली, ठंडी ताजी हवा एक नई ऊर्जा का एहसास दिलाती है। सच में वन एक बहुत उपयोगी प्राकृतिक संपदा है, फिर भी पता नहीं क्यों हम अपनी जरूरतों को पूरा करते करते ये भूल जाते हैं कि इनकी देखभाल और सुरक्षा हमारी ही जिम्मेदारी है। अरे ये आवाज कैसे सुनाई दे रही है इधर से? लगता है कोई गा रहा है, जरा सुना जाए।

0: देखो वनों के होते हैं कितने प्रकार,
1: कुछ वन पर्वतीय, कुछ पतझड़ी,
0: तो कुछ सदाबहार।
2: कहीं तेंदू तो कहीं महुआ, कहीं साल तो कहीं पलाश, बचाएं इनको हमें कहीं करनी न पड़े फिर तलाश।
3: वनों

0: अरे वाह, कितना सुंदर संदेश था। सच ही तो कहा है, वन से ही जीवन है। वन है तभी तो हम हैं। तो क्यों ना हम सभी अपनी रोजमर्रा की छोटी छोटी गतिविधियों में सावधानी बरतकर अपने हिस्से की जिम्मेदारी पूरी करें और वनों के संरक्षण में अपना योगदान दें। जैसे वनों से मिलने वाली चीजों, कागज, लकड़ी का समुचित उपयोग, पेड़ों की कटाई को रोकना, नए पेड़ लगाना और भी बहुत कुछ। आप भी सोचिए और अपनी भागीदारी सुनिश्चित कीजिए।
1: वन बचाएं। अमित बेटा।
2: जी माँ।
1: मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ, तुम दादाजी और सोनिया दीदी के पास जाकर बैठो।
2: ठीक है माँ।
1: और हाँ, देखो उन्हें तंग मत करना।
2: अच्छा माँ, मगर तुम जल्दी आना।
1: हाँ मैं जल्दी आ जाऊंगी, तुम जाकर खेलो।
2: अच्छा माँ।

0: सोनू दीदी
1: बोलो।
0: ये देखो मैंने शेर का चित्र बनाया है।
1: अरे वाह इतना सुंदर।
2: अरे वाह भाई वाह अमित, अरे तुमने तो शेर का चित्र बहुत अच्छा बनाया है।
1: शेर तो जंगल का राजा होता है, पर अमित तुमने जंगल तो बनाया ही नहीं।
0: अरे हाँ सुनू दीदी।
1: हाँ
0: ये जंगल कैसा होता है?
1: जंगल
2: जंगल हमारे गांव के पास ही है बेटे।
1: बिल्कुल ठीक।
2: देखो जंगल का मतलब दूर दूर मीलों तक घने पेड़ पौधे झाड़ियाँ, समझे?
1: हाँ।
2: इसमें ढेर सारे जंगली जीव जंतु जैसे बाघ, हिरण, हाथी, हाँ, सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़े आदि रहते हैं।
1: और जंगल इन सभी जीवों का घर होता है, है ना दादाजी?
2: बिल्कुल सही सोनिया बेटी। दरअसल जंगल यानी वन हमेशा हमारे लिए वरदान रहे हैं।
1: अच्छा
2: समझे? हाँ ये प्रकृति का उपहार है। आज बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण के कारण वनों का महत्व और भी बढ़ गया है।
1: अच्छा दादाजी।
2: हाँ भाई अगर वन न हो तो हम सब पर संकट छा जाएगा। हाँ और पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता ही चला जाएगा।
1: पर्यावरण प्रदूषण ये क्या होता है दादाजी?
2: अरे बेटा पर्यावरण हमारे आसपास के वातावरण को कहते हैं, समझे? जैसे हवा, पानी, मिट्टी, पहाड़, पेड़, पौधे, ये सब कुछ। अगर ये प्रदूषित हो जाएं, यानी गंदे हो जाएं, तो उसे पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं, समझे? हमारे ऊपर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है।
1: वो कैसे दादाजी?
2: भाई जैसे गंदा पानी पीने से अनेक बीमारियां होती हैं, वैसे ही प्रदूषित वायु में सांस लेने से सांस संबंधी बीमारी हो जाती है।
1: अच्छा।
2: और बेटे अगर वन न हो तो सभी जीवों का जीना दूभर हो सकता है।
1: वो कैसे दादाजी?
2: सुनो वन वातावरण प्रदूषित होने से बचाते हैं और हमें शुद्ध हवा देते हैं।
1: अच्छा।
2: हाँ पेड़ पौधों के अंदर जो नमी होती है वो वर्षा कराने में सहायक होती है।
1: अच्छा।
2: भाई इन सब के अलावा वनों से हमें ढेरों कीमती सामान भी मिलते हैं। जैसे अनेक जड़ी बूटियां, फल, लकड़ी, रबर, गोंद और पत्तियां और पेड़ों की छालें जिनका उपयोग हम दवा, फर्नीचर, खाद्य पदार्थ आदि के रूप में करते हैं।
1: अच्छा दादाजी। वन इतने उपयोगी हैं, फिर इनका विनाश क्यों हो रहा है?
2: अरे बेटे इसके बहुत से कारण हैं, जैसे हमारे देश में जनसंख्या ज्यादा हो गई है।
1: अच्छा।
2: लोगों के पास रहने की जगह कम पड़ने लगी है। और भाई लोगों को रहने के लिए जगह तो चाहिए, इसलिए लोग वनों को काट कर अपने रहने की जगह बना रहे हैं।
1: अच्छा।
2: हाँ बड़े बड़े कारखानों के लिए भी जगह की जरूरत है।
1: अच्छा।
2: इसके लिए भी वन काटे जाते हैं।
1: अच्छा।
2: और पेड़ों की लकड़ियाँ प्रमुख साधन है। इसके अलावा झूम खेती से भी वनों का विनाश हो रहा है।
1: अच्छा दादाजी। दादाजी ये झूम खेती क्या है?
2: देखो बेटा झूम खेती हमारे देश के उत्तर पूर्वी राज्यों तथा अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है, समझे? भाई इस प्रकार की कृषि में लोग भूमि के एक टुकड़े पर कुछ दिन खेती करने के बाद दूसरी जगह वनों को साफ कर खेती करना शुरू कर देते हैं।
1: अच्छा ऐसा करते हैं?
2: हाँ इसके कारण नागालैंड, असम, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम जैसे राज्यों में वन लगातार कम होते जा रहे हैं।
1: दादाजी, इन वनों को बचाया कैसे जाए?
2: अरे बेटा, वनों को तो हम कई तरीकों से बचा सकते हैं।
1: वो कैसे?
2: जैसे ईंधन के लिए लकड़ी का प्रयोग न कर कोई अन्य वस्तु जैसे गोबर गैस, प्राकृतिक गैस और सौर ऊर्जा का उपयोग करें।
1: अच्छा।
2: हाँ, और इमारत और फर्नीचर में लकड़ी का उपयोग न करके फाइबर, शीशे, लोहे का उपयोग कर सकते हैं।
1: दादाजी,
2: बोलो बेटे।
1: हम पेड़ काटने से पहले पेड़ लगा भी तो सकते हैं।
2: अरे वाह वाह अमित भाई, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो बेटे। सोनिया बेटी।
1: हाँ जी।
2: देखो जरा कौन आया है।
1: हाँ दादाजी, मैं अभी देखती हूँ।

0: रेंजर चाचा आप? हाँ ये नमस्ते।
1: नमस्ते बेटी नमस्ते। काका नमस्ते।
2: अरे भाई रेंजर आओ आओ भाई और सुनाओ कैसे हो? आओ आओ इधर आओ इधर।
1: सब ठीक है काका।
0: चाचा जी नमस्ते।
1: नमस्ते बेटा और सुनाओ बच्चों दादाजी से क्या बातें हो रही थी?
0: हम जंगल के बारे में बात कर रहे थे चाचा जी।
1: अच्छा
0: रेंजर चाचा आप तो जंगल में रह चुके हैं।
1: हाँ?
0: आप हमें बताइए कि वनों को बचाने के लिए लोगों को कैसे बताया जाए?
1: बच्चों ये बातें अनेक तरीकों से बताई जा सकती हैं।
0: वो कैसे?
1: जैसे टीवी रेडियो पर वनों के महत्व को बताकर, अखबारों में वनों के महत्व पर लेख लिखकर, और पोस्टर बैनर के जरिए वन बचाने का संदेश देकर।
0: अच्छा चाचा जी वनों को बचाने के लिए क्या क्या किया जा रहा है?
1: बच्चों पेड़ों को बचाने के लिए अनेक आंदोलन हुए हैं।
0: अच्छा
1: वर्षों पहले उत्तराखंड के लोगों ने चिपको आंदोलन की शुरुआत की। इसमें गांव के सभी लोगों ने पेड़ों से चिपक कर उन्हें कटने से बचाया।
2: देखा बच्चों?
0: हाँ जी।
1: ठीक इसी प्रकार कर्नाटक के सिरसी जिले के सालकड़ी गांव के निकट एक जंगल में अप्पिको आंदोलन शुरू हुआ। वहाँ वन विभाग ने जब पेड़ काटने शुरू किए तो गांव के स्त्री पुरुष और बच्चे पेड़ों से चिपक गए।
0: अच्छा
1: इससे मजबूर होकर पेड़ काटने का काम रोकना पड़ा।
2: देखा?
1: इसी तरह राजस्थान के खेड़जली गांव और उत्तरकाशी क्षेत्र के तिलाड़ी गांव के लोगों ने वनों को बचाने के लिए बहुत संघर्ष किया है।
2: अच्छा भाई रेंजर ये बताओ कि इस विषय में हमारी सरकार क्या कर रही है?
1: काका हमारी सरकार ने भी वनों को बचाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं।
0: वो कौन सी कदम है चाचा जी?
1: जैसे बिना इजाजत पेड़ काटने वालों को जुर्माना और सजा भुगतनी पड़ती है।
0: अच्छा
1: प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड वनों की कटाई पर नजर रखता है और इसके अलावा सरकार ने सामाजिक वानिकी नाम की एक योजना भी बनाई है जो अब कई जगह चल रही है। इस योजना के तहत लोगों को ये बताया गया है कि गांव के लोग खुद पेड़ लगाएं।
0: अच्छा
1: और वन काटने के बजाय इन्हीं पेड़ों से अपनी जरूरतों को पूरा करें।
0: अच्छा
1: और झूम खेती करने वालों के लिए सरकार ने एक स्थायी कृषि प्रणाली बनाई है ताकि लोग झूम खेती छोड़ दें।
0: अच्छा
1: इन सब के अलावा जंगलों की रक्षा से संबंधित शिक्षा एवं प्रशिक्षण के लिए हमारी सरकार ने अनेक शिक्षण संस्थान भी खोले हैं।
0: अच्छा
1: जैसे वन अनुसंधान संस्थान, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी।
0: चाचा जी।
1: हाँ बेटा।
0: फिर तो मैं अपने सारे दोस्तों को बताऊंगा कि वन कितने जरूरी हैं।
1: शाबाश।
0: हाँ और मैं भी अपने हर एक जन्मदिन पर एक पेड़ लगाऊंगी और अपने सभी साथियों को भी पेड़ लगाने को कहूंगी।
1: बहुत अच्छे।
2: अरे वाह भाई ये तो बहुत अच्छी बात है। तो बगीचे में चलकर इसकी शुरुआत आज ही से करें।
0: चलो चलो। मैं भी पेड़ लगाऊंगा। हाँ मैं भी।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM झाबुआ की आवाज।
1: दो गौरैया।
2: इस घर में हम तीन लोग रहते हैं, माँ, पिताजी और मैं। आंगन में आम का पेड़ है और तरह तरह के पक्षी उस पर डेरा डाले रहते हैं। तोते, कौवे और गोरैयों से पेड़ आबाद रहता है। सुबह होते ही कबूतरों का गुटर गू संगीत सुनाई देने लगता है। अब एक दिन अचानक क्या हुआ कि दो गोरैया सीधी घर में घुस आई और बिना किसी से पूछे उड़ उड़ कर मकान देखने लगी। मैंने पिताजी को आवाज लगाई। पिताजी, देखिए ना, गोरैया घर में क्या ढूंढ रही हैं?
3: ये मकान का निरीक्षण कर रही हैं कि रहने योग्य है भी या नहीं।
2: अच्छा,
3: देखो देखो, कभी खिड़की पर बैठ रही हैं तो कभी रोशनदान पर।
2: हाँ, अरे हाँ हाँ पिताजी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।
4: दो तीन दिन बाद क्या देखते हैं कि गोरैया के जोड़े ने बैठक की छत में लगे पंखे के गोले में तिनके और घास फूस से घोंसला तैयार कर लिया है और मजे में चहचहा रही है। माँ और पिताजी सोफे पर बैठे उन्हें ताक रहे हैं।
3: अब ये देखो, इन्होंने तो डेरा ही जमा लिया। उड़ाना पड़ेगा इन्हें यहाँ से।
5: अब तो ये नहीं उड़ेंगी, इन्हें पहले उड़ाते थे तो उड़ जाती, अब तो इन्होंने यहाँ पर घोंसला बना लिया है।
3: अरे ऐसे कैसे नहीं उड़ेंगी, देखता हूँ यहाँ रहती कैसे है। गोरैया मेरे आगे चीज क्या है, मैं अभी निकाल कर बाहर करता हूँ।
5: छोड़ो जी, चूहों को तो निकाल नहीं पाए, अब चिड़ियों को क्या निकालोगे।
3: ये बात है, देखो अभी कैसे उड़ाता हूँ। चल उड़ उड़ यहाँ से। इसमें हंसने की क्या बात है?
5: चिड़िया एक दूसरे से पूछ रही हैं कि ये आदमी कौन है और ये नाच क्यों रहा है।
3: देखो मुझे गुस्सा ना दिलाओ, बस देखती जाओ।
5: ठीक है,
3: चल चल चल, हट हट, उड़।
5: ये अब नहीं निकलेंगी।
3: निकलेंगी कैसे नहीं, अभी डंडा लेकर आता हूँ।
4: मैं इस खेल का खूब मजा ले रहा था। पिताजी डंडा लेकर पंखा ठकोरते तो गोरैया उड़कर कभी पर्दे के डंडे पर जा बैठती तो कभी किचन के दरवाजे पर। उधर माँ को चिठोली सूझती।
5: तुम भी बड़े समझदार हो जी, सभी दरवाजे खुले हैं और तुम गोरैया को बाहर निकाल रहे हो। एक दरवाजा खुला छोड़ो और बाकी सारे बंद करो, तभी ये निकलेंगे। हाँ
3: ठीक है ठीक है। अरे अब तू खड़ा क्या देख रहा है
2: जी,
3: जल्दी से दोनों दरवाजे बंद कर दे
2: जी,
3: वो सिर्फ किचन वाला दरवाजा खुला रख
2: जी। अच्छा पिताजी।
3: हट, हट, हट।
4: अब पिताजी लाठी उठाकर फिर गोरैया से लोहा लेने को लपके। एक बार तो लाठी माँ के सर पर लगते लगते बची।
5: अरे अरे,
3: अरे
5: क्या करते हो जी,
3: गलती से लग गया।
5: आराम से।
4: गोरैया चीची करती, कभी एक तो कभी दूसरी जगह जा बैठती। आखिरकार दोनों किचन की तरफ खुलने वाले दरवाजे से बाहर निकल गए।
5: मजा आ गया, आखिर तुमने कर ही दिखाया।
4: माँ तालियां बजाने लगी और पिताजी लाठी दीवार के साथ टिकाकर छाती फैलाए कुर्सी पर आ बैठे और दरवाजा बंद रखने का हुक्म दे डाला।
3: एक दिन अंदर नहीं घुस पाएंगी तो घर छोड़ देंगी अपने आप।
4: सभी इत्मीनान से बैठे ही थे कि पंखे के ऊपर से ची ची की आवाज सुनाई पड़ी। माँ खिलखिलाकर हंस दी।
3: अरे
5: वो देखो, फिर से आ गई घर में।
4: दोनों गोरैया फिर से अपने घोंसले में मौजूद थी। गोरैया दरवाजे के नीचे की खाली जगह से फिर अंदर घुस आई थी। माँ की हंसी रुक नहीं रही थी और पिताजी का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ता जा रहा था।
3: देखता हूँ मैं इनको।
5: अरे सुनो सुनो, देखो जी इन चिड़ियों को बाहर मत निकालो, अब तक तो इन्होंने अंडे भी दे दिए होंगे।
3: बाहर मत निकालो, तो क्या मैं इन्हें कालीन बर्बाद करने दूं और खुद तमाशा देखता रहूं?
5: सुनो तो, रुक जाओ।
4: उन्होंने दरवाजों के नीचे कपड़े ठूस दिए और लाठी झुलाते हुए चिड़ियों पर टूट पड़े और उन्हें बाहर खदेड़ दिया।
3: गई।
4: दोनों पिछले आंगन के दीवार पर जा बैठे। दूसरे दिन रविवार की छुट्टी थी। हम लोग बैठक में आए तो देखते क्या है कि गोरैया फिर से पंखे पर बैठी मल्हार गा रही है। अब तो ये रोज का खेल हो गया।
6: मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। अभी सुन ये।
4: दिन में गोरैया बाहर निकाल दी जाती और रात होते ही वो न जाने कहां से अंदर आ जाती। पिताजी की सहनशीलता भी अब जवाब दे चुकी थी। वो लाठी और स्टूल उठा कर ले आए और घोंसला ही निकालने का फरमान सुना दिया। पहले प्रयास में दो तीन तिनके बाहर आ गिरे। माँ हंस दी।
5: तुम्हारे बस की नहीं है।
3: फिर कोशिश करता।
4: तभी मेरी नजर बाहर बैठी गोरैया पर पड़ी। वो कुछ कुछ दुबला गई थी और कुछ कुछ काली भी पड़ गई थी। अब वो पहले की तरह चहक भी नहीं रही थी।
3: अब देखो,
4: घोंसला लाठी के साथ खिंचता चला आने लगा। सहसा ची ची का शोर सुनाई दिया। पिताजी ठिठके। बाहर देखा तो दोनों गोरैया वहीं बैठी थी। फिर ये आवाज अंदर कैसे आई?
7: पिताजी देखो देखो देखो ऊपर देखो। माँ पिताजी
5: हाँ?
7: वो देखो गोरैया के छोटे छोटे बच्चे।
5: अरे हाँ बेटी।
4: अरे पिताजी चौंक कर स्टूल से उतरे। हम सभी आश्चर्यचकित से देख रहे थे। गोरैया के नन्हे नन्हे बच्चे चोंच खोले अपने आगमन की सूचना दे रहे थे। ची ची करते हुए मानो कह रहे हो कि हमारे माँ बाप कहाँ है, कहाँ है हमारे माँ बाप। माँ कुर्सी से उठी और सभी दरवाजे खोल दिए।
5: ये लो, ये दरवाजा भी खोल दिया। आ जाओ गोरैया।
4: और तभी गोरैया झट से उठकर अंदर आ गई और ची ची करते अपने बच्चों से जा मिली।
3: अरे
4: वो उनकी नन्हे नन्हे चोंचों में चुग्गा डाल रही थी। हम इस दृश्य को देखते ही रह गए। कमरा पक्षियों के कोलाहल से गुंजायमान था। अब पिताजी उनकी तरफ देख देख कर मुस्कुरा रहे थे।
3: सच में
8: छोटे और बड़े।
9: अरे छोटे बड़े।
10: जी दादाजी।
9: मैंने तुम्हारे लिए जगह बना दी है ताकि तुम यहाँ आराम से रह सको।
10: जी दादाजी।
9: यहाँ जगह भी अच्छी है और खाने को भी कितना कुछ है। जाओ बेटा अब तुम खेलो। हाँ जाओ बेटा।
11: ओ भाई छोटे।
12: हाँ भाई बड़े।
11: आज हम पार्टी करते हैं।
12: हाँ हाँ भाई क्यों नहीं, लेकिन पार्टी किस खुशी में?
11: हम यहाँ इतने दिनों से रह रहे हैं बिना किसी परेशानी के।
12: हाँ भाई बड़े ये तो तुमने सही कहा, यहाँ हमें कोई परेशानी नहीं। हमें तो यहाँ खाना भी कितना अच्छा मिलता है और हमारी तो रहने की जगह भी बढ़ती जा रही है।
11: सही कहा भाई तुमने, अब हम अपने और दोस्तों को भी यहाँ रहने के लिए बुला सकते हैं।
12: हाँ भाई बड़े मैं भी अपने सारे दोस्तों को बुला लूँगा।
11: सभी मिलजुल कर रहेंगे, रोज पार्टी करेंगे।
12: हाँ हाँ हम सब खेलेंगे और खूब पार्टी करेंगे।
1: इस तरह छोटे और बड़े वहाँ बड़े आराम से रहने लगे। क्या आप जानते हो वो छोटे और बड़े कौन थे और वो कहाँ रहने लगे? सोचो। सोचो सोचो। नहीं समझ आया तो चलिए मैं ही आपको बता देती हूँ। वो छोटे और बड़े कोई और नहीं बल्कि चीनू के दांत में रहने वाले कीटाणु थे और चीनू चॉकलेट खाकर बिना ब्रश किए जो सो गई थी। इसलिए आज छोटे और बड़े अपने और दोस्तों के साथ पार्टी मना रहे थे।

0: हमको तो चॉकलेट और मिठाई मिली,
1: हमको तो रोटी और चावल मिले,
0: बहुत स्वादिष्ट है।
2: छोटे?
3: हाँ भाई बड़े।
2: चलो और कुरेदते हैं दांतों में।
3: हाँ लगता है कुछ और खाने को मिले।
4: कीटाणुओं के शोर करने से चीनू के दांत में दर्द हो जाता है और उसकी नींद टूट जाती है और वो इसकी शिकायत अपनी मम्मी से जाकर करती है।
5: आ, आ, आ, मम्मा मेरे दांत में बहुत तेज दर्द हो रहा है।
6: क्या दांत में दर्द? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है ना रोजाना ब्रश किया करो।
5: मम्मा मैं तो रोज ब्रश करती हूँ।
6: तुम सिर्फ सुबह ब्रश करती हो ना, रात को तुमने चॉकलेट खाई थी तब किया था ब्रश?
5: नहीं मम्मी।
6: देखा अब दिखाओ जरा कहाँ हो रहा है दर्द? मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मैं डॉक्टर के पास लेके चलती हूँ तुम्हें। परेशान मत हो, दर्द ठीक हो जाएगा, बस जल्दी से ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा बेटा।
4: चीनू की माँ और चीनू डॉक्टर के पास जाते हैं।
6: नमस्ते डॉक्टर साहब।
7: अरे नमस्ते नमस्ते कमला जी, आइए आइए।
6: देखिए ना डॉक्टर साहब, इसके दांत में दर्द हो गया है।
7: बस बस घबराओ मत बेटा, सब ठीक हो जाएगा। नाम क्या है तुम्हारा?
5: चीनू।
7: चीनू, लगता है चीनी ज्यादा खाती हो हैं? कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। अच्छा मुँह खोलो मुँह खोलो। हाँ थोड़ा सा और। एक सेकंड बस, ये लो इस पे दवा लगा देता हूँ। हाँ इसे खा के कुल्ला करो बस। अब कुछ दर्द कम हुआ बेटा? हुआ ना? हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। देखो बेटा ये जो तुम्हारा दर्द है ना, ये कीटाणु की वजह से है, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में कीड़ा लगना कहते हैं। और ये इसलिए लगता है क्योंकि आप समय से दो बार ब्रश नहीं करते होंगे, क्यों है ना कमला जी?
6: जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप।
7: देखो बेटा कभी भी लापरवाही मत करना, क्योंकि दांत जो है हमारी सुंदरता का प्रतीक है ना, कितने अच्छे लगते हैं दांत। तो इसीलिए हमेशा दो बार, एक तो हमें सोकर उठने के बाद ब्रश करना चाहिए और उसके बाद सोने से पहले यानी रात को भी ब्रश करना चाहिए। और हमें कैसे करना चाहिए, सही तरीका क्या पता है? ऊपर नीचे ब्रश को ऊपर नीचे करना चाहिए, ठीक है, जिससे कि खाने का कोई भी अंश दांतों में फंसा ना रह जाए, समझे? और हाँ समय समय पर डॉक्टर से दांतों की जांच भी करवानी चाहिए। कमला जी आगे से आप भी ध्यान रखिएगा।
6: जी बिल्कुल।
7: है ना
1: डॉक्टर साहब, क्या मैं कभी चॉकलेट नहीं खा सकती? कभी नहीं मीठा खाऊंगी मैं।
6: डॉक्टर साहब इसको मीठा बहुत पसंद है, ये मीठा के बगैर नहीं रह सकती।
7: समझ गया। देखो बेटा ऐसी बात नहीं है कि तुम मीठा नहीं खा सकती, तुम मीठा बिल्कुल खा सकती हो, चॉकलेट भी खा सकती हो, मिठाई भी खा सकती हो, लेकिन हाँ खाने के बाद हमेशा कुल्ला करना और दांत अच्छे से साफ करके सोना, जैसे मैंने बताया दो बार ब्रश। समझ गए ना? और एक बात और, अगली बार जब आओगी ना तो हमारे लिए भी चॉकलेट लेकर आओगी? लाओगी चॉकलेट? ये हुई ना बात। शाबाश, जाओ शाबाश।

0: हाँ बेटा, मैं समझता हूँ। बेटा, ये जगह अब बिल्कुल साफ सुथरी हो गई है और यहाँ खाने को भी अब कुछ नहीं रहा। चलो, हम किसी और दांत में चलकर वहाँ जगह बनाते हैं। चलो
1: चलो
2: आओ,
1: चलो
2: चलो
3: चलो। इस तरह सारे कीटाणु चीनू का दांत छोड़कर नए घर की तलाश में निकल जाते हैं। चीनू भी अब रोज रात को ब्रश किए बिना नहीं सोती। बच्चों, अगर आप नहीं चाहते जो कीटाणु अभी अभी बेघर हुए हैं वो आपके दांत में आकर अपना घर बना लें, तो आप भी चीनू की तरह रोज रात को ब्रश करने की आदत डाल लें।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है बाल गीत। सबसे पहले सुनिए ये गीत, शीर्षक है बुलबुल।

बाल गीत अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विषय संयोजन प्रोफेसर रामजन्म शर्मा, विषय समन्वय डॉक्टर राजेंद्र पाल, आलेख डॉक्टर सरोजिनी प्रीतम, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, संगीतकार संतोष कुमार, गायन स्वर कुक्कू माथुर, अनुजा बिसारिया, देवाशीष और बच्चे, ध्वनियांकन सतीश लाडे और दीपक पांडे, तकनीकी निर्देशन उपेंद्र नाथ, निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो।

0: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
1: नमस्कार साथियों, रेडियो टांटिया व्हील 90.8 FM सुनने वाले सभी किसान साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और दोस्तों कैसे हैं, कैसे है हमारे किसान साथी? हमें आशा है कि हमारे किसान साथी अच्छे होंगे और हमारा रेडियो टांटिया व्हील 90.8 FM सुन रहे होंगे। हाँ, क्योंकि बड़ी अच्छी बात है, हम इस कार्यक्रम के माध्यम से लेकर आते हैं। तो हमारे किसान साथियों के लिए आज के इस खास कार्यक्रम में 3 सेगमेंटों पर हम बात करते रहते हैं। आज के हमारे कार्यक्रम खेतीबाड़ी में बात करेंगे FPO, क्योंकि बहुत सारे किसान साथी FPO के बारे में जानते नहीं है, यानी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी किस तरीके से गठित होती है, इसका क्या फायदा होता है और कौन कौन एजेंसियां इसको सहायता करती है और हमारे किसान साथियों को बहुत मदद करेगी FPO, क्योंकि FPO बनाना यानी संगठन बनाना और उससे लाभ लेना ये बेहद जरूरी है। साथ साथ में हमारे जो भारत सरकार द्वारा इस पर बहुत सारा काम किया जा रहा है, राज्य सरकार द्वारा बहुत सारे काम किया जा रहे हैं, क्योंकि यदि हम फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी यानी FPO बनाते हैं तो बहुत सारे फायदे हैं। तो आइए हमारे इस कार्यक्रम खेतीबाड़ी में आज हम FPO पर चर्चा करेंगे और साथ साथ में पशुधन पर भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि पशुधन हमारे लिए बहुत जरूरी है और खेती किसानी में पशुधन का बहुत ज्यादा महत्व रहता है। और साथ साथ में हम एक उन्नतशील किसान जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है उनकी एक कहानी भी सुनेंगे आज के कार्यक्रम खेतीबाड़ी में। तो देर नहीं करते हैं, आपको सीधा ले चलते हैं और इस सेगमेंट में सबसे पहले जानते हैं FPO यानी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी किस तरीके से काम करती है, कैसे इसका हमारे किसान साथी लाभ ले सकते हैं। तो आइए सुनते हैं इस रिपोर्ट को।
2: किसान भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में एक अभियान चलाया जा रहा है जिसका नाम रखा गया है किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी, और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है आजादी का अमृत महोत्सव का। बता दें आपको कि 6 दिवसीय इस अभियान का मकसद ये है कि हमारे किसानों को खेती किसानी और पशुपालन के क्षेत्र में जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जितने भी कार्य किए जा रहे हैं उनके बारे में अवगत कराया जा सके, उनके प्रति जागरूक किया जा सके। और आज इसमें क्या कुछ खास होने वाला है बता दें आपको, आज बात होगी FPO की, किसान उत्पादक संगठन की। क्या है ये, किस तरह से हमारे किसान इससे जुड़कर लाभ ले सकते हैं, आइए जानते हैं।
3: हमारे देश में छोटे और सीमांत किसानों की संख्या काफी है, ऐसे में जब ये किसान अकेले खेती करते हैं तो उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। साथ ही जब वो अपनी उपज को बाजार में ले जाते हैं तो उन्हें उपज का सही दाम भी नहीं मिल पाता। ऐसी समस्याओं से बचने के लिए कई किसान मिलकर किसान समूह बनाते हैं। ये समूह खेती में आ रही सभी बाधाओं को मिलकर पार करते हैं, जिससे बिना किसी रुकावट के हर किसान को उसकी फसल का वाजिब दाम मिल सके। ये संगठन किसानों का एक ऐसा समूह है जो कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होता है। ये संगठन खेती किसानी से जुड़े काम को आगे बढ़ाने में मदद करता है। FPO से कई किसान जुड़े होते हैं। मौजूदा समय में FPO की मदद से किसानों को अपनी उपज का मोल भाव करने का मौका मिल रहा है। किसान उत्पादक संगठन से किसानों को न सिर्फ अपनी फसल बेचने की सुविधा मिल रही है बल्कि कृषि उपकरण, खाद, बीज, उर्वरक जैसी जरूरी और अहम चीजें अच्छी गुणवत्ता और उचित मूल्य में मिलते हैं। FPO ने छोटे सीमांत और भूमिहीन किसानों को इकट्ठा कर किसानों की आर्थिक शक्ति और उनके बाजार लिंकेज को बढ़ाने में मदद की है, जिससे उनकी आय में सुधार हो सके। FPO से खासकर छोटे किसानों को काफी फायदा हो रहा है और किसानों की आय बढ़ रही है। लघु कृषक कृषि व्यापार संघ और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक देश में किसान उत्पादक संगठनों को बनाने और उनको बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं। सरकार 2021-22 में 2500 किसान उत्पादक संगठनों की स्थापना करेगी। इससे देश के करीब 60,000 किसानों को मदद मिलेगी। ये 2500 FPO बनाने का काम केंद्र की उस योजना का हिस्सा है जिसके तहत सरकार ने 2023-24 तक देश भर में 10,000 नए कृषि उत्पादक संगठन स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। 5 साल के लिए हर एक किसान उत्पादक संगठन को सहायता दी जाएगी। हर एक FPO में 50% छोटे सीमांत और भूमिहीन किसान शामिल होंगे।
0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपनो
4: तमारू रेडियो आपड़ी बातें।
1: एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और अभी आपने इस खास रिपोर्ट को सुना। अब आपको हम एफपीयू के बारे में सतर्क जानकारी देने के लिए हम तैयार हैं और हमारे साथ विषय विशेषज्ञ के तौर पर जुड़ रहे हमारे साथ विशेषज्ञ, उनकी हम बात को सुनेंगे कि एफपीयू हमारे लिए कितना महत्व है, किस तरीके से गठित होता है, कौन कौन एजेंसी इसमें मदद करती है, इसके बारे में हम जानते हैं। लेकिन इससे पहले सुनते हैं इस प्यारे से गीत को। बने रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांटा 90.8 FM, आप लोग रेडियो अपनी बात है।

आज समाज में बालिकाओं के प्रति पुरुष तो ठीक, महिलाएं भी परंपराओं का हवाला देकर अपनी फूल सी कोमल बच्चियों को अपनी जिंदगी को ठीक से जीने नहीं देती। हमारे समाज में अनेक बच्चियां रूढ़िवाद एवं सामाजिक प्राचीन परंपराओं के कारण माँ के कोख में ही खत्म कर दी जाती है। यदि जन्म लेती है तो परिवार पर बोझ बन जाती है, यह रूढ़िवादी परंपरा है। बच्चियां अपनी सिसकियां अपने हृदय में संजोकर अपने पिताजी की गोद में शायद यह जरूर अभ्यंतर से कहती होगी,

0: 93.8 FM, આપણો રેડિયો આપણી વાતે.
1: साथियों, जैसे आपको सबको सूचित है कि भारत सरकार ने कृषि किसान उत्पादक संगठन की एक महत्वपूर्ण योजना लेके आई थी. भारत सरकार का उद्देश्य है कि आने वाले विगत वर्षों में 10,000 से अधिक देश भर में कृषक उत्पादक संगठन बनाना. इस कृषक उत्पादक संगठन का प्रमुख ये फायदा है कि इसका उद्देश्य है कि किसानों को योजनाबद्ध तरीके से उनके उत्पाद को मूल्य संवर्धित करके या सीधा बाजार से उपभोक्ता तक जोड़ना. सरकार का उद्देश्य है कि किसान अपना उत्पाद है सीधा उपभोक्ता तक पहुंचाए और उनको मंडी से और उनके जो मिलने वाली जो उनको राशि है वो मंडी की तुलना में उपभोक्ता से अच्छी राशि मिले और बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रहे और मंडी से किसानों को जो लागत लगने वाली है फालतू की वो लागत से वो बचे. इसमें किसान उत्पादक संगठन वर्तमान में बनाने में 3-4 संस्थाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, जिसमें एक नाबार्ड बैंक है, नेफेड है, SFC है और NCDC है. इन सब ऑर्गेनाइजेशन संस्थानों ने क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बनाए हैं. ये विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं. ये वहाँ पे ये संगठन इन महत्वपूर्ण संस्थानों के सहयोग से किसान उत्पादक संगठन के निर्माण और उसमें उनके रजिस्ट्रेशन पंजीकरण की प्रक्रिया और उनके बिजनेस के व्यवसाय को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं. यदि किसी किसान साथी अपने क्षेत्र में कृषक उत्पादक संगठन का निर्माण करना चाह रहा है तो इन संस्थानों से संपर्क करके वो एक क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से मिल सकते हैं.
2: देश भर की सहकारी समितियां FPO के गठन में सहयोग करेंगी, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में खेती में निवेश को बढ़ाया जा सके. इतना ही नहीं, छोटे और सीमांत किसानों के पास मूल्य संवर्धन सहित उत्पादन तकनीक, सेवाओं और मार्केटिंग को अपनाने के लिए आर्थिक क्षमता नहीं होती है. ऐसे ही किसान हैं जो FPO से जुड़कर कामयाबी की दहलीज को छू रहे हैं.
3: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM. आपनो रेडियो आपड़ी बातें.

0: हमने एक एफपीओ का जो है गठन किया है, नीर आदर्श ऑर्गेनिक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, जिसमें 11 मेंबर हैं, 5 डायरेक्टर हैं, 6 मेंबर हैं। हमारे क्षेत्र में जबकि बेल्ट जो है ये गन्ने की बेल्ट है, लेकिन फिर भी डॉक्टर रितेश शर्मा जो बासमती के प्रधान वैज्ञानिक हैं, उनके सुपरविजन में यहाँ पर जो धान का एरिया है पिछले करीब 18 साल से उसमें बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है और गन्ने का क्षेत्रफल जो है थोड़ा सा कम हुआ है। उस चीज को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने नाबार्ड के द्वारा एक एफपीओ का गठन किया, जिससे कि यहाँ के किसानों को जो उनके मार्केट संबंधी दिक्कतें हैं उसमें लाभ मिले। जो खेती में खर्चा आता है, जो लागत आती है, उसको कैसे कम किया जाए, जिससे कि किसान एकत्रित होकर संगठित होकर सभी चीज को जो है इकट्ठा लें और उसको जो है जो भी बेनिफिट हो जिसके मार्जिन में, वो भी किसानों को बराबर बराबर मात्रा में उसका हिस्सा उसके जो उसने एफपीओ के अंदर अपना हिस्सा लिया है, शेयर किया है, उसके हिसाब से उसको मार्जिन जाए।
1: विशेषज्ञों और किसानों का भी मानना है कि ऐसे में एफपीओ के गठन के माध्यम से किसान सामूहिक रूप से अधिक मजबूत होने के साथ साथ अधिक मुनाफा कमा सकेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आजादी का 75वां वर्ष आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में जन भागीदारी के साथ मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारतीय किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई प्रकार के निर्णय लिए गए हैं, जिसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, किसान उत्पादक संगठन, कृषि अवसंरचना कोष, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि क्षेत्र में ड्रोन के उपयोग जैसी अनेक योजनाएं और आर्थिक सुविधाएं शामिल हैं।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपनो रेडियो, आपड़ी बातें।
3: बीते 6-7 साल में बीज से लेकर बाजार तक किसान की आय को बढ़ाने के लिए एक के बाद एक अनेक कदम उठाए गए हैं। मिट्टी की जांच से लेकर सैकड़ों नए बीज तैयार करने तक, पीएम किसान सम्मान निधि से लेकर लागत का 1.5 गुना एमएसपी करने तक, सिंचाई के सशक्त नेटवर्क से लेकर किसान रेल तक अनेक कदम उठाए।
1: अन्नदाता को सशक्त बनाने तथा उनकी बुनियादी जरूरतों को समझते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की, जिसके तहत प्रत्येक किसान को प्रतिवर्ष 6,000 रूपए 3 समान किश्त में, यानी प्रत्येक 4 माह पर 2,000 रूपए सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं। इस योजना का पूरा खर्च भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के आरंभ से अब तक 11,30,00,000 से अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खाते में सीधे 1,82,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि विभिन्न किश्तों के माध्यम से हस्तांतरित कर दी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार को बढ़ाने तथा उनकी फसल का उचित दाम दिलाने के उद्देश्य से 1,00,00,000 करोड़ रुपए की कृषि अवसंरचना कोष की व्यवस्था की गई है, जिसके अंतर्गत 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर सरकारी गारंटी एवं ब्याज में 3% की छूट का प्रावधान है। किसान भाई बहन, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां एवं स्वयं सहायता समूह एवं कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठाते हुए प्राथमिक फूड प्रोसेसिंग यूनिट, भंडारण, सेलोज, छटनी ग्रेडिंग इकाइयों का निर्माण कर सकते हैं। ऐसी ही अनेक योजनाओं से किसानों को सशक्त बनाया जा रहा है, जैसे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक जोखिमों की स्थिति में किसानों को उनकी फसल का सस्ता बीमा प्रदान कर रही है। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन के तहत किसानों को मधुमक्खी पालन के लिए प्रेरित किया जा रहा है, जिससे उनकी आय में वृद्धि हो सके। छोटे, सीमांत और भूमिहीन किसानों की आय बढ़ाने और उनकी आर्थिक मजबूती और बाजार से जुड़ाव के लिए 10,000 किसान उत्पादक संगठनों यानि यानी FPOs का गठन किया जा रहा है। ई नाम के माध्यम से किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत प्रति बूंद अधिक फसल के लिए सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से जल संसाधनों के उपयोग को अनुकूलित करने के लिए ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली और बेहतर ऑन फार्म जल प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। कृषि क्षेत्र में ड्रोन के माध्यम से फसल संरक्षण तथा फसलों पर पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए मौजूदा कस्टम हायरिंग सेंटर्स द्वारा ड्रोन तथा संबंधित सामानों पर मूल लागत का 40% या 4 लाख रुपए जो भी कम हो वित्तीय सहायता का प्रावधान है। किसान भाई बहन अब नई टेक्नोलॉजी का लाभ उठाकर उन्नत खेती कर सकते हैं। सभी कृषि

0: योजनाओं और सेवाओं को डिजिटल रूप से प्रयोग करने के लिए किसान सुविधा ऐप तैयार किया गया है तथा ये सुविधा ऐप देश की विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध है।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भी 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
2: किसान भाइयों और बहनों, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार आपकी समृद्धि के रास्ते में आने वाली हर बाधा को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भी 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
3: रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी किसान साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और अभी आपने FPO के बारे में सब जानकारी सुनी। हमारे विषय विशेषज्ञ ने भी बताया कि किस तरीके से बहुत जरूरी रहता है FPO संगठन बनाना, और साथ साथ में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी इस बात पर जोर दिया है, और खासतौर पर हमारे जो कृषि मंत्री हैंगे उन्होंने भी खासतौर पर इस पर जोर दिया है। और ये आपको बता देना चाहते हैं कि ये एक अभियान चलाया जा रहा है कि किसानों को किस तरीके से सरकारी योजना का लाभ दिया जाए, कैसे लाभ दिया जाए, कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है, उस पर भी विशेष तौर पर चर्चा की है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब वक्त हो चुका है हमारे अगले सेगमेंट जिसका नाम है पशुपालन पर चर्चा, विशेष चर्चा। तो आइए इनको बात को सुनते हैं, लेकिन इससे पहले सुनते हैं इस प्यारे से गीत को। बने रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांटिया भी 90.8 FM। आपनो रेडियो अपनी बात है।

अपनी लड़ाई से अपना अपनी लड़ाई लड़वा माटे गमे गम थी मारा भाईओ मारी बोनो मारा काका मारी काकियो ये बताओ साले साले।

0: जय दिवाकी, जय जोहार, जय जोहार, जय जोहार।
1: हमारे देश में पशुपालन का विशेष स्थान रहा है। इससे जहां कृषि के बहुत सारे काम संपन्न होते हैं, वहीं ये आय का अतिरिक्त जरिया भी होते हैं। लेकिन कुछ सालों से पशुपालन का मुख्य उद्देश्य उत्पादकता हो गया है। पिछले कुछ सालों से हमारे देश में दूध की मांग और उत्पादकता दोनों में इजाफा हो रहा है। एक अनुमान के हिसाब से करीब 16% की वृद्धि के साथ हम आगे बने हुए हैं, जिसकी खास वजह सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाएं हैं। सरकार की इन योजनाओं में पशुपालन, उनका स्वास्थ्य, टीकाकरण, पोषण युक्त आहार, आवास और नस्ल सुधार जैसे विषय शामिल हैं, जिनमें मुख्य है राष्ट्रीय पशुधन मिशन, पशुपालन अवसंरचना विकास निधि, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, पशुधन किसानों के लिए KCC, राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण
2: होता है।
3: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपनो रेडियो, आपड़ी बातें।
4: हमारे किसान भाइयों को इसकी जानकारी हो, नस्ल को संवर्धित करने के लिए आप जानते हैं कि नस्ल को तैयार करने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं। एक नस्ल जब तैयार होती है तो इसीलिए काफी इम्पोर्टेंट है हम नस्ल के दूध को लगातार बढ़ाते रहे। तो नस्ल का दूध बढ़ाने के लिए अच्छे सांडों से उनका मिलान करवाना और अच्छे सांडों का चयन करना। हम बात करते हैं सांडों के चयन के लिए, जैसे हमारा प्रोजेनी टेस्टिंग प्रोग्राम है कि हम क्योंकि जो हमारा सांड होता है वो तो दूध नहीं देता, दूध उसके बच्चे देते हैं, तो उसके जो फीमेल काफ किस तरह का परफॉर्म करते हैं उसके बेसिस पे हम असेसमेंट करते हैं कि ये बुल कैसा है, इसकी अनुवांशिक क्षमता क्या है, इसकी दूध देने की क्षमता क्या है। क्योंकि बुल जो है बहुत अहम रोल प्ले करता है हमारे नस्लों के संवर्धन में, तो नस्लों का संवर्धन करने के लिए बुल का चयन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप कृत्रिम गर्भाधान का इसलिए प्रयोग करें, कृत्रिम गर्भाधान से नस्ल को आप संवर्धित कर सकते हैं, उसके उत्पादकता बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जो हमारे बुल सीमेन स्टेशन पे उपलब्ध होते हैं वो अच्छी उत्पादकता वाले होते हैं। उनके उनका जो है प्रोजेनी टेस्टेड बुल्स होते हैं, पेडिग्री सिलेक्टेड बुल्स होते हैं, तो उन बुलों का ही सीमन हम यूज करके अपने जो है नस्ल को संवर्धित कर सकते हैं, अपने नस्ल को विकसित कर सकते हैं। अच्छी नस्ल के पशु हमारे पास हो इसके लिए किसानों को हमेशा जागरूक रहना चाहिए। अच्छी नस्ल का मतलब मेरा कहना है कि अच्छी नस्लें हमारे देश की कई सारी है, जैसे कि आपने देखा होगा साहिवाल पंजाब से है, गिर हमारे गुजरात से है, राठी हमारी राजस्थान से है, साथ ही साथ थारपारकर एक नस्ल है वो भी राजस्थान से है, रेड सिंधी भी नस्ल हमारे देश में है, उसके भी बहुत सारे पशु हैं हमारे देश में, वो रेड सिंधी के भी पशु हैं। तो अच्छी नस्लों का सीमन भी आप जो आपकी कम दूध उत्पादन करने वाली गाय है उनमें उपयोग कर सकते।
1: सरकार के प्रयासों से एक बार फिर देश में देसी नस्लों के पशुओं का चलन बढ़ा है। विशेषज्ञ बताते हैं कि विदेशी नस्लों की तुलना में देसी नस्लों के पशुओं की प्रतिरोधक क्षमता बढ़िया होती है। वहीं उत्पादन क्षमता में इजाफा करने के लिए नस्ल सुधार जैसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। आजकल तो कृत्रिम गर्भाधान के लिए IVF तकनीकों का भी सहारा लिया जा रहा है।
4: कुछ नए नए तकनीक आ गई हैं आजकल, जैसे हम बात करते हैं IVF तकनीक जो मनुष्यों में उपयोग की जाती थी, IVF तकनीक के द्वारा भी आप अपना नस्ल का सुधार कर सकते हैं और एक ही जनरेशन में, यानी कि एक ब्यांत में ही आप, एक पुश्त में ही आप अपनी नस्ल को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं अगर आप IVF तकनीक का उपयोग करेंगे। नहीं तो अगर आप कृत्रिम गर्भाधान कर रहे हैं तो आपकी नस्ल को बढ़ाने में मतलब 7 पुश्तें लग जाती हैं, तो 7 पुश्तों में जो आप चीज ठीक कर रहे हैं वो एक पुश्त में IVF तकनीक से ठीक कर सकते हैं। हमारे

0: तो मैं किसान भाइयों से आग्रह भी करूंगा कि वे सेक्स सॉर्टेड सीमेन की तरफ जाएं और जिससे कि उन्हें बच्चियों का लाभ मिले, बच्चियां पैदा हो। इससे 90% सटीकता के साथ बच्चियां पैदा आप कर सकते हैं और बहुत अच्छा सेक्स सॉर्टेड सीमेन हमारे देश में उपलब्ध है। उत्तराखंड लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड से आप संपर्क कर सकते हैं इसके लिए, मध्य प्रदेश लाइफ स्टॉक पोल्ट्री डेवलपमेंट कारपोरेशन से संपर्क कर सकते हैं इसके लिए, आप गुजरात लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड से संपर्क कर सकते हैं इसके लिए। सांगली महाराष्ट्र में ABS कंपनी भी सेक्स सॉर्टेड सीमेन का उत्पादन कर रही है, वहां भी संपर्क किया जा सकता है। मेहसाना डेयरी से संपर्क किया जा सकता है। तो हमारे किसान भाई संपर्क करके सेक्स सॉर्टेड सीमेन का उपयोग ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो उनकी आय में वृद्धि होगी और काफी अच्छा नस्लों का संवर्धन भी होगा।
1: इस तरह देखा जाए तो सरकार का हर प्रयास हमें सफलता की राह पर ले जा रहा है। बस जरूरत है तो समय रहते सरकार की योजनाओं का लाभ लेने की। इन योजनाओं के लाभ से आने वाले समय में दूध उत्पादन में हम और अच्छे परिणाम हासिल कर सकेंगे, साथ ही पशुपालकों की आय में भी इजाफा हो सकेगा।
2: कार्यक्रम में वक्त है पशुपालक कैलेंडर पर नजर डालने का, यानी कि जानने का कि वर्तमान समय में आप कौन कौन से पशुपालन से संबंधित कार्य कर सकते हैं जिससे आपके पशुओं का स्वास्थ्य बेहतर बना रहे। तो फिर आइए नजर डालते हैं पशुपालक कैलेंडर पर।
3: पशुओं को HS एवं BQ रोग से बचाव का टीका अवश्य लगवाएं। इस माह में अधिक गर्मी की संभावना रहती है। पशुओं में जल व लवण की कमी, भूख कम होना एवं कम उत्पादन के लक्षण आ सकते हैं। ऐसे में पशु को तापमान से बचाने का इंतजाम करें। पशुओं को दोपहर में छाया एवं हवादार स्थान पर रखें। पशुओं को दिन में कम से कम 4 बार पानी पिलाएं। गाभिन पशुओं को अतिरिक्त आहार दें एवं ब्याने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के 50 से 60 ग्राम खनिज मिश्रण नियमित रूप से दें।
4: भेड़ के मेमनों में भेड़ चेचक एवं एंट्रोटॉक्सिमिया का टीका
3: पशु चिकित्सक की सलाह से जरूर लगवाएं। गोपालक फार्म की सफाई पर विशेष ध्यान दें। आवास को सूखा एवं स्वच्छ रखें। मुर्गियों में कृमिनाशक दवा का इस्तेमाल पशु चिकित्सक की सलाह से अवश्य करें। साथ ही पानी की समुचित व्यवस्था रखें। पशुओं को बाह्य परजीवी से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से दवा का छिड़काव नियमित रूप से करें। पशुओं को अंतर परजीवी नाशक दवा पशु चिकित्सक की सलाह से नियमित रूप से दें। पशुओं को संक्रामक रोग जैसे गलघोंटू, ब्लैक वाटर के रोग रोधी टीके समय पर लगवाएं। इस मौसम में पशुओं में फास्फोरस की कमी के कारण पायका के लक्षण नजर आने लगते हैं, जिससे पशु मूत्र पीने, मिट्टी चाटने लगते हैं। बचाव के लिए पशुओं को खनिज लवण मिश्रण अवश्य दें। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज और विटामिन सभी संतुलित मात्रा में प्राप्त करने के लिए पशुपालक एजोला खास का उपयोग करें।
5: रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी किसान साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और अभी अपने किसान साथियों ने जाना कि पशुपालन कैलेंडर इस माह का क्या कहता है, किस तरीके से हमें अपने पशुपालन करना चाहिए, किस तरीके से अपने पशुओं का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी बीमारी इसमें होती है, इस पर भी हमें खास तौर पर ध्यान रखना होगा। अब साथियों अगला हमारा सेगमेंट है हमारे जो उन्नतशील किसान है, किस तरीके से उन्होंने अपने जीवन में बदलाव किया है उनकी कहानी को हम जानते हैं।
2: किसान भाइयों बहनों, देश में मनाया जा रहा है आजादी का अमृत महोत्सव, जिसके तहत चलाया जा रहा है एक अभियान जिसका नाम रखा गया है किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी। अब आप सोच रहे होंगे कि हम बार बार इसका जिक्र क्यों कर रहे हैं, वो इसलिए ताकि आप भी इससे जुड़ें और इससे ज्यादा से ज्यादा लाभ लें। बता दें आपको कि इस 6 दिवसीय अभियान के पहले दिन बात हुई थी ODOP की, यानी कि एक जिला एक उत्पाद की, और इसके बारे में हमारे किसानों को जागरूक किया गया था। लेकिन कई किसान इससे पहले से ही जुड़े हुए हैं और लाभान्वित भी हुए हैं। आइए ऐसे ही किसानों से मुलाकात करते हैं, जानते हैं उनकी कामयाबी की दास्तान।
6: उत्तर प्रदेश में देश का करीब 40% गन्ना पैदा किया जाता है, इसीलिए गन्ना यहाँ की मुख्य फसल है। पिछले 50 सालों से मुजफ्फरनगर के ज्यादातर किसान गन्ने से गुड़ बनाने का काम करते आ रहे हैं। यहाँ पर बनने वाला गुड़ गुजरात, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों में भी भेजा जाता है, इसीलिए मुजफ्फरनगर को गुड़ का बड़ा बाजार माना जाता रहा है। वैश्विक स्तर पर अपनी छाप छोड़ने वाला ये गुड़ अब हौसलों की उड़ान भर रहा है। इस काम में नई रफ्तार देने के लिए उत्तर

0: प्रदेश सरकार की एक जनपद एक उत्पाद कार्यक्रम काफी कारगर साबित हो रहा है। केंद्र सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार उन विशिष्ट शिल्प कलाओं व उत्पादों को प्रोत्साहित करने का काम कर रही है जो देश में कहीं और उपलब्ध नहीं है, जैसे प्राचीन व पौष्टिक काला नमक चावल, गेहूं, डंठल शिल्प, चिकनकारी, कपड़ों पर जरी जरदोजी का काम, मृत पशु के सींगों व हड्डियों से बनाई कलाकृतियों और लघु उद्यम शामिल है। इस योजना से उत्तर प्रदेश के किसानों और कारीगरों को भी अलग ही पहचान मिल रही है। हुनर हाट में हमारी मुलाकात ऐसे ही एक किसान से हुई जो न सिर्फ गन्ने की पैदावार लेते हैं बल्कि 13 तरह का गुड़ भी बनाते हैं।
1: और आपके पास कितने तरह के गुड़ हैं?
2: कुल मिलाकर हमारे पास 13 तरह के गुड़ हैं, उसमें एक तरह की शक्कर है, बाकी सब गुड़ हैं। उसमें कुछ नॉर्मल फ्लेवर्स के हैं, कुछ नेचुरल फ्लेवर्स होते हैं, जैसे नेचुरल फ्लेवर्स हैं कुछ जिसमें चॉकलेट, बटरस्कॉच, मैंगो, कोकोनट, ग्रीन मैंगो, इस टाइप के फ्लेवर्स हैं। बाकी तिल वगैरह के हैं, गुड़ और ड्राई फ्रूट्स के हैं, और सौंठ, अलसी, मेथी का है, सौंफ वाला है, उसमें शक्कर भी है हमारे पास। वो उसमें कोई फ्लेवर नहीं है, नॉर्मल शक्कर है। बिक्री तो सबकी बराबर ही मानिए आप, बेहतर तो ये है गन्ना है जिस गन्ने का हम बना रहे हैं, इसे गन्ने का बना रहे हैं। शुगर इसमें देखिए डायबिटिक नहीं होता गुड़, ऊपर से डॉक्टर भी सलाह देते हैं कि गुड़ का ही यूज कीजिए, आप चीनी को थोड़ा अवॉइड कीजिए। इसी वजह से हमने ये किया है कि बच्चे थोड़ा इसको यूज करें, चीनी से बने हुए प्रोडक्ट ना खाएं, चॉकलेट वगैरह ना खाएं। उसीलिए चॉकलेट के फ्लेवर में भी ले आए हम, बटरस्कॉच में भी लेके आए हैं, मैंगो में भी लेके आए हैं, कच्चे आम में भी लेके आए हैं, हर तरह का फ्लेवर है हमारे पास। किसान है, खुद का कोल्लू है हमारा, खुद बनाते हैं, खुद ही यहाँ पे बेच रहे हैं।
0: उनके बनाए अलग अलग स्वाद के ये गुड़ काफी लोकप्रिय हो रहे हैं। हर उम्र के हिसाब से गुड़ की वैरायटी होने के कारण इनकी मांग काफी बढ़ रही है। युवा किसान की माने तो अब वो अपना उत्पाद ऑनलाइन भी बेचेंगे जिससे व्यवसाय का दायरा बढ़ाया जा सके और लोगों तक उनका उत्पाद आसानी से पहुंचाया जा सके।
3: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM।
4: आपनू रेडियो आपड़ी बातें।
5: रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी किसान साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और हमारे किसान साथियों ने सारे सेगमेंटों को सुना। सबसे पहले जाना कि FPU यानी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी किस तरीके से गठित होती है, इसका क्या फायदा है, कौन कौन सी एजेंसियां इसमें काम करती है, इस पर इसको जाना। साथ साथ में पशुपालन कैलेंडर माय का क्या कहता है, किस तरीके से अपने पशुओं की हमें सुरक्षा करनी चाहिए, किस तरीके से पशुओं की देख रेख करनी चाहिए और क्या फायदा होता है पशुपालन से, इस पर भी हमने जिक्र किया। और साथ साथ में क्या कौन कौन सी बीमारी इस माह में फैलती है, किस तरीके से सावधानी बरतनी चाहिए, उस पर भी हमने नजर डाली। साथ साथ में हमने एक उन्नतशील किसान जिन्होंने गन्ने का व्यापार करके आज एक आसमान और बुलंदियां सुनी छुई हैं, उनको भी हमने सुना। साथियों हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम खेतीबाड़ी कार्यक्रम से जाने का। तो साथियों कैसा लगा कार्यक्रम हमें जरूर बता सकते हैं हमारे इस नंबर पर। नंबर है 94251436303। इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, हमें अपनी जानकारी या फिर आपको कुछ पूछना है इस नंबर पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं। साथियों हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम से जाने का। आपके हमारे अगले कार्यक्रम में फिर होगी मुलाकात। तो चलते चलते आपको सुनवाते हैं एक और ऐसे गीत को। बने रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांटिया भील 90.8 FM, आपका रेडियो अपनी बातें। नमस्कार।

0: आप सभी का स्वागत है दोस्तों, आपके ही अपने प्रोग्राम जिंदगी के रंग गीतों के संग में, जहां हम मिलते हैं उन खास लोगों से जिनकी जिंदगी संघर्ष, मेहनत और सफलता की प्रेरक कहानियों से भरी होती है। उनकी बातों के बीच में हम सुनते हैं कुछ ऐसे गीत जो उनके जीवन की भावनाओं और अनुभवों को संगीत में ढाल देते हैं। तो चलिए आइए इस खूबसूरत सफर में हमारे साथ चलिए।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं जिंदगी के रंग गीतों के संग। आज के मेहमान सिर्फ प्रोफेसर नहीं, सिर्फ रिसर्चर नहीं, सिर्फ मैराथन रनर भी नहीं, बल्कि एक ऐसी जीती जागती मिसाल हैं जो बताते हैं कि डिसिप्लिन और पैशन उम्र से बड़े नहीं हो सकते। 35 इयर्स की साल की टीचिंग, 120 प्लस रिसर्च पेपर्स नेशनल और इंटरनेशनल, और 17 पीएचडी स्कॉलर्स को मेंटर करना, इससे भी सबसे बड़ी बात 185 से ज्यादा फुल और हाफ मैराथन्स रन करना। बाप रे, मुझे तो ये पढ़ के सांस फूल गई।
2: चलिए आज हम सब दिल से स्वागत करते हैं डॉक्टर गुरुदत्त शर्मा जी का। दिल से स्वागत है डॉक्टर, आपको सल्यूट और स्वागत दोनों। आपको थैंक यू बोलना है अगर कुछ तो बोल सकते हैं।
3: हाँ धन्यवाद, थैंक यू तनुषा
2: जी। कैसा महसूस हो रहा है डॉक्टर गुरुदत्त आज आपको हमारे साथ एसएम रेडियो पे जुड़ के और जिंदगी के रंग गीतों के संग के साथ जुड़ के?
3: बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ आपके साथ बातचीत करते हुए, बड़ा अच्छा लग रहा है, एक एनर्जी मिल रही है मुझे भी। और
2: जी आपके अंदर तो इतनी एनर्जी है कि आप हमारे सारे लिसनर्स को बूस्ट कर सकते हैं उस एनर्जी बूस्टर से। चलिए शुरू करते हैं।
3: बिल्कुल, आपके सारे करूंगा, जरूर कोशिश करूंगा।
2: जी जी, चलिए आज की ये कोशिश कामयाब रहे, इसी नोट से हम शुरू करते हैं। आप एक तरफ रिसर्च स्कॉलर हैं, प्रोफेसर हैं, और दूसरी तरफ अल्ट्रा प्रो मैक्स मैराथन रनर हैं। ये दोनों पहचान दिमाग और डिसिप्लिन को दर्शाती हैं। आप इन दोनों के अंदर किस तरह से ग्रो हुए, कैसे आपने चुनाव किया, कैसे आपका जीवन आगे बढ़ा, इसी पे सबसे पहले चर्चा करेंगे। क्या पहले एक रिसर्चर आया, एक जूलॉजिस्ट आया, या सबसे पहले एक रनर आया?
3: जी तनुषा, जब होश संभाला तब घर के हालात अच्छे नहीं थे। हम कुल 5 भाई बहन थे। मैं जब 5 वर्ष का था तभी पिताजी का देहावसान हो गया था। मुझे उनका चेहरा भी याद नहीं। माताजी को संघर्ष करते हुए बचपन से देखा था। जब मैं 12 वर्ष का हुआ तो ऑफिस की साफ सफाई झाड़ू लगाने की नौकरी मिल गई। वो ऑफिस मेरे घर से 10 से 12 किलोमीटर दूर था। वहां मैं पैदल ही जाता था, कभी तेज गति से और कभी भाग कर। बस तब से रनिंग की शुरुआत हुई।
2: बहुत बहुत खूबसूरत और बहुत ही संवेदना से भरा हुआ जवाब था आपका। तो हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहले रनर की एक चलने से आपकी शुरुआत हुई और चलते चलते आप दौड़ने लगे और जीवन में इतने आगे बढ़ गए कि आज हम ये इंटरव्यू कर रहे हैं। तो बहुत सल्यूट है आपको डॉक्टर शर्मा, आपका सफर को सल्यूट है, आपके एक्सपीरियंस को सल्यूट है। आगे चलते हैं। आप 35 साल से टीचिंग में हैं और कई स्टूडेंट्स को आपने इंस्पायर किया है, उनके रिसर्च पेपर्स को नेचुरली मेंटर किया है, और आपने खुद ने 120 से ज्यादा रिसर्च पेपर्स नेशनली और इंटरनेशनली लिखे हैं, पब्लिश करवाए हैं। तो आज के दौर में जब सबसे बड़ा चैलेंज एक ये है कि हम सब कुछ करना चाहते हैं बट कंसिस्टेंसी नहीं है किसी भी काम में, सब कुछ ये भी चाहिए वो भी चाहिए, बट एक एक एक माइंड करके अपने एकाग्रत होके कोई भी काम को करना आज के जमाने में सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं, लाइफ बहुत फास्ट है। तो आपके लिए इस सफर में कंसिस्टेंसी किस तरह से आपने अपने जीवन में अपनाई, और आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? लॉन्ग टर्म एक्सीलेंस पाने का सबसे बड़ा सीक्रेट आपके हिसाब से, जब आप इतने बच्चों को मेंटर कर चुके हैं और इतने रिसर्च पेपर्स पब्लिश करा चुके हैं, कंसिस्टेंटली आपका करियर ग्राफ ऊपर गया है, तो आपको क्या लगता है कि आज के जमाने में हम कंसिस्टेंसी कैसे पा सकते हैं, और लॉन्ग टर्म एक्सेलेंस का सीक्रेट क्या है?
3: यस हाँ हाँ तनुषा, यदि हम प्रकृति का अवलोकन ध्यान से करें तो देखते हैं कि जितने भी विकास हुए हैं वे अत्यंत धीमे, लगातार तथा चिरस्थायी हुए हैं। 24 घंटे का समय हम सभी को बराबर मिला है। कई लोगों को एक ही कार्य करने में 24 घंटे कम पड़ते हैं, जबकि कई ऐसे लोग हैं जो इसी 24 घंटे के समय का संतुलित विभाजन करते हैं तथा काम के अनुसार उनका तालमेल बिठाकर हर काम को सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेते हैं। ग्रो करने का एक ही गुरु मंत्र है, स्लो एंड स्टडी, लेकिन काम करना है।
2: बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको कभी ये चैलेंजेस नहीं आए, कभी आपके जीवन में भटकाव नहीं हुआ, और हमेशा, क्योंकि इतने साल, 35 इयर्स बहुत लंबा समय होता है, 3 दशक ऑलमोस्ट आपको हो गए इस प्रोफेशन में, तो कभी आपके जीवन में भटकाव या डिस्ट्रैक्शंस आए हों तो उनसे आपने कैसे डील किया?
3: बच्चों के साथ रह करके उनको सिखाते हुए उनके साथ काम करने में अच्छा लगा। एक टीचर गाइड होने के नाते जो भी विद्यार्थी मेरे सुपरविजन में काम कर रहा होता है उनकी हर कठिनाई को सुलझाने का काम भी एक दोस्त के रूप में, एक पेरेंट्स के रूप में, एक मदर के रूप में किया, ताकि वे बेझिझक अपना शोध समय पर पूर्ण कर सकें तथा आगामी चुनौतियों का सामना डटकर कर सकें। हम सभी की जिंदगी में इशू तो आते रहते हैं, परंतु परिवार में दोस्तों के साथ विचार विमर्श कर सारे इश्यूज का निदान किया जा सकता है।
2: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूबसूरती से आपने जवाब

दिया और बहुत सालों का आपका जो तजुर्बा रहा है वो एक समावेश है आपके जवाबों में, और कहीं ना कहीं हमें महसूस होता है कि किस तरह का जीवन डिसिप्लिन से, कंसिस्टेंसी से आपने जिया है और उससे आगे भी आप जिएंगे जैसे कि हम जानते हैं और समझते हैं आपकी बातों से। इसी नोट पर हम चलेंगे हमारे पहले गीत की तरफ, जहां पे जिंदगी सिर्फ चलने का नाम नहीं, रुक कर, थम कर समझने का नाम भी है। चलिए सुनते हैं, जागेगा इंसान और जमाना देखेगा।

0: वेलकम बैक मेरे प्यारे श्रोताओं, वेलकम बैक डॉक्टर शर्मा। हम आगे चलते हैं। आपने हमें बताया कि आपने 17, कम से कम आज तक आपके सफर में 17 पीएचडी स्कॉलर्स को तैयार किया है और उनकी डिग्री में, उनको पीएचडी लेने में उनकी गाइडेंस और उनकी मेंटोरशिप की है। तो जब आप ये गाइडेंस करते हैं पीएचडी के लिए जो आपके अंडर स्टूडेंट्स होते हैं, तो आपका जो रिजॉल्व होता है, आपका जो एक सिद्धांत होता है, वो क्या होता है कि मेंटरशिप के साथ साथ कुछ जिंदगी की डायरेक्शन भी उनको देना, या किस तरह से आप ये रोल निभाते हैं मेंटरशिप का?
1: बस एक दोस्त के रूप में, एक टीचर के रूप में, एक गाइड के रूप में, कभी उनके पेरेंट्स बनकर, कभी उनकी सिस्टर बनकर, कभी उनके ब्रदर बनकर के उनके साथ फ्रेंडली ट्रीट किया जाए तो जितने भी बच्चे होते हैं उनकी झिझक खत्म हो जाती है और वो बेझिझक अपनी समस्याओं को हमसे शेयर करते हैं और सारी समस्याओं का निदान बस इसी प्रकार से हम लोग कर लेते हैं ताकि समय पर उनका काम पूरा हो सके और वो आगे के चैलेंजेस को बड़े बिना डर के फेस कर सकें।
0: बिल्कुल। कभी कोई ऐसा स्टूडेंट जिसके साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो इन 17 स्टूडेंट्स में जो बहुत स्पेशल बॉन्ड बन गया हो, या जो एक याद छोड़ गया हो, कोई एक एक्सपीरियंस छोड़ गया हो जो हमारे श्रोताओं के साथ आप साझा करना चाहें?
1: कश्मीर से कुछ बच्चे हमारे पास आए थे, वो थोड़ा सा सोशल नेटवर्किंग और इसमें थोड़ा सा, क्योंकि वो मुस्लिम इसमें हैं तो थोड़ा सा उनको एक डर बिठा देता था कि यहाँ पर हमको हमारे टीचर्स को हमें मतलब कोऑपरेट करेंगे कि नहीं करेंगे। तो जब उन्होंने मेरे मार्गदर्शन में अपना पीएचडी का काम शुरू करा तो उनको बहुत एक ताज्जुब सा हुआ कि हमारे कश्मीर में टीचर्स हमसे इस तरीके से फ्रेंडली कोई बात नहीं करता है। वो अपने आप को एक ऐसा एक डिस्टेंस बना करके चलते हैं, लेकिन यहाँ पर यहाँ के आपसे मिल करके हमें इतना आसान लगा कि हम लोग पीएचडी आसानी के साथ कर लेंगे। और मेरे कुछ विद्यार्थी तो चाइना के अंदर पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप में भी गए हैं, कुछ विद्यार्थी ऐसे भी रहे हैं जिनका रिसर्च पेपर ऑक्सफोर्ड तक गया है। तो ये मेरे लिए बहुत एक अच्छा सेटिस्फैक्ट्री है। हैदराबाद के अंदर भी हमारे विद्यार्थियों को बेस्ट रिसर्च आर्टिकल के रूप में अवार्ड मिला हम लोगों को, तो ये मेरे लिए एक संतुष्ट है, सेटिस्फैक्ट्री है। अनुषा,
0: क्या क्या बात है डॉक्टर जी। आपने बताया कि आप 42 किलोमीटर की फुल मैराथन अटेम्प्ट कर चुके हैं। तो जब आप ये इस तरह के चैलेंजेस लेते हैं, इस तरह के एक्सपीरियंसेस आपके रहे हैं, आई एम श्योर इसमें फिजिकल एंड्योरेंस तो होती ही है, पर ये एक तरह की एक मेंटल तपस्या है कहीं ना कहीं। और जब आप 30 किलोमीटर के बाद कुछ थकान में होते हैं, डाउट्स के जोन में होते हैं, तो आप उस समय खुद से क्या कहते हैं, कैसे अपना सफर आगे बढ़ाते हैं, कैसे उस जर्नी को कंप्लीट करते हैं, क्या थॉट्स आते हैं, हमारे लिसनर्स के साथ थोड़ा साझा करें? और क्या ये प्रोसेस लाइफ के संघर्ष से मिलता जुलता है? कभी आपको ये एक्सपीरियंस हुआ?
1: बहुत अच्छा प्रश्न है तनुजा। ये फिजिकल तथा मेंटल एंड्योरेंस दोनों ही है। 30 किलोमीटर क्रॉस करने के बाद की स्थिति बहुत विकट हो जाती है। यदि उसमें तालमेल बिठाया तो आप टारगेट पूरा कर लेंगे। शुरू के 30 किलोमीटर हम पैरों के सहारे चलते हैं, पैरों के सहारे दौड़ लगाते हैं, लेकिन बाद के जो 12 किलोमीटर होते हैं वो मानसिक रूप से तालमेल बिठा करके ही पूरा किया जा सकता है। वो एक गाना है, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साये बहार के। जब आप 42 किलोमीटर का टारगेट पूरा कर लेते हैं तो लोग आपका स्वागत तालियों से करते हैं, मेडल पहनाते हैं, बस उसी क्षण सारी थकान उतर जाती है। जीवन में संघर्ष तो आते रहेंगे, बस डटकर मुकाबला करते रहो, सफलता अवश्य मिलेगी।
0: बहुत ही खूबसूरत, बहुत बहुत खूबसूरत। कभी कोई एक ऐसी मैराथन रही हो जिसमें कोई एक स्पेशल एक्सपीरियंस रहा हो, जहां पे आप थक गए हो, या आपको कुछ फिजिकली आपने कुछ सफर किया हो, या कुछ एक ऐसा कुछ हुआ हो जो आप हमारे श्रोताओं के साथ साझा करना चाहें, ऐसा कोई एक एक्सपीरियंस?
1: बॉम्बे मैराथन के अंदर 42 किलोमीटर का मेरा था सफर, जब मैं पहली बार कर रहा था तो बीच में 35 किलोमीटर के बाद क्रैम्प्स आया था मेरे को पैर में। थोड़ा सा रुक गया था, मैं थक गया था, लेकिन मुझे अब एक अनजान मित्र के आप इसी मैसेज के थ्रू धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो पीछे से आकर तो उसने मेरा हाथ पकड़ा और ये मेरे से कहा कि सर आप बहुत अच्छा रन कर रहे थे, आप रुके क्यों हैं? मैंने थोड़ा सा क्रैम्प दिया, बोले नहीं आप चलो मेरे साथ। तो उस व्यक्ति ने मेरे को आखिरी तक फिनिशिंग लाइन तक मेरे साथ दौड़ करके मेरे जो फिनिश करवाया और पीछे से धक्का पुश किया ताकि पहले मैं फिनिश लाइन टच करूं, उसके बाद में उसने फिनिश लाइन टच करी, ये एक बहुत बड़ा सैल्यूट है उस बच्चे के लिए।
0: सच में क्या खूब बात आपने हमारे साथ शेयर की। क्या उनका नाम आप हमें बता सकते हैं तो हम उन्हें रेडियो के थ्रू थैंक यू कर सकें?
1: नहीं नहीं मैडम, बस वो अनजान व्यक्ति थे, इसके बाद वहाँ पर वो गायब हो गए। मुझे मैं धन्यवाद देना चाहता था लेकिन वो ऐसे भीड़ भड़क के में गायब हो गए, मुझे पता नहीं चला वो कहाँ चले गए। थकान इतनी थी कि अब रेस्टिंग कंडीशन पे आ गए।
0: चलिए कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं उस भीड़ में आपको एक सारथी मिल गया, एक भगवान के रूप में एक मैसेंजर मिल गया जिसने आपको लाइन क्रॉस करवा दी। इसी नोट पे, इसी अनजान शख्स की याद में हम सुनेंगे हमारा अगला गीत, यही रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के।

0: वेलकम बैक मेरे प्यारे श्रोताओं, वेलकम बैक डॉक्टर डॉक्टर शर्मा। आपने 62 प्लस की एज में अल्ट्रा रनिंग और इंटरनेशनल मैराथन में पार्टिसिपेट किया। पहली बात तो आप हमारे श्रोताओं को अगर ये बता सके कि अल्ट्रा रनिंग क्या होती है।
1: अल्ट्रा रनिंग मैडम तनुषा 50 किलोमीटर के ऊपर जितनी भी होती है वो सब अल्ट्रा मैराथन के उसमें आती है। ये 80 किलोमीटर भी हो जाती है, 90 भी होती है, 110 भी होती है।
0: बताएं तो
1: कई लोग 24 घंटे भी रनिंग करते हैं, 24 घंटे की भी होती है।
0: बिल्कुल, तो जैसे आपने भी अटेम्प्ट किया है, आपने हमें बताया है कि आपने 24 आवर्स वाली मैराथन में भी पार्टिसिपेट किया है, तो ये जो अल्ट्रा रनिंग आपने अटेम्प्ट की इस एज में, आपने हर स्टीरियोटाइप तोड़ दिया, एज को तो आपने बहुत ही पीछे छोड़ दिया। तो हम अक्सर एज लिमिट्स की बात करते हैं, तो क्या कहीं ना कहीं हम मेंटली जल्दी ज्यादा रिटायर हो जाते हैं और बॉडी आपको साथ देना चाहती है बट आप खुद अपने दिमाग को, अपने माइंडसेट को ये समझा देते हैं कि बस अब मेरी उम्र हो गई, 60 क्रॉस हो गया, अब मैं ये सब अटेम्प्ट नहीं कर सकता या कर सकती।
1: बहुत अच्छा प्रश्न है तनुजा। हमारे पूरे शरीर की केमिस्ट्री हमारी सोच पर निर्भर करती है। जिस दिन आप ये मान लेंगे कि मेरी उम्र हो गई है, मैं रिटायर हो गया हूँ, उसी क्षण से ही आपका शरीर स्वतः क्षीण होता जाएगा। आप शारीरिक तथा मानसिक रूप से कमजोर होते जाएंगे, हो सकता है आप बीमारी को भी आमंत्रित कर लें। इसका एक ही इलाज है, अपने आप को शारीरिक तथा मानसिक रूप से व्यस्त रखिए, उम्र तथा समय दोनों आसानी के साथ कट जाएंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी 72 वर्ष की आयु में भी ऊर्जावान दिखते हैं, 18 घंटे लगातार मेहनत करते हैं, कभी थके हुए नहीं लगते, उनको कभी मैंने उबासी लेते हुए नहीं देखा, उनकी बॉडी लैंग्वेज एक डायनामिक पर्सनैलिटी के रूप में दिखाई देती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो आपने जो अल्ट्रा रनिंग के एक्सपीरियंसेस हैं, आपकी मैराथन के जो एक्सपीरियंसेस हैं, उनको अगर आप कुछ को हमारे श्रोताओं के साथ शेयर करना चाहें कि कहां से आपकी मैराथन की जर्नी शुरू हुई थी और किन किन इंपॉर्टेंट मैराथन्स में आपने पार्टिसिपेट किया है, वो अगर आप पढ़ के हमें बताना चाहें तो हमारे श्रोता जान सकेंगे कि आप कितने एक्सपीरियंस्ड हैं और कितना कुछ अचीव कर सकते हैं और कर चुके हैं इस एज में।
1: एक्चुअली इसको इस तरीके से क्रोनोलॉजी में बताना तो खैर मुश्किल होगा क्योंकि मेरी करीबन 150 से ऊपर की तो हाफ मैराथन 21 किलोमीटर की।
0: बिल्कुल,
1: और 20-22 किलोमीटर जो 20-22 मरतबा टाइम्स मैंने 42 किलोमीटर अटेम्प्ट किया है तो सफलतापूर्वक, और अल्ट्रा मैराथन जो 50 किलोमीटर की ऊपर होती है वो 8 बार मैं कम्प्लीट कर चुका हूँ इंडोर के अंदर ही सिंथेटिक ट्रैक के ऊपर। और जो एक रिकॉर्ड है कि इंदौर में अभी तक 8 बार किसी ने भी अटेम्प्ट नहीं किया।
0: बिल्कुल,
1: ये मेरे लिए बहुत सेटिस्फैक्ट्री है। तो कुल मिलाकर के 200 से 250 मैराथन में पूरी कम्प्लीट कर चुका हूँ।
0: बहुत ही खूबसूरत सर, और ये मैंने इंट्रोडक्शन में भी कहा था 185 मैराथन्स से ऊपर मैराथन्स में आप पार्टिसिपेट कर चुके हैं और ये बात पढ़ के ही मैं तो हाँफ गई। तो आपसे मिलना जरूर पड़ेगा, आप बहुत ही इंस्पायरिंग पर्सनालिटी हैं। आगे चलते हैं, आप जूलॉजी के प्रोफेसर हैं, तो लाइफ फॉर्म्स, अडेप्टेशन, सर्वाइवल, इन सब इशू से आप रोजाना की लाइफ में डील कर रहे हैं, अपने पढ़ाने में, पढ़ने में, सभी तरीके से। क्या आपके हिसाब से ह्यूमन बॉडी भी एक बायोलॉजिकल मिरेकल है जिसे हम कहीं ना कहीं अंडर एस्टिमेट करते रहते हैं कि वही जैसे मैंने कहा कि मुझसे नहीं होगा, मेरी यही लिमिट है, मैं इससे ज्यादा तो सोच, जैसे अभी मैं आपकी बातें सुन के सोच रही हूँ कि बाप रे अल्ट्रा मैराथन तो मेरे लिए इस जीवन में तो पॉसिबल नहीं है, तो क्या हम सभी ये करते हैं अपनी बॉडी के साथ, और साइंस और स्पोर्ट्स का कनेक्शन किस तरह से बनता है, हमारे लिसनर्स को थोड़ा बताएं।
1: ये भी एक अच्छा प्रश्न है कि प्रकृति भी संघर्षशील व्यक्ति का ही चयन करती है। जिसने समय के अनुसार अपने आप को ढाल लिया उसी को ही धरती पर रहने का पूरा हक है, अर्थात जो फिट है वही हिट है। यह पूर्ण सच है कि ह्यूमन बॉडी एक चमत्कार से कम नहीं, हम उसे अंडर एस्टिमेट करते हैं। हर इंसानी शरीर में छुपी हुई ताकत होती है, हर इंसान में होती है, जो आपातकाल में सामने आती है। आपको याद होगा कोविड में एक 14 वर्ष की लड़की थी जिसने अपने बीमार पिता को साइकिल पर बिठा करके लगातार 350 किलोमीटर का सफर तय कर गांव से शहर आकर के अस्पताल में भर्ती कराया और उनकी जान बचाई।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इसी से मुझे मांझी फिल्म भी याद आती है, जिसमें उस कैरेक्टर ने पूरा एक माउंटेन खोद दिया था अपनी बीवी के लिए। तो सच में आपातकालीन जो स्थितियां होती हैं, उन उन उन्हीं में हमारी सारी शारीरिक शक्तियां जागृत होती हैं और हम उसके शायद पूरे पोटेंशियल को रीच कर पाते हैं। खैर, आप कंटिन्यू कीजिए आप जो कह रहे थे।
1: इसके बाद मुझे एक और एक शहर का दृश्य याद आ रहा है कि जहां किसी जगह पर एक अस्पताल में आग लग गई थी और सभी जगह अफरा तफरी का माहौल बन गया था। सब लोग अपनी अपनी जान बचाने के प्रयास कर रहे थे। आश्चर्य तब हुआ जब जितने भी मरीज भर्ती थे वे सब अपने पैरों से चलकर खुद खड़े होकर बाहर आकर के सुरक्षित स्थान पर आ गए बिना किसी सहारे। तो जो व्यक्ति अभी तक बीमार था उसमें ये ताकत कहाँ से आई कि वो ये पूरी छुपी ताकत होती है जिसके सहारे हम बाहर आ जाते हैं। तो जहां तक सवाल है स्पोर्ट्स को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखने का, तो ये सच है कि सभी गेम्स को समझने के लिए प्रचुर मात्रा में शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध है। कई गैजेट्स इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी मौजूद हैं। एक से बढ़कर एक देशी विदेशी कोच भी उपलब्ध हैं जिनका एडवांटेज प्रशिक्षण कोई भी खिलाड़ी ले सकता है। अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद में हम आज भी पॉपुलेशन के लिहाज से बहुत पीछे हैं। इस क्षेत्र में बहुत मेहनत की आवश्यकता है। अगर आपको याद हो, हुसैन बोल्ट ने केवल 9 सेकंड, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, केवल 9 सेकंड की दौड़ में अव्वल आने के लिए 10 वर्षों तक गहन प्रशिक्षण लिया। आज उनकी तुलना चीते से तेज दौड़ने वाले इंसान के रूप में ली जाती है। एक और फ्लैप्स के माइकल फ्लैप्स हैं, अमेरिका के एथलीट्स हैं जिन्होंने 5 वर्षों तक बिना नागा किए तैराकी का प्रशिक्षण लिया। विश्व के एकमात्र वही ऐसे एथलीट्स हैं जिनके पास 22 गोल्ड मेडल ओलंपिक से।
0: बताएं, तो ये कोई मामूली बात नहीं है और कहीं ना कहीं हम सब में ये शक्ति छुपी हुई है। तो हमारे श्रोता जो हमें सुन रहे हैं आज, मैं तो बहुत इंस्पायर हो गई हूँ सर से। तो आई होप आप सभी इनकी जर्नी सुन के, इनकी बातें सुन के उतना ही इंस्पायर हो रहे हैं जितना कि मैं। और इसी इसी एहसास के साथ, इसी खुशी के साथ, इसी स्ट्रेंथ के साथ हम सुनेंगे हमारा अगला गीत, जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम।

0: डॉक्टर शर्मा, बात जब आज के यूथ की आती है, हम हमारे यूथ को देखते हैं, आप भी बच्चों से डील कर रहे हैं, कॉलेज स्टूडेंट से डील करते हैं, पीएचडी लेवल के स्टूडेंट से डील करते हैं, तो आपने ये चेंज देखा होगा पिछले 3 दशक से जो आप पढ़ा रहे हैं, कि पहले किस तरह से रिसर्च होती थी, किस तरह से काम होता था, किस तरह से हर चीज को हम अप्रोच करते थे। और आज के यूथ, हम अगर आज के यूथ की बात करें, तो उनके पास बहुत इंफॉर्मेशन है, एआई है, पता नहीं क्या क्या है, पर जो सबसे ज्यादा जिस चीज की कमी है वो है पेशेंस। उन्हें रिसर्च भी शॉर्टकट में करनी है, उन्हें पीएचडी भी शॉर्टकट में लिखनी है, उन्हें फिटनेस भी शॉर्टकट तरीके से अपनानी है और पानी है, सब कुछ पाना है और इंस्टेंटली पाना है। तो हमारे जो यंग लिसनर्स हैं, आपका जो जीवन रहा है वो एक डिसिप्लिन और एक पेशेंस की मिसाल है एक तरह से मेरे लिए। तो आप हमारे यंग लिसनर्स को एक प्रैक्टिकल कोई सुझाव अगर दे सके तो वो क्या होगा डॉक्टर मुरगत?
1: यह सच है तनुषा कि इंटरनेट के इस युग में देश विदेश की सभी जानकारी तुरंत मिल जाती है और बच्चों के पास है। शिक्षा की दृष्टि से भी देखें तो एक से बढ़कर एक पढ़ाकू विद्यार्थी की खेप हर वर्ष तैयार हो रही है। इसका आप नीट का रिजल्ट देख लें, आईआईटी का रिजल्ट देख लें, परीक्षा परिणाम देखेंगे तो ताज्जुब करेंगे। हमारे टाइम पे 60-70% सबसे मैक्सिमम हुआ करता था, लेकिन आजकल बच्चे ऐसे आ रहे हैं कि किताब को घोल करके पी जाते हैं पूरा। लेकिन उनमें एक कमी अभी जो देखी है वो ये है कि उनमें धैर्य की कमी है, पेशेंस की कमी है। वे शॉर्ट टेम्पर भी हो रहे हैं, वो जल्दी बेकाबू हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, और फिटनेस के मामले में भी वो एक्सक्यूज करते हैं, जी चुराते हैं, अपने आप को दूर रखते हैं। संदेश यही देना चाहूंगा कि आप भरोसा रखें, जितने भी यंग बच्चे हैं, धरती पर किया हुआ कोई भी काम निष्फल नहीं रहता। आपके द्वारा किया सभी काम का फल आपको अवश्य मिलेगा। कई बार परिणाम देर से मिलते हैं, लेकिन मिलते जरूर हैं।
0: बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत, कि आप बस बीज डालें, वो अपने आप उगेगा, वो अपने आप फूल देगा, फल देगा। और बीज जिस तरह से जमीन के नीचे रहकर भी पेशेंस से, उस अंधेर काल में रहकर भी अपने आप को उगाने की उम्मीद में रहता है, शांति से, पेशेंस से, उसी तरह आप बस सही बीज बोते जाएं और जीवन अपने आप एक खूबसूरत पेड़ में बदल जाएगा। डॉक्टर शर्मा, हमारे आखिरी सवाल की तरफ हम चलते हैं आज के। आज से कुछ समय बाद आपको जब लोग याद करें, तो आप क्या चाहते हैं कि आपको किस रूप में याद किया जाए? एक प्रोफेसर के, एक रिसर्चर के, एक रनर के, या एक ऐसे इंसान के रूप में जिसने जीवन में रुकना मना है, ये एक अपना एक एक सिद्धांत बना के रखा, चाहे परिस्थिति कैसी भी हुई?
1: जी तनुषा, अच्छा प्रश्न है। आप सिर्फ एक इंसान के रूप में याद रखा जाए, हारना उस वक्त जरूरी हो जाता है जब लड़ाई अपनों से हो, और जीतना तब जरूरी हो जाता है जब लड़ाई खुद से हो। तो ये लड़ाई हमारी अपने आप से है, तो नेवर कॉम्प्रोमाइज, नेवर गिव अप, रुकना मना है, थकना मना है।
0: बहुत ही खूबसूरत बात आपने अंत में कही कि जीतना खुद से है और हारना दूसरों से है, यही जीवन की सच में सीख है। और एक सटीक बात आपने कही बहुत ही सुंदरता और सरलता से, कि दूसरों से, अपनों से आप हार भी जाओ, बट जीतो तो खुद से जीतो, खुद से जिद करो, दुनिया से नहीं। बहुत ही खूबसूरत अंत। डॉक्टर शर्मा, आपके साथ आज की बातचीत ने हमें ये सिखाया कि जिंदगी को सिर्फ जीना नहीं, उसमें दौड़ना भी जरूरी है, मगर अपनी रिदम में। थैंक यू सो मच आज हमारे साथ इस एपिसोड में जुड़ने के लिए, और इतनी खूबसूरत, इतनी सरल, बट इतनी सटीक बातें हमारे साथ साझा करने के लिए।
1: धन्यवाद।
0: दोस्तों, शायद आज आप भी अंदर से थोड़ा सा तो मोटिवेट हुए ही होंगे, आई एम श्योर। मैं थी आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे थे जिंदगी के रंग गीतों के संग। चलते रहिए, ठहर जाइए, मगर थमिए कभी नहीं।
2: मगर अब जो आना तो धीरे से आना।
3: और दोस्तों, इसी के साथ आज के इस खूबसूरत सफर को बस यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है आज की बातचीत और गीतों ने आपके दिल को छुआ होगा और आपको कुछ नया सोचने की प्रेरणा दी होगी। फिर मुलाकात होगी एक नए मेहमान, एक नई कहानी और नए गीतों के साथ, जिंदगी के रंग गीतों के संग इस प्रोग्राम में। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए।

आज समाज में बालिकाओं के प्रति पुरुष तो ठीक, महिलाएं भी परंपराओं का हवाला देकर अपनी फूल सी कोमल बच्चियों को अपनी जिंदगी को ठीक से जीने नहीं देती। हमारे समाज में अनेक बच्चियां रूढ़िवाद एवं सामाजिक प्राचीन परंपराओं के कारण माँ के कोख में ही खत्म कर दी जाती है। यदि जन्म लेती है तो परिवार पर बोझ बन जाती है, यह रूढ़िवादी परंपरा है। बच्चियां अपनी सिसकियां अपने हृदय में संजोकर अपने पिताजी की गोद में शायद यह जरूर अभ्यंतर से कहती होगी,

0: रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम टांटिया भील रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान आपू रोज करहू वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा एत्रे हमरता रेजो टांटिया भील नो रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम
1: ભાવના આપણ

जिंदगी के रंग गीतों के संग प्रोग्राम में दोस्तों आपका स्वागत है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आपके जैसे सज्जनों और महिलाओं से, जिनकी बातें सुनकर, जिनसे बातचीत करके आपको बड़ा मजा आएगा और उन्हीं के पसंद के गीत भी हम इस प्रोग्राम में सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जिंदगी के रंग गीतों के संग। और आज का रंग है कविता की रूह का, जो देखा नहीं जा सकता बल्कि महसूस किया जा सकता है। मैं आपका दोस्त आलोक कुमार हमेशा की तरह आपसे मुखातिब हूं। कहते हैं शब्द जब दिल से निकलते हैं तो रूह को छू जाते हैं। आज हमारे साथ हैं एक ऐसी ही शख्सियत जिनकी कलम ने रूह की आवाज को शब्दों में ढाला है। संवेदनशील पित्री, समर्पित गृहिणी, स्नेही माँ और बेहद प्रेरक लेखिका रिया मनोज। रिया की पहली कविता संग्रह रूह की आवाज को मिला एमडी डिकिंसन अवार्ड। साथ ही उन्हें मिले हैं सत्य स्त्री सम्मान 2025, टीजीटी हिंदी सम्मान और हिंदी साहित्य के प्रचार प्रसार के लिए देवनागरी सम्मान, जो उन्हें हाल ही में मिला है। कवित्री नहीं, वे कंपाइलर भी हैं, जिन्होंने ज्योतिर्मय उजाले की ओर जैसे प्रेरणादायक संकलन में 40 कवियों को एक साथ जोड़ा है। वहीं उन्होंने स्पॉटिफाई पॉडकास्ट रिया रिकमेंड्स में लगभग 40 मशहूर राइटर्स से गहन संवाद किए हैं। आज के इस विशेष एपिसोड में हम जानेंगे कैसे रिया मनोज अपनी कविताओं, पॉडकास्ट और लेखन के जरिए संवेदनाओं की उस दुनिया को हमारे सामने रखती हैं, जहां हर शब्द दिल से निकला एक एहसास होता है। तो आइए स्वागत करें रिया मनोज का। रिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार आलोक जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद इस सुंदर मंच पर आमंत्रित करने के लिए, और आपके साथ संवाद करने का ये अवसर मेरे लिए बहुत खास है।
0: तो चलिए रिया जी, शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से आपका ये सफर शुरू हुआ। कविताएं लिखने की प्रेरणा आपको कब और कैसे मिली?
1: कविताएं लिखने की प्रेरणा जीवन से बड़ी प्रेरणा मुझे लगता है कोई नहीं होता। और मेरी कविताएं मेरे मन के आईने की तरह है, जहां हर शब्द एक एहसास की परछाई बनकर उतरता है। और कब कविता मेरे जीवन में उतर गई और इतना अहम हिस्सा बन गई मुझे भी नहीं पता चला, पर जो पहली कविता मेरी प्रकाशित हुई थी वो 2022 में हुई थी।
0: इसका मतलब है जीवन से आपने बहुत सीखा और उसी से आपकी कविताओं में भावनाएं आई हैं। चलिए, आपकी कविताओं में गहरी संवेदना और आत्मचिंतन झलकता है, क्या ये भाव अपने अनुभवों से आते हैं?
1: जी बिल्कुल, मेरे शब्द वही कहते हैं जो जिसे मैं जीवन में जीती हूँ और मेरी रूह से महसूस करते हैं। और मेरी हर कविता मेरी जिंदगी की एक किताब का एक पन्ना कह सकती हूँ मैं, जो कभी दर्द से लिखा गया है तो कभी दुआओं से।
0: बहुत सुंदर। रूह की आवाज के लिए आपको एमली डिकिंसन अवार्ड मिलना एक बड़ी उपलब्धि है। उस पल को आप कैसे याद करती हैं, क्या महसूस करती हैं, अगर आज भी आपको ख्याल आता है उस पल के बारे में?
1: सर, वो मेरे लिए बहुत भावनात्मक पल था, क्योंकि रूह की आवाज मेरी पहली सोलो किताब है और इसमें हर कविता मेरी आत्मा का एक टुकड़े की तरह है। तो जब मुझे एमिली डिकिंसन अवार्ड मिला तो मुझे लगा कि मेरे रूह को सुना गया है, और वो सम्मान हर उस संवेदनशील आत्मा का था जो अपने एहसासों को शब्दों में डालने की हिम्मत रखती है। और इसमें एक बहुत बड़ा थैंक्स पे अपने पब्लिशर को भी देना चाहूंगी कि उन्होंने मेरे शब्दों को इतना सराहा।
0: बहुत अच्छी बात है। ये एमिली डिकिंसन अवार्ड आपको कब मिला था, मैं वैसे ही पूछना चाह रहा हूँ।
1: January 2025 में।
0: चलिए, बहुत बहुत बधाई एक बार फिर से हमारी तरफ से। क्या कोई विशेष विषय या भावना है जो बार बार आपकी लेखनी में लौट आती है, कुछ हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे उसके बारे में?
1: जी, विशेष भावना तो नहीं, विशेष रिश्ता है। एक मेरा मेरे कृष्ण से और एक मेरा मेरी माँ से। माँ हम सबका सबसे पहला रिश्ता होता है, हमारी जीवन की शुरुआत ही वहीं से होती है। और अब क्योंकि मैं खुद एक माँ हूँ, तो इस बंधन की गहराई और निस्वार्थता को बहुत अच्छे से महसूस करती हूँ। और कृष्ण से मेरा एक ऐसा जुड़ाव है जो कभी मेरे गुरु हैं, कभी मेरे सखा हैं, कभी मेरे पूज्य हैं, उनके बिना जीवन का हर पथ मुझे अधूरा लगता है। तो कृष्ण और माँ मेरी हर कविता में लौट के जरूर आते हैं।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो इस कृष्ण की बात पे और माँ की बात पे हम एक रिया जी गाने के लिए रुक जाते हैं और एक गाना सुनते हैं आपकी इन भावनाओं को लेकर।

0: अब रिया जी, हम आपकी लेखन प्रक्रिया पर आते हैं। लेखन के लिए आप प्रेरणा का इंतजार करती हैं या आपके पास कोई एक डिसिप्लिन रूटीन सा है? किस तरह से आपको का ये प्रोसेस है लिखने का?
1: प्रेरणा अगर मैं कहूँ तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि जीवन खुद अपने आप में बहुत प्रेरणात्मक है, और मुझे ऐसा लगता है कि शब्द खुद अपने वक्त पर मुझे दस्तक देते हैं, कभी सुबह की चुप्पी में तो कभी रात की थकान में, और कभी अचानक मन की दीवार पर उतर आते हैं। और जहां तक मैं रूटीन का बात करूं तो मैं रोज कुछ ना कुछ लिखती जरूर हूँ। तो जब मैं लिख रही होती हूँ तो वो कभी कविता बन जाती है, तो कभी कोई अधूरी कहानी, तो कभी किसी किताब से उठी एक नई सोच। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं रिव्यूज भी करती हूँ, तो मेरे लिए लिखना एक आदत नहीं, एक एहसास है, मेरे दिल की धड़कन है वो एक तरह से।
0: बहुत सुंदर। आपने हाल ही में ज्योतिर्मय उजाले की ओर एक संकलन प्रकाशित किया है जिसमें 40 कवियों को जोड़ा है, ये अनुभव कैसा रहा? मुझे तो लगता है ये काफी डिफिकल्ट काम है, 40 कवियों को एक साथ जोड़ना, कुछ इसके बारे में हमारे साथ साझा करेंगी?
1: सर, डिफिकल्ट भी है, चैलेंजिंग भी है, पर अपने आप में ये अनुभव बहुत सुंदर रहा और प्रेरक भी रहा। हर कवि अपने भीतर एक रोशनी लेकर आया, जब उनकी सभी रचनाएं एक जगह आई तो लगा जैसे शब्दों का उजाला फैल गया हो, इसीलिए मैंने इसका नाम भी ज्योतिर्मय रखा। और ये पुस्तक अपने आप में बहुत प्रेरणात्मक है।
0: तो जब इतने अलग अलग स्वरों को एक साथ लाना होता है तो कंपाइलर के तौर पर आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? उनकी रचनाओं का चुनाव करना या वो खुद अपनी रचनाओं का चुनाव करते थे, किस तरह से करते हैं, मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ।
1: रचनाओं का चुनाव उन्होंने ही किया था, मैंने उनको, मैं चाहती थी कि मोटिवेशनल रहे, कि हम सबको एक प्रेरणा मिले। शब्द अपने आप में बहुत गहराई लिए होते हैं और बहुत ताकत रखते हैं, पर जो सबसे बड़ी चुनौती थी मेरे लिए वो था विविधता में एकता को बनाए रखना, क्योंकि हर कवि का स्वर अलग होता है और मुझे उन सबको जोड़ना था एक साझा संवेदना के तौर पर, हर आवाज को उसकी जगह देते हुए एक सामूहिक सामंजस्य जो बनाना था वो बहुत मुश्किल था, पर बहुत मेहनत की मैंने और ये बहुत खूबसूरत किताब पब्लिश हुई है मेरी।
0: वैसे ही मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि इनके पब्लिशर कौन है इसके, आपके ज्योतिर्मय उजाले की ओर के?
1: जी, ये सोच पब्लिकेशन हाउस है मुंबई से, और ये इनकी जो हेड है वो भी एक फीमेल ही है, तो नारी शक्ति जब जुड़ जाती है किसी चीज से तो बहुत मेहनत करती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम वी कैन अंडरस्टैंड दैट। आपने कई संकलन में सह लेखक के रूप में भी योगदान दिया है, जैसे चैनिका, सृष्टिमन, स्वाभिमानी नारी आदि, कौन सा संकलन आपके दिल के सबसे करीब है?
1: सर, हर संकलन एक नई सीख थी, एक नई यात्रा रहा मेरे लिए, पर मैंने जो अपने जीवन की पहली कविता लिखी थी वो लिखी थी गृहिणी। मैं खुद एक गृहिणी हूँ और मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ कि गृहिणी का जीवन कैसा होता है, और वो मेरी पहली कविता चैनिका में पब्लिश हुई थी, तो चैनिका मेरे लिए हमेशा खास रहेगा क्योंकि शायद वहीं से मेरी लेखक के तौर पे जर्नी शुरू हुई थी उस किताब से।
0: आपकी एक नई रचना है समन्वय, इसके बारे में हमारे श्रोताओं को थोड़ा बताइए।
1: समन्वय का शाब्दिक अर्थ होता है संतुलन और सामंजस्य, और इस संग्रह को हम लिख रहे हैं चार जने। हम चारों जिंदगी के अलग अलग पहलुओं के राही हैं, किसी ने शब्दों में जीवन खोजा है, किसी ने अनुभवों में, पर हमारे रास्ते भले ही जुदा रहे हों पर इस नए सफर में हम सब हमराह बने हैं, और शायद इन्हीं भिन्नताओं का एक सुंदर मेल है समन्वय, एहसासों का एक सफर।
0: ओके ओके, मतलब तो आप चार लेखक चार विभिन्न विषयों पर या चार विभिन्न भावनाओं पर अपनी अपनी बात लिख रहे हैं?
1: जी बिल्कुल।
0: जी, बहुत सुंदर है, मेरे ख्याल में बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है। जी, मैंने कुछ फिल्में तो देखी हैं ऐसी के कई डायरेक्टर्स अलग अलग शॉर्ट स्टोरीज बनाते हैं, तो यहाँ इस समन्वय के नाम पर रिया जी हम एक गाने का आनंद लेते हैं।
1: जी जरूर सर।
2: दिल का साथी है जब दिल, कैसा रास्ता क्या मंजिल। याद आया?

0: देख लो यानी मन कर दे एक नजर देख लो ला ला ला
1: रिया जी, आपका पॉडकास्ट रिया रिकमेंड्स काफी पॉपुलर है। ये आइडिया कैसे आया कि किताबों पर बातचीत को एक ऑडियो फॉर्म पे लाया जाए?
2: मैं चाहती थी कि लेखक अपनी कहानियां खुद पाठकों तक पहुंचाए, और दूसरी वजह ये रही कि मैं हमेशा से बहुत रीडिंग राइटिंग भी करती रही हूँ और बहुत सारे लिटरेरी क्लब से जुड़ी हुई थी। तो जब मैं वहां जाती थी, मैं देखती थी ऐसे बहुत सारे लेखक हैं जो बहुत उम्दा लिखते हैं, पर वो ना, उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। तो मैंने कोशिश की कि मैं उनकी आवाज बन सकूं। ऐसा मुझे कहा गया कि मेरी आवाज बहुत अच्छी है, तो मैंने इसीलिए रिया रिकमेंड शुरू किया, ताकि उन लेखकों की लेखनी हम सब तक पहुंचे और सुनी जाए, और ये अपने आप में बहुत सुकून देता है मुझे जब मेरे पास सबकी कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं कि उनका शब्दों को दुनिया सुन रही है।
1: बहुत सुंदर। आपने करीब 40 जाने माने लेखकों से बातचीत की है, कोई एक ऐसा इंटरव्यू जो आपके दिल के बहुत करीब रहा हो?
2: ये बड़ा मुश्किल सवाल है वैसे। मेरे लिए हर संवाद अपने आप में बहुत खास रहा है। हर लेखक अपने अनुभव और दृष्टिकोण के साथ जैसे एक नई दुनिया ही खोल देता है मेरे लिए। और पर मैं कुछ लोगों का नाम लेना चाहूंगी यहाँ पे, मसलन तस्नीम खान जी की ऐ मेरे रहनुमा का लेखिका है, उनकी बेबाकी और निर्भीकता उन्हें एक सच्चे साहित्यकार बनाती है। और जैसे सत्यार्थ नायक जी हैं, जिन्होंने श्रीदेवी जी की बायोग्राफी लिखी है द इटर्नल गॉडेस, वही उन्होंने महागाथा जैसी बुक भी लिखी है जिसमें उन्होंने 100 स्टोरीज लिए पुराना में से। तो वो एक बड़ा ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट है कि एक जो बॉलीवुड की लेजेंड पे एक स्टोरी लिख रहा है, फिर वो पुराना पे लिख रहा है। तो उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। और वही अगर मैं बात करूं कि सबसे खास, तो उसमें मैं राजेश शर्मा जी की बातचीत को बड़ा खास मानना चाहूंगी। डॉक्टर राजेश शर्मा जी लेखक भी हैं, कवि भी हैं, डीन भी हैं और उद्यमी भी हैं। उनके साथ उनका एक प्रोजेक्ट है गुंजिश्ता बरेली। आप ये सोचिए कि उन्होंने एक फेसबुक पे ब्लॉग स्टार्ट किया था जिसमें बरेली जैसे शहर में से उन्होंने 100 ऐसे व्यक्तित्व ढूंढे जिनकी वजह से बरेली आज जाना माना है, और आज उस पे 3 बुक्स पब्लिश हुई है सीरीज में। और उनके उनके साथ मेरा एक पॉडकास्ट रहा, वो बहुत फेमस हुआ था। और दूसरा पॉडकास्ट हमने उनके साथ किया था, एक बुक है गली कासिम जान, अगर आपने उनका जिक्र सुना हो तो। गली कासिम जान किताब पर जो विनोद भारद्वाज जी ने लिखी है, हम दोनों के गालिब फेवरेट हैं, हम दोनों की फेवरेट बुक थी। तो उस पे जो हमारा कॉन्वर्सेशन हुआ था, जो हमने गालिब पे और उस गली उस दौर को जिया था हमने उस बातचीत में एक बार दोबारा, वो शायद मैं ज्यादा इंटरेस्टिंग मानूंगी, जो मेरे लिए भी था और शायद मेरे ऑडियंस के लिए भी।
1: गालिब पे आप लोगों ने लिखा है, ये तो भाई मेरा भी पसंदीदा विषय है। खैर, इस पे हम बात कभी फुर्सत में करेंगे दोबारा, या फिर आपको कभी पॉडकास्ट में फिर बुलाएंगे तो फिर बात करेंगे। आज जब पॉडकास्ट का ट्रेंड बढ़ रहा है, तो क्या आपको लगता है ये साहित्य को नए श्रोताओं तक पहुंचा रहा है? क्योंकि ये काफी साहित्य से भी बाहर

0: आ रहा है। पहले तो किताबों में ही था जो कुछ था, लेकिन अब ये एक आम पहुंच तक है, एक तरह से कहा जा सकता।
1: सर, साहित्य को इस नजर से देखा जाए तो हाँ, बहुत हद तक पॉडकास्ट मदद कर रहा है, और आज की पीढ़ी सुनना ज्यादा पसंद करती है क्योंकि शायद हमारे समय से वो ज्यादा बिजी हैं। अगर मैं आज के स्टूडेंट्स की बात करूँ, हमारे टाइम पे शायद हम सिर्फ पढ़ रहे होते थे, एग्जाम्स दे रहे होते, आज उनको कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स भी देने हैं, जिमिंग भी करनी है, बहुत कुछ करना है, तो इस केस में वो हेडफोन्स पे पॉडकास्ट सुनना ज्यादा पसंद करते हैं, और अगर शब्द दिल से बोले जाए तो वे असर जरूर छोड़ते हैं। तो मुझे लगता है कि पॉडकास्ट साहित्य और श्रोताओं के बीच एक नया पुल बनने का काम कर रहे हैं।
0: ये बात बहुत थोड़ी विचारणीय है जो आपने कही है कि
1: जी
0: साहित्य एक तरह से सुलभ हो रहा है एक दूसरे फॉर्म में, एक
1: जी
0: तरह
1: बिल्कुल
0: से। अब मैं जो सवाल पूछने वाला हूँ थोड़ा सा हर पॉडकास्टर के लिए एक ट्रिकी सा है।
1: जी
0: पॉडकास्ट बनाते समय आपका मकसद क्या रहता है, लेखक की सोच को सामने लाना या पाठक को प्रेरित करना?
1: पॉडकास्ट बनाते समय मेरा मकसद होता है कि मैं लेखकों की सोच को सामने लाना चाहती हूँ और पाठकों को प्रेरित भी करना चाहती हूँ कि सुनने वाला सिर्फ किताब नहीं बल्कि उस सोच को भी समझे जो किताब के पीछे है। अगर हम कुछ कहते हैं तो हमारा कोई ना कोई मकसद होता है, और अगर उस मकसद को जान लिया जाए तो शायद किताब को पढ़ना आसान हो जाता है। तो ये बहुत मुझे लगता है कि जरूरी है।
0: नहीं, बिल्कुल सही है। और साहित्य और संगीत का भी हमेशा से बहुत अच्छा एक जुड़ाव रहा है, तो आपकी
1: जी
0: साहित्य की बात पे हम यहाँ एक अच्छा कोई गाना सुनते हैं जिसमें कुछ साहित्यिक शब्द आए।

0: रिया जी, आप अपने इंस्टा पेज बिटवीन द पेजेस पर बहुत गहराई से किताबों की समीक्षा करती हैं, रिव्यू लिखना आपने कब और कैसे शुरू किया?
1: सर, मैं हमेशा से एविड रीडर रही हूँ, मुझे पढ़ना बहुत पसंद है। अब मैं यहाँ पे एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि मुझे जिंदगी में कई चीजों से डर लगता था, क्योंकि डरते हम उस चीज से जिनकी जानकारी हमें नहीं होती, और किताबें मुझे निडर बनाती, बुक्स मेक्स मी ब्रेव। सो मैंने ये हमेशा से पकड़ा था और मैं हमेशा से पढ़ती रही, और मैं जो भी किताब पढ़ती थी मैं उसको समराइज जरूर करती थी और उसके कुछ कोट्स लिख दिया करती थी। और ऐसे ही ये जो समरीज और नोट्स की थी, जब इंस्टाग्राम का दौर आया तो मुझे लगा कि मुझे अपने व्यूज हर बुक पे शेयर करने चाहिए, तो उन अनुभवों को मैंने बिटवीन द पेजेस डॉट इन पे शेयर करना शुरू कर दिया। और वहां मेरी कोशिश यही रहती है कि किताबों के पन्नों के बीच छिपी आत्मा तक पहुंचा जा सके, उसके जिस तक, उसे जिस नजर से मैं देखती हूँ, मैं उसे शेयर कर देती हूँ।
0: बहुत अच्छा। तो एक अच्छे रिव्यू में आपके हिसाब से क्या ज्यादा मायने रखता है, ईमानदारी या एनालिसिस या विश्लेषण?
1: सर, मेरे लिए ना किताब एक एहसास की तरह है, और मुझे लगता है उसे परखना नहीं समझना ज्यादा जरूरी है। तो मैं अपने रिव्यू में आलोचना नहीं संवाद खोजती हूँ, जहां लेखक की रूह और पाठकों का मन दोनों का मेल किया जा सके, क्योंकि मैं पाठक भी हूं और मैं उस नजर से ही उसको शेयर करती
0: हूँ। ये बात बहुत सुंदर कह दी आपने। आप बहुत ज्यादा उसमें आलोचना समालोचना या क्रिटिकल एनालिसिस करने के बजाय वो क्या कन्वे करना चाह रहा है इस बात पे ज्यादा जोर देती है, अगर मैं सही समझाऊं आपकी बात।
1: जी सर, बिल्कुल।
0: रिया जी, आप नए लेखकों को भी लगातार प्रमोट कर रही हैं, इस पहल के पीछे आपकी सोच क्या है?
1: जी, मुझे हमेशा लगता है कि हर कलम को एक मौका जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा, मतलब ऐसा लगता है कि बुक पब्लिश हो गई तो उसके पीछे पता नहीं कितने सालों की मेहनत होती है, फिर उसको कंपाइल करना, फिर पब्लिशर ढूंढना, बहुत मेहनत लगती है किताब को बनने में, एक तपस्या की तरह होती है हर किताब। तो मुझे इसीलिए लगता है कि सबको बहुत मौका मिलना चाहिए, और जब मैंने शुरुआत की तब मुझे भी इसी तरह से किसी ने मोटिवेट किया था, तो अब मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रही हूँ।
0: I completely agree। आजकल का जो लैंडस्केप है वो बहुत बदल गया है, पब्लिशिंग बहुत ज्यादा है, डिजिटलाइजेशन होने से पब्लिशिंग कुछ तरह से आसान भी हो गई। पहले तो पब्लिशर को ढूंढना एक बहुत मुश्किल काम होता था।
1: जी, पब्लिशर्स को ढूंढना भी आसान हो गया है, बट उसके बाद भी बहुत कुछ होता है कि वो पब्लिशर उस आपकी किताब की रूह को समझे, आप जो कन्वे करना चाह रहे हो उसे उसी नजर से देखे और पब्लिश कराए, बहुत मुश्किल काम है ये भी।
0: बिल्कुल सही बात। और चलिए, इस मुश्किल की पहल पर या मुश्किल के काम पर हम लोग एक गाने के लिए रुक जाते हैं, गाना सुनते हैं।
1: जी सर।
2: वो

0: भगवान।
1: वो कौन सी मुश्किल है जो न हो सके आसान, वो कौन सी मुश्किल है।
2: रिया जी, आजकल कहा जाता है यंग जनरेशन में पढ़ने की आदत कम हो रही है, ये क्या, ये भी हालांकि बहुत ज्यादा एक डिबेटेबल सा सब्जेक्ट है, आप क्या सहमत हैं इस बात से?
3: सर, मैं इससे कुछ हद तक सहमत हूँ। पढ़ने की आदत कम हो गई है क्योंकि किताबों से इश्क नहीं रहा, पर उनमें क्यूरियोसिटी कम नहीं है। वो जानना चाहते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है या क्या हो चुका है, तो आई थिंक वो ऑडियो बुक या किंडल के फॉर्मेट में पढ़ रहे हैं, पर उसे वो पेपर बैग या उस फॉर्मेट में नहीं भर रहे। तो जो जैसे हमें होता था कि कलेक्शन ऑफ बुक्स होती थी या कुछ और होता था, वो नहीं रहा है। वो चलते फिरते समरी सुनना या ऑडियो बुक के फॉर्मेट में सुनना वो जरूर कर रहे हैं। तो लिटरेचर की तरफ प्यार कम हुआ है या वो नहीं कह सकते हम, पर उसका एक फॉर्मेट चेंज हो गया है कि वो स्क्रीन टाइम पर चला गया इंस्टेड ऑफ अ पेपर बैग थिंग।
2: हालांकि मेरे ख्याल में बहुत ही वाजिब बात कह रही हैं आप, बहुत ही वाजिब बात कह रही हैं। नहीं, अब कुछ साल पहले तक तो वास्तव में थोड़ा सा कम हो गया था, लेकिन अब लास्ट 5-10 ईयर से तो मैं देख रहा हूँ काफी बच्चों में पढ़ने की आदत बढ़ रही है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में हम आ जाते हैं जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में। जयपुर में हम बैठे हो, जयपुर JLF की बात करें तो मजा नहीं आता ना। तो इस तरह के जो आयोजन होते हैं ये कितने जरूरी है आपकी नजर?
3: सर, बेहद जरूरी है। उसका जैसे अभी हमने युवा पीढ़ी की ही बात करी, तो युवा पीढ़ी उसे एक बार आउट ऑफ क्यूरियोसिटी जाते जरूर है, और वहां पर जब वो देखती है मंच पे लेखकों को बोलते हुए और अपनी बुक के बारे में बातचीत करते हुए, तो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा वो प्रेरित होते हैं। और हमारे जैसे साहित्य प्रेमियों के लिए तो वैसे भी उत्सव से कम है भी नहीं, जहाँ शब्द हो, विचार हो, संवाद हो, सब हो वहां पर, हमें तो बहुत अच्छा लगता है। और आई थिंक युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं, चाहे वो एक बार जाती है चेक इन डालने के लिए कि चलो हम भी जा रहे हैं लिटरेचर फेस्टिवल, बट दे गेट इंस्पायर्ड। उसके बाद उनको मैंने देखा है कि वो ऑथर से बात करने में भी इंटरेस्टेड रहते हैं, बुक्स लेने में भी इंटरेस्टेड रहते हैं। तो ये जो वापस पेपर बैग का दौर है, शायद इस वे में ही सही वापस आ सकता है। तो ऐसे फेस्टिवल और बहुत होने चाहिए जहां वे रूबरू हो सके ऑथर्स के साथ में।
2: चलिए, हालांकि ये भी मेरा बड़ा फेवरेट सा टॉपिक है, क्योंकि मैं इसको 2008 से अटेंड कर रहा हूँ फेस्टिवल को। अब इसमें मुझे मतलब महसूस होता है कि थोड़ा कमर्शलाइजेशन ज्यादा हो गया, बट इन एनी केस बच्चे बहुत आ रहे हैं इसमें, इतनी भीड़ होती है बच्चों की, यंगस्टर्स की रादर, कि बहुत अच्छा लगता है एक बार इतने यंगस्टर्स को किताबों के बारे में बात करते सुनना, किताबों को देखते हैं, वो ब्राउज करते हैं, बहुत अच्छा लगता है
3: जी।
2: रिया जी, आजकल AI लेखन में भी काफी इस्तेमाल हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस राइटिंग में भी काफी यूज हो रही है, आइडियाज, एडिटिंग, समरीज तक, आपको क्या लगता है इससे क्रिएटिविटी को मदद मिल रही है या खतरा सा हो रहा है?
3: सर, क्रिएटिविटी को तो मदद नहीं मिल रही। अगर मैं कहूं कि मैं कुछ टाइप कर देती हूँ और वो मुझे लिख के दे देता है, तो मशीन कुछ महसूस नहीं कर सकती। AI काइंड ऑफ हम उसे गैजेट मान लेते हैं या एक सॉफ्टवेयर जो भी है, तो वो हमारी सुविधा के लिए बनाया गया है ताकि हमारा थोड़ा टाइम सेव हो सके। जैसे हम पहले हाथों से अकाउंट्स बनाया करते थे, अब लैपटॉप पे हो जाते हैं और वो सेव रहते हैं बहुत सालों तक, आपको इतने सारे जर्नल्स को संभालने नहीं पड़ते। तो AI एक टूल है, अगर उसे एक टूल के तौर पर अपना टाइम और एनर्जी सेव करके, उस टाइम और एनर्जी को कहीं अच्छी जगह यूटिलाइज करने के लिए हम कर रहे हैं, तब तक वो ठीक है। पर हर गैजेट का कोई ना प्रोज और कॉन्स होती है, तो इसके भी नुकसान है ही। और वो अगर स्टार्ट से उसे एक बैलेंस्ड वे में नहीं यूज किया गया, तो शायद वो एक खतरा हो सकता है। पर मुझे लगता है कि हम 90s के जो किड्स रहे हैं, उन्होंने जितने ज्यादा चेंजेस देखे हैं, अगर आपको याद हो तो बचपन में एक फोन होता था जिसे हम फर्स्ट नंबर को पूरा राउंड करके घुमाते थे, फिर वो वापस टर्न होता था, फिर दूसरा नंबर घुमाते थे और बहुत देर लगती थी एक नंबर को डायल करने में। तो हमने उधर से लेके अगर मोबाइल के टच स्क्रीन तक सर्वाइव किया, तो हम AI भी सर्वाइव कर ही लेंगे। हम लोग काफी बैलेंस है, हम कर ही लेंगे उसे।
2: बिल्कुल बिल्कुल। अब ये भी बड़ा डिबेटेड सा है, क्या मशीन कभी इंसान जैसी इमोशनल डेप्थ जितना लिख पाएगी, क्या कर पाएगी मशीन, ऐसा कर पाएंगी क्या कभी, क्या सोचते हैं आप इसके बाद?
3: सर मशीन महसूस नहीं कर सकती ना, उसे दर्द नहीं होता, उसे खुशी नहीं होती, तो वो नहीं कर सकते। एनी डे ह्यूमन बीइंग और रोबोट्स में फर्क तो रहेगा ही ना, दे कांट क्रिएट द इमोशंस।
2: बिल्कुल सही बात है। चलिए इस मशीन और इंसान की जद्दोजहद पे एक गाने के लिए हम रुक जाते हैं और एक गाना सुन लेते हैं।
3: जी

0: रिया जी, अब थोड़ा सा रुख बदलते हैं। हमने बहुत सारी आपकी लेखन के बारे में बात कर ली। आप एक कवित्री हैं, माँ हैं, गृहिणी हैं, कंपाइलर हैं, रिव्यूअर हैं, सब कुछ है। इतनी भूमिकाएं निभाते हुए आप अपना मी टाइम कैसे निकालती हैं?
1: सर, राइटिंग इज माय मी टाइम. एक्चुअली मेरा मेन प्रोफेशन अगर मैं बोलूंगी तो मैं गृहिणी ही हूँ, और उसमें अगर मी टाइम की बात करूँ तो राइटिंग इज माय मी टाइम, जिसमें मुझे बहुत सुकून मिलता है और पेशेंस भी आते हैं, सुकून भी मिलता है. तो दिस इज माय मी टाइम. मेरा मेन प्रोफेशन आप गृहिणी ही मानिए कि वो मेरा, राइटिंग इज माय मी टाइम. जैसे लोगों का टीवी देखना होता है या म्यूजिक सुनना होता है, मेरे लिए लिखना पढ़ना मेरा मी टाइम होता है. मुझे उसमें सुकून मिलता है.
0: वंडरफुल। मतलब आप जब लिखती हैं तो बिल्कुल एकदम फ्रेश हो जाती है, एक रिफ्रेश
1: जी
0: बटन है आपके
1: सर,
0: लिए। रिफ्रेश
1: जी
0: बटन है आपके
1: सर.
0: लिए, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। कई लोगों का म्यूजिक होता है, म्यूजिक सुनते हैं तो बिल्कुल तनाव मुक्त हो जाते हैं। तो इस तरह
1: जी
0: लिखना आपका है, बहुत बहुत खूबसूरत बात है। तो लिखने के अलावा रिया को और किन चीजों में आनंद मिलता है? कोई और शौक, कोई और हॉबीज क्या है आप?
1: सर, आई लव गार्डनिंग. मुझे गार्डनिंग बेहद पसंद है. एक बीज को पौधा बनते हुए देखना, फिर उसको पेड़ का स्वरूप लेते हुए देखना, और जो

0: पतझड़ का मौसम होता है कि सब खत्म, और फिर अचानक उसमें जो हरी हरी पत्तियां आती है वो बड़ी इंस्पायरिंग लगती है मुझे। तो एक अजीब सा सुकून है, और ये जो सफर है इतना बड़ा, उसमें एक पेशेंस भी है, सब्र भी है, और एक उम्मीद भी है जो जिंदगी को समझने का एक नया नजरिया देती है कि एक बार सब खत्म भी हो जाए पर सब सही भी हो जाता है। तो मुझे गार्डनिंग बेहद पसंद है।
1: बहुत खूबसूरत आपका तो ये जो क्लिप है गार्डनिंग के बारे में आपने बोला है, हमें इसको रिकॉर्ड करके अलग से दिखा रहे हैं। ये एक आपने शब्द चित्र जिसको कहते हैं वो खींच दिया गार्डनिंग का, बहुत बढ़िया। तो रिया जी, क्या मदरहुड ने आपकी कविताओं को किसी तरह से प्रभावित किया है, कुछ इन्फ्लुएंस आया है?
0: सर बहुत बहुत गहराई आई है मेरी मदरहुड की वजह से। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि माँ हमारा पहला रिश्ता होता है, और अब क्योंकि मैं खुद एक माँ हूँ, एक माँ होने और एक माँ के होने का फर्क बहुत गहराई से समझती हूँ। कि तो मैं कह सकती हूँ कि माँ बनने के बाद मेरी कविताएं और मेरा जीवन दोनों अपने आप में एक संपूर्ण समय पहुंचा है।
1: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो फिर अगर रिया राइटर पॉडकास्टर नहीं होती तो क्या बनना पसंद करती?
0: सर, शब्दों के बिना भी मैं शायद जीवन का अर्थ ही खोजती, क्योंकि रचना तो सिर्फ कलम से नहीं है ना, दिल से होती है। तो लेखक ना सही, शायद एक बेहतर इंसान बनना ही मेरी सबसे बड़ी रचना होती।
1: नहीं, अगर मैं पूछूं प्रोफेशन वाइज, साइंटिस्ट बनना चाहती, कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाहती, ऐसा क्या मन होता अगर इस जो आप करेंटली कर रही हैं ये नहीं कर रही, तो आपको लगता होगा ना भाई ये पायलट है लेडी, ये हवाई जहाज चला रही है, ये ट्रेन चला रही है, मैं भी ऐसा कुछ करती। आजकल क्रिकेटर भी बन रही है लड़कियां।
0: सर, यू वॉन्ट मी टू बी ऑनेस्ट हियर?
1: हाँ
0: मैं
1: बिल्कुल, क्यों नहीं।
0: मैं शू डिजाइनर बनना चाहती
1: वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल,
0: हूँ।
1: शू डिजाइनर बनना चाहते हैं। लेट अस कम आउट समथिंग वेरी गुड। मुझे याद है एक एड आता था शू डिजाइनर का, बहुत पहले टीवी में, मुझे याद है, बड़ा एक जेंटलमैन सा आदमी वो शू डिजाइन करता था। उसकी याद आ गई मुझे आपकी बात सुनकर।
0: तो मैंने भी
1: वंडरफुल।
0: बचपन में, हम सब ने एक कहानी जरूर सुनी होगी कि एक कॉबलर था जो हर रात एक जोड़ी जूती बनाता था पर उसकी सेल नहीं हो पाती थी। फिर कुछ छोटी परियां आई थी जिन्होंने जूतियां बनाई तो बड़े महंगे दामों में बिकी थी और उसकी लाइफ चेंज हुई थी। तो जब मैं बहुत छोटी थी और मैंने एक कहानी सुनी थी, तब मुझे लगता था कि एक दिन मैं भी ऐसा कुछ बनाऊंगी जिससे जिंदगी, किसी की जिंदगी बदल जाए जिसको चलने से। तो मैं कॉबलर होती शायद, शू
1: वाह,
0: डिजाइनर।
1: तो आपकी कल्पना की इस उड़ान के लिए हम एक बढ़िया से गाने के लिए रुक जाते हैं
0: जी
1: और
0: सर,
1: सुनते हैं एक गाना।

0: रिया जी, अब हम करीब करीब आखिरी पायदान पे आ गए हैं। कुछ बताइए, कौन से कवि या लेखक आपके लिए प्रेरणा रहे हैं, कोई खास?
1: सर, किसी एक कवि का आप इधर नाम कैसे ले सकते हैं? मतलब रविंद्रनाथ टैगोर हो, गुलजार हो, एमिली डिकिंसन, शेक्सपियर, शिवानी जी, अमृता प्रीतम जी, सबकी लेखनी में वो आत्मबस्ती जो पाठकों को भीतर तक तो छू लेती है, और इन सबसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। पर अगर मैं कहूं तो मैं किसी दिन उस गहराई और बेबाकी से लिखना चाहूंगी जिस तरह अमृता प्रीतम जी ने लिखा था, बिना किसी डर के, बिना किसी रोक के, बस दिल की सच्चाई के साथ। तो मैं शायद उनके जैसा किसी दिन लिखना चाहूंगी।
0: बहुत सुंदर, ये तो आपने मेरी फेवरेट राइटर उनका नाम ले लिया,
1: जी
0: क्योंकि बहुत खूबसूरत इनकी वो जो है ना रसीदी टिकट, वो भी मैंने पढ़ी हुई है, और हम लोग किसी जमाने में उससे बड़े इन्फ्लुएंस थे।
1: सर,
0: चलिए
1: मैंने
0: साहब,
1: रसीदी टिकट हो, दस्तावेज हो, खतों का सफरनामा हो, मैंने पिंजर हो, मैंने इनका बहुत सराहती हूँ मैं इनके काम को।
0: बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
1: जी
0: चलिए रिया जी, अब मैं आखिरी सवाल तो नहीं कह सकता, लेकिन आखिरी पायदान पे हम आ गए। आपको अपनी
1: जी
0: क्रिएटिव फिलॉसफी अगर एक लाइन में बतानी हो तो वो क्या होगी?
1: क्रिएटिव फिलॉसफी। सर, अगर जिंदगी एक कहानी है, अगर जिंदगी एक कहानी है और कहानी तुम्हारी है, तो कलम भी तुम्हारे ही हाथ में होनी चाहिए। मैं यही कहना चाहूंगी।
0: बहुत खूबसूरत। अगर जिंदगी एक कहानी है तो उस कहानी को लिख के
1: बिल्कुल
0: नहीं, कलम भी तुम्हारे हाथ में होनी चाहिए। बहुत खूबसूरत। तो दोस्तों, आज की ये बातचीत रिया मनोज के शब्दों की तरह ही गहराई और सादगी से भरी रही। उनकी कविताएं हमें एहसास कराती हैं कि भावनाएं आज भी सबसे बड़ी प्रेरणा है, और सृजन की दुनिया में सच्चाई और संवेदना की जगह कम नहीं हुई है। एक कवयित्री, लेखिका, रिव्यूअर और पॉडकास्टर के रूप में रिया न सिर्फ खुद लिखती हैं, बल्कि दूसरों को भी लिखने, सोचने और महसूस करने के लिए प्रेरित करती हैं। रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज अपने अनुभव और संवेदनाओं को हमारे श्रोताओं के साथ बांटा।
1: सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पर बुलाने का और मेरे को इतनी पेशेंस के साथ सुनने का, इस खूबसूरत बातचीत के लिए और इस शब्दों के सफर में साथ देने के लिए। सच में बेहद आभार।
0: रिया, हम आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आपकी रचनात्मक यात्रा यूं ही उजालों से भरी रहे। अगर
1: शुक्रिया सर आपका, आपको और आपकी टीम को भी बहुत बहुत गुड विशेस।
0: अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी एक नई शख्सियत, नई सोच और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए, शब्दों से जुड़े रहिए और महसूस करते रहिए जिंदगी को। मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार, आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।
2: जिंदगी के रंग हजार।
3: दोस्तों, जिंदगी के रंग गीतों के संग के आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल एक और नए सज्जन और महिला हमारे साथ हाजिर होंगे, आपके लिए मजेदार बातें और गीत लेकर। सुनना ना भूलिएगा।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

और दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में आज हैं द लेजेंडरी एक्टर ऑफ बॉलीवुड अमिताभ बच्चन। जी हां दोस्तों, पेशे खिदमत है अमिताभ बच्चन साहब की ही एक फिल्म का ये गीत।

0: हमारे साथ बने हुए हैं गोपाल रघुवंशी जी अलीगढ़ से। मैं गोपाल जी से पूछना चाहूंगा, आप अमिताभ बच्चन जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे?
1: उनके बारे में कुछ कहना, सूरज को दीपक दिखाना है। मतलब उनके बारे में इतने लोगों ने इतनी बातें कर दी, मैं कुछ भी बोलूंगा कुछ भी तो बहुत छोटी चीज होगी। अमिताभ बच्चन नेम इज इटसेल्फ, अपने अपने लेजेंडरी कह लो, परसोना कह लो, कुछ भी कह लो आप उस आदमी को। मेरी तो जो मुझे लगता है कि जब से मैंने होश संभाला है फिल्म इंडस्ट्री में या रेस्पेक्टेड फिगर्स में, उनसे ऊपर शायद एक दो लोग ही होंगे, लाइक गावस्कर और तेंदुलकर और किशोर कुमार। बाकी आई रेट अमिताभ बच्चन, वेरी रेस्पेक्टेबल फिगर, वेरी एडोरेबल फिगर, एवरीथिंग, मतलब ही मींस एवरीथिंग टू मी।
0: बेहतरीन बेहतरीन। गोपाल भाई, तो क्या मैं आपसे गुजारिश कर सकता हूँ कि अमिताभ बच्चन जी के ऊपर फिल्माया हुआ आपका पसंदीदा गीत जो आप श्रोताओं को सुनवाना चाहें हमें बताएं?
1: सर, अमिताभ बच्चन पे फिल्माई हुई मुझे हर चीज पसंद है, तो मैं इट इज वेरी हार्ड टू पिक मी वन सॉन्ग, बट स्टिल दिल भर मेरे कब तक मुझे है।

0: बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, शानदार। तो गोपाल रघुवंशी जी का जो ये फेवरेट सॉन्ग है या वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग है अमिताभ जी का, वो श्रोताओं आपके लिए पेश खिदमत है। बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल जी हमारे साथ बने रहने के लिए।
1: थैंक्स।
2: दोस्तों, अमिताभ बच्चन साहब का जन्म 11 अक्टूबर 1942 में अलाहाबाद में हुआ, जिसे आज प्रयागराज बुलाया जाता है, और इनके पिताजी थे हरिवंश राय बच्चन। पेशे खिदमत है उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

देखा नहीं देखा है तो जाना नहीं जाना है तो माना नहीं मुझे पहचाना नहीं दुनिया दीवानी मेरी मेरे पीछे पीछे भागे किसमें है दम यहाँ ठहरे तू मेरे आगे आना नहीं देखो टकराना नहीं किसी से भी हारे नहीं हम।

देखा नहीं देखा है तो जाना नहीं जाना है तो माना नहीं मुझे पहचाना नहीं दुनिया दीवानी मेरी मेरे पीछे पीछे भागे किसी में है दम यहाँ ठहरे जो मेरे आगे आना नहीं देखो टकराना नहीं किसी से भी हारे नहीं हम

तूने अभी देखा नहीं, देखा है तो जाना नहीं, जाना है तो माना नहीं, मुझे पहचाना नहीं, दुनिया दीवानी मेरी, मेरे पीछे पीछे भागे किस में है दम, यहाँ ठहरे जो मेरे आगे आना नहीं, देखो टकराना नहीं किसी से भी, हारे नहीं हम।

0: मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा।
1: ट्रेन में वार्निंग लिखी थी, बिना टिकट सफर करने वाले यात्री होशियार। संता तो ये लाइन पढ़ते ही बिखर गया। वाजी, ये कोई बात हुई? बिना टिकट सफर करने वाले होशियार और हमने टिकट ले लिया तो हम बेवकूफ।
2: बाबूजी मेरा चांसेस दो ना प्लीज। सुनो कितना अच्छा गाना आ रहा है।
3: ऑल इंडिया रेडियो से आ रहा है?
2: हाँ।
3: ऑल इंडिया रेडियो तेरे बाप का नहीं, जितने देर तक तेरे लिए बजता रहेगा। कोई घा रहा होगा। सो जाएगी ना?
2: हाँ।
3: चल सो जा।

दोस्तों अमिताभ बच्चन साहब के बारे में कितना कहा जा सकता है ये तो मुझे मालूम नहीं, मेरे बताने से बहुत बहुत ज्यादा आप लोगों को पता होगा। पेशे खिदमत है उन्हीं की फिल्म का, उन्हीं के ऊपर फिल्माया हुआ ये खूबसूरत सा गीत।

मैं समीर बोल रहा हूं, आपका रेडियो दोस्त। बने रहिए मेरे साथ। मेरी ओर देखो, हवा में उड़ता ये नष्ट हो जाने वाला सूखा पत्ता कहता है मुझसे, मेरी ओर तो देखो।

0: मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूँ, समीर। आप मेरे साथ है ना? मैं हूँ आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा।
1: पत्नी ने कहा, सुनो जी, डॉक्टर ने मुझे एक महीना आराम करने के लिए स्विट्जरलैंड या पेरिस जाने को कहा है, हम कहाँ जाएंगे? पति ने कहा, दूसरे डॉक्टर के पास।

0: मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा।
1: विज्ञान चाहे कितनी भी तरक्की कर ले, हर बीमारी का आज भी एक ही रामबाण इलाज है। सो जाओ, थोड़ी देर अपने आप ठीक हो जाएगा।

दोस्तों, अमिताभ बच्चन की फिल्में हम हमेशा देखना चाहते हैं, अमिताभ बच्चन साहब के गाने हम हमेशा सुनना चाहते हैं। लीजिए, पेश खिदमत है उन्हीं की आवाज में ये गीत।

देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर।

दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

और दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम के जो एक्टर हैं उनका नाम है अनिल कपूर। बेहद ही हंसमुख और हमेशा ही जवान दिखने वाले अनिल कपूर बेहद पॉपुलर एक्टर हैं बॉलीवुड के। तो लीजिए पेशे खिदमत है उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

कैसे हैं दोस्तों, आप हैं आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। मनुष्य के शरीर के बारे में और मस्तिष्क के बारे में एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं दोस्तों। मनुष्य का मस्तिष्क, जो कि हमारा कंट्रोलर माना जाता है, जहां पर सारी पढ़ाई लिखाई अनुभव स्टोर होते हैं, आपको पता है वो किसी भी बात को सिर्फ पिक्चर्स में, छवियों में ही समझता है। मस्तिष्क के लिए शब्द कोई मायने नहीं रखते, सिर्फ छवियां, पिक्चर्स, फोटोज मायने रखती हैं। जब हम कहते हैं पेड़, तो मस्तिष्क एक पेड़ की छवि बनाता है। जब हम कहते हैं चिड़िया, हाथी, जंगल, जानवर, इंसान, तो मस्तिष्क सिर्फ छवियां बनाता है और उन्हीं को समझता है। इसलिए जब हम मोबाइल पर पिक्चर देखते हैं, तो मस्तिष्क का काम तो हो गया ना, यानी कि मस्तिष्क चुपचाप बैठ जाता है, उसे छवि बनाने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि छवियां पहले से बनी बनाई हमें दिखाई देती हैं। लेकिन जब हम किसी चीज को सुनते हैं, तो मस्तिष्क उन सुनी हुई चीजों पर छवियां बनाता है, यानी कि मस्तिष्क की कोशिकाएं, यानी कि मसल्स काम करती है और हमारा दिमाग तेज होता जाता है। तो इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए, क्योंकि मस्तिष्क उन सुनी हुई ध्वनियों पर, आवाजों पर छवि बनाता है और तंदुरुस्त रहता है। तो बने रहिए आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ।

मैं समीर बोल रहा हूं, आपका रेडियो दोस्त। बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों, अनिल कपूर जी एक पंजाबी हिंदू फैमिली में 24 दिसंबर 1956 को जन्मे थे और तब से लेकर आज तक बस हम सभी का मनोरंजन करते ही जा रहे हैं। लीजिए, पेशे खिदमत है उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

0: मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा।
1: यार तुम्हारा कुत्ता तो टाइगर जैसा दिखता है, क्या खिलाते हो तुम इसको? बंता ने कहा, अरे भाई ये टाइगर ही है, ये प्यार व्यार के चक्कर में पड़कर इसकी शक्ल कुत्ते जैसी हो गई है।
2: उन्नीस सौ अस्सी के दशक में ढेर सारी फिल्में की अनिल कपूर ने, और हम सभी का भरपूर मनोरंजन किया अपने चुलबुले अंदाज में। लीजिए हो जाए उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर। आप मेरे साथ है ना? अनिल कपूर जी ने बहुत सारी फिल्में प्रोड्यूस भी की, जिसमें बधाई हो बधाई, माई वाइफ्स मर्डर, गांधी, माई फादर जैसी फिल्में आती हैं।

मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा। एक बार एक सब्जी वाला सब्जियों पर पानी छिड़क रहा था, छिड़कता जा रहा था। काफी देर हो गई तो ग्राहक ने गुस्से से बोला, सुनो, अब अगर भिंडी होश में आ गई हो तो 1 किलो तौल दो।

जी थोड़ा बहुत गा भी लेते हैं, जैसे उनकी बॉलीवुड कॉमेडी चमेली की शादी में उन्होंने थोड़ा सा गाया भी था। तो लीजिए पेश खिदमत है उनकी ही फिल्म का ये गीत।

देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर। आज के कलाकार अनिल कपूर जी की फिल्म का ये गीत।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा बहुत ही खास प्रोग्राम जहां शब्दों में एहसास है और हर शेर में दिल की बात। आज की इस महफिल में पेश है कुछ खूबसूरत गजलें जो आपके दिल को छू जाएंगी। आपके साथ हैं आपकी ही मेजबान, आपकी ही रेडियो दोस्त आरती जी। तो आइए शुरू करते हैं गजलों और सुरों का ये प्यारा सफर।
1: नमस्कार और आदाब दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी दोस्त आरती रॉय, रेडियो SN एंड रेडियो तांतिया भी 90.8 FM पर। और आप सुन रहे हैं एक ऐसा प्रोग्राम जहां अल्फाज बोलेंगे और एहसास महसूस होंगे। जी हाँ दोस्तों, तो हम सफर शुरू करते हैं अल्फाज से एहसास तक का। कहते हैं कि गजल सिर्फ एक शायरी नहीं बल्कि दिल की वो दबी हुई आह होती है जो संगीत का लिबास पहनकर हमारी रूह तक पहुंचती है। एक तरफ जगजीत सिंह जी की वो मसीहा जैसी आवाज जो पुरानी यादों को ताजा कर देती है, दूसरी तरफ मेहदी हसन साहब जिन्होंने गजल को एक नया मुकाम दिया, और तीसरी तरफ गुलाम अली साहब जिनकी गायकी में एक अलग ही थरथराहट और दर्द है। तो दोस्तों, आज की शाम थोड़ी फुर्सत की है तो क्यों ना हम सब मिलकर उन कागज की कश्तियों को याद करें और उन रास्तों पर चलें जहां जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। मोहब्बत में कदीम इम्तहां अभी बाकी हैं, किसी शायर ने कहा है, मोहब्बत में कदीम इम्तहां अभी बाकी हैं, अभी तो कारवाने रफ्तागान बाकी हैं, मगर वो बचपना वो बेफिक्री अब कहां है दिल, अब तो सिर्फ यादों का धुआं ही बाकी है। दोस्तों, बचपन की वो यादें किसी सरमाए से कम नहीं होती। हम कितने ही बड़े क्यों ना हो जाएं, लेकिन दिल के किसी कोने में आज भी वो मिट्टी की सौंधी खुशबू और बारिश की बूंदें बसी हुई हैं। तो आइए जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की पुरकशिश आवाज में डूब जाते हैं और अपने बचपन को एक बार फिर से जी लेते हैं। सुदर्शन फाकिर का ये मशहूर कलाम, ये दौलत भी ले लो ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो वो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती वो बारिश का पानी। गजल मुलाहजा फरमाएं जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज में।

0: मेरा उनका साथ रहा है कुछ 40 साल से।
1: जिंदगी के सफर में सभी साथी नहीं होते, जिंदगी के सफर में सभी साथी नहीं होते दोस्तों। हर मोड़ पर पुराने दोस्त बाकी नहीं होते। प्यार तो हर कोई करता है इस दुनिया में, मगर मौत तक जो साथ निभाए वो साथी नहीं होते। अभी हम बचपन की गलियों में घूम रहे थे, लेकिन अब रुख करते हैं उस आवाज की तरफ जिसे शहंशाह गजल कहा जाता है, यानी मेहदी हसन साहब। उनकी गायकी में एक ऐसी संजीदगी है जो सीधे दिल पर दस्तक देती है। उनका कहना है कि जीते जी मोहब्बत करना तो आम है, पर असली इम्तहान तो मौत के बाद भी उस रिश्ते को जिंदा रखना है। तो पेशे खिदमत है उस्ताद मेहदी हसन खां की ये लाजवाब गजल। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूंगा। कतील शफाई के कलाम को अपनी रूहानी आवाज में गाकर मेहदी हसन साहब ने अमर कर दिया।

आहों के तसव्वुर में सूरत अभी भी बाकी है, निगाहों के तसव्वुर में वो सूरत अभी भी बाकी है, मोहब्बत की वो हल्की सी शरारत अब भी बाकी है। जमाना बीत गया उनसे बिछड़े हुए ऐ दिल, मगर दिल में मिलने की वो हसरत अब भी बाकी है। मोहब्बत का असली मज़ा तो उस इंतज़ार में है दोस्तों, जो रातों की नींदें उड़ा देता है। हसरत मोहानी साहब की लिखी हुई ये गज़ल और ग़ुलाम अली साहब की वो थरथराती सी आवाज़, ऐसा लगता है जैसे वक्त यहीं कहीं ठहर गया हो। सुनिए इश्क की उस मासूमियत को बयान करती ये दास्तां। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, हमको अपनी आशिकी का वो जमाना याद है। गुलाम अली साहब की आवाज में सुनिए ये दर्द से भरी दास्तां।

हर एक जज्बात को अल्फाज नहीं मिलते, हर एक जज्बात को अल्फाज नहीं मिलते, हर एक साहिल को जहाज नहीं मिलते। बेखुदी की दुनिया में मिलते हैं जो सुकून, बेखुदी की दुनिया में मिलते हैं जो सुकून, वो होश की दुनिया में कभी बाज नहीं मिलते। कहा जाता है कि इश्क में थोड़ी दीवानगी जरूरी है। जो लोग हर चीज में नफा नुकसान देखते हैं, वो वाला मोहब्बत की इस बेखुदी को क्या समझेंगे। जगजीत सिंह की रेशम जैसी आवाज में पेश है निदा फाजली का ये मशहूर कलाम। होश वालों को खबर क्या जिंदगी क्या चीज है, इश्क कीजिए फिर समझिए जिंदगी क्या चीज है।

ने कहा था हर एक मोड़ पर साथ निभाएंगे, मगर अब तो रास्ते भी हमसे सवाल करते हैं। चलो माना कि तुम बेवफा नहीं हो फराज, मगर कभी कभी तुम भी कमाल करते हो। आगे फराज साहब कहते हैं, कुछ तो मेरे पिंदारे मोहब्बत का भरम रख, कुछ तो मेरे पिंदारे मोहब्बत का भरम रख, तू भी तो कभी मुझको मनाने के लिए आ। अहमद फराज का ये कलाम मेहदी हसन साहब की आवाज में एक इबादत बन गया हो जैसे। कभी कभी रिश्तों में ना चाहते हुए भी इतनी दूरियां आ जाती हैं कि दिल फिर इतना ही चाहता है कि सिर्फ एक बार ही सही हमें दुखाने के लिए ही आ, पर लौट आए कोई। सुनिए एक टूटे हुए दिल की खामोश पुकार, मेहदी हसन साहब की पुरसकून आवाज में ये गजल। रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ।

दोस्तों, अब थोड़ा माहौल बदलते हैं। सूरज को लगे धब्बा फितरत के करिश्मे हैं, सूरज को लगे धब्बा फितरत के करिश्मे हैं। बुत हमको कहे काफिर, अल्लाह की मर्जी है। गुलाम अली साहब की गायकी का एक अलग ही रंग है दोस्तों, थोड़ी मस्ती, थोड़ी शिकायत और थोड़ा सा नशा। अकबर अलाहाबादी साहब के तंज और गुलाम अली की आवाज एक दूसरे को जैसे कॉम्प्लीमेंट कर रही हो, एक अलग सा ही नशा छा जाता है। वो कहते हैं, ना तजुर्बाकारी से वायल्स की ये बातें हैं, मतलब ना तजुर्बाकारों से वायज उपदेश देने वाले की ये बातें हैं। इस रंग को क्या जाने, पूछो तो कभी पी है। या वायज उपदेश देने वाला है और तंज है कि उसने कभी इश्क का नशा चखा ही नहीं, तो वो इसकी गहराई को क्या समझेगा। उस मैं से नहीं मतलब दिल जिससे हो बेगाना, मकसूद उस मैं से दिल ही में जो खिंचती है। आइए दोस्तों, गुलाम अली साहब की आवाज में ये खूबसूरत सा कलाम सुनते हैं। हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है, डाका तो नहीं डाला, डाका तो नहीं डाला।

वेल दोस्तों, घड़ी की सुइयां फिर उसी जगह आने को हैं जहां से आपसे एक बार फिर विदा लेने का वक्त हो चला है। उम्मीद है अल्फाज से एहसास तक का आज का सफर आपको पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे एक नए जज्बात और एक नए अल्फाज और कुछ नए एहसासों के साथ। तब तक आप अपना खुद अच्छे से ख्याल रखिएगा, गाते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। शब खैर, शुभ रात्रि।

दोस्तों, आपकी मेजबान आरती जी के साथ आज की हमारी गजलों भरी महफिल बस यहीं खत्म होती है। उम्मीद है ये गजलें, ये अल्फाज आपके दिल को पसंद आए होंगे। इसी तरह जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आरती जी फिर लौटेंगी नई गजलों और नई भावनाओं के साथ। नमस्कार।

ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें। रेडियो टांडिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का आपके अर्जे मनीष कार्यक्रम खेती बाड़ी में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और किसान साथी कैसे हैं? हमें आशा है कि हमारे किसान साथी अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे और तैयारी कर रहे होंगे आगामी फसल किस तरीके से करें। और खेतों की तैयारी के साथ साथ हमारे किसान साथी अब तो समझ ही गए होंगे कि हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से यानी खेती बाड़ी कार्यक्रम के माध्यम से आप लोगों तक वो छोटी छोटी बात को हम लेकर आते हैं जो हमारे किसान साथियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहती है। खास तौर पर देखा जा रहा है कि पथरीला इलाका है और झाबुआ जिले को देखा जाए तो किसान साथियों के पास सीमित संसाधन, सीमित जगह होने के कारण किसान साथी अच्छी तरीके से खेती नहीं कर सकते हैं। लेकिन किसान साथियों, यदि आप वैज्ञानिक विधि से या फिर आपको लगता है कि हमें छोटे ही रकबे में अच्छी फसलों को करना है तो आप संबंधित कृषि विस्तार अधिकारी या फिर वैज्ञानिक की सलाह लेकर अपने खेतों को अच्छा हरा भरा बना सकते हैं और साथ में अपनी आय को भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हम उन छोटी छोटी बातों को लेकर आते हैं जो हमारे किसान साथियों के लिए बेहद उपयोगी सिद्ध होती है। आज के हमारे इस खास कार्यक्रम बातें खेती बाड़ी कार्यक्रम में आज हम नीम की खेती, चूंकि नीम की खेती भारतीय संस्कृति में नीम को एक विशेष महत्व मिलता है और नीम को यहाँ बहुत सी मान्यताओं के साथ जोड़ा भी गया है। नीम की गुणवाणी औषधि का दर्जा भी दिया गया है और नीम की खेती भी इतनी लाभकारी भी साबित होती है जिसमें मौजूद औषधीय गुण इतने गुणकारी और मूल्यवान हैं जिनकी इसकी मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। भारत में कई स्थानों पर इसे पूजा भी जाता है और नीम का उपयोग दवाइयों के तौर पर किया जाता है। नीम से निर्मित तेल और निवोलियों से एकत्रित करके इसे बाजार में अच्छे भाव में बेचा जाता है। यह मैली ऐसी कुल का पौधा है, इसको मुख्य तह नाम दिया जाना जाता है। इसमें नीम पेड़, मुर्गासा पेड़, भारतीय बकाहन, सफेद देवदार, स्वर्ण पेड़ के नाम से भी इसको जाना जाता है। साथियों, नीम के होने वाले फायदे के बारे में भी थोड़ा आपको बता देना चाहते हैं कि घाव पर असरदार भी होता है नीम का पौधा, क्योंकि नीम में उपस्थित एंटीबायोटिक गुण जो रहते हैं अत्यंत लाभकारी साबित होते हैं। इसके पत्तों को पीसकर घाव पर लगाकर घाव को भराया जाता है। नीम की दातुन भी, क्योंकि आसपास नीम की दातुन नहीं मिलती है, शहरों में खासतौर पर ये नहीं मिलती है और शहर के लोग खास तौर पर इसको तलाशते हैं कि नीम की दातुन कहाँ मिले। और कोविड काल में अगर देखा जाए तो इसका तो जवाब ही नहीं है। वास्तव में नीम की निमोली और नीम की दातुन, नीम की कोंप को लोग देख रहे थे, कहाँ पर नीम का पौधा है वहां पर जाकर ताजी ताजी हवा ले रहे थे, नीम की कोंप खा रहे थे जिससे हमारे खून भी साफ होता है। और दातुन की अगर बात है, रोजाना नीम का दातुन करने से दांतों में मजबूती बनी रहती है और दांतों में किसी प्रकार का रोग भी नहीं लगता है। साथ में बालों के लिए भी नीम का इस्तेमाल किया जाता है। नीम के पत्तों को पीसकर यदि बालों में लगाया जाता है तो बहुत लाभकारी साबित होता है। नीम का काढ़ा, आपको पता ही होगा कि नीम के पत्तों को उबालकर यदि काढ़ा बनाकर हम रोजाना एक गिलास पिया जाए तो उसके शरीर में अत्यंत लाभकारी होता है। नीम के पानी से स्नान करना, नीम के पत्तों को मिलाकर यदि पानी में डालकर स्नान किया जाए तो इसके शरीर साफ होता है और बहुत से फायदे भी हमें मिलते हैं। खासतौर में मलेरिया में असरदार होता है। नीम मलेरिया में फैलाने वाले मच्छरों को दूर रखने में अत्यंत सहायक है। जिस वातावरण में नीम के पेड़ रहते हैं वहां पर मलेरिया नहीं फैलता है। नीम के पत्तों को जलाकर रात को धुआं करके मच्छर नष्ट हो जाते हैं और विषम ज्वर जिसे मलेरिया कहा जाता है उससे भी बचा जा सकता है। बिच्छू को काटने में असरदार होता है, क्योंकि बिच्छू को काटने पर नीम के पत्तों को मसल कर काटे गए स्थान पर लगाकर यदि लगाते हैं तो जलन नहीं होती है और जहर का भी असर कम होता है। उपयुक्त जलवायु के लिए, क्योंकि नीम की खेती करने के लिए आपको तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, वर्षा 400 से 1200 मिलीमीटर होनी चाहिए। इसको उगाने के लिए आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। इसको आप सभी प्रकार की मिट्टी में कैसे भी
और सभी प्रकार की भूमि जैसे शुष्क पथरीली इलाका हो, रीतीला इलाका हो, खासतौर पर अगर देखा जाए झाबुआ जिले को देखा जाए तो पथरीला इलाका है, तो यहाँ पर आसान तरीके से इसको उगाया जा सकता है। गहरी चिकनी मिट्टी हो वहां पर भी उगाया जा सकता है, भूमि में आसानी से इसे उगाया जा सकता है। आरंभिक अवस्था में नीम के पौधों को पाले का खतरा बना रहता है, अतः वृक्षारोपण के बाद एक वर्ष तक पाले से बचाना आवश्यक होता है। तत्पश्चात पाला सहन कर सकने में यह सक्षम होकर तैयार होता है। कैसे तैयार करें? वैसे तो नीम सभी तरह की मिट्टी में उगाया जाता है, फिर भी खेत को अनेकों बार जोतकर इसमें कंकड़ पत्थर अलग करके इसको खेती लायक बनाया जाता है। और बीज का उपयोग कैसे करें? बीजों को खरीद करके समय आपको इतनी गुणवत्ता का विशेष ध्यान देना होगा जिससे किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या ना आए। आप इसको किसी भी सरकारी मान्यता प्राप्त बीज भंडार केंद्र से खरीद सकते हैं। बीज के अंडे जैसे सफेद और दीर्घवृत्तीय होते हैं। बुवाई का सही समय जो रहता है, नीम की बुवाई का समय जो रहता है, पनीरी लगाना अवश्य याद रखने के लैम रखना जरूरी रहता है। और नीम का कलम दार को आसानी से लगाया जाता है। 12 से 13 महीने पुरानी नर्सरी के पौधों के कलम को तैयार किया जाता है। सीधी बुवाई आसान होती है, इसे छिद्र रोपण छिटका विधि कतारों की बुवाई द्वारा लगाया जाता है। और यह खेतों पर निर्भर करता है कि आपके खेत कैसे हैं। तो ये सारी बातें हैं और अधिक बात के लिए आज हमने एक खास रिपोर्ट तैयार की है, तो उसमें हम जानते हैं कि किस तरीके से हम अपने नीम की खेती कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले हम लेते हैं एक छोटा सा विराम, सुनते हैं इस प्यारे से फीली गीत को। बने रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया व्हील 90.8 FM। आप लोग रेडियो आपकी बात है।

0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम।
1: आपनू रेडियो आपड़ी बातें।
0: रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेतीबाड़ी में। और अभी आपने इस वीली गीत को सुना। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इस खास रिपोर्ट को हम सुनते हैं और जानते हैं नीम के कैसे हम खेती कर सकते हैं, नीम की खेती किस तरीके से कर सकते हैं और इसके आइए हम जानते हैं इस खास रिपोर्ट में।
2: कृषि प्रधान देश के लिए खाद आत्मा की तरह होती है और इस आत्मा की सलामती के लिए किसान हमेशा तत्परता के साथ कोशिश करता रहता है। किसान की आजीविका का साधन खेती है और खेती खुशहाल रहे इसके लिए इसमें इस्तेमाल होने वाला खाद सीधे तौर पर उसका साथी होता है। और शायद यही एक बड़ी वजह है कि सरकार ने अब यूरिया जैसे महत्वपूर्ण खाद में 100% नीम के इस्तेमाल की बाध्यता कर दी है। सरकार की इस बेहतरीन पहल के बाद से नीम की मांग बढ़ गई है। देश की कई अग्रणी संस्थाएं जो पहले ही नीम पर शोध कर रही थी, उन्होंने अब बढ़ चढ़ कर इसके शोध और प्रयोग के दायरे को बढ़ा दिया है। हर रोज नीम से जुड़ी नई नई जानकारियां सामने आ रही हैं। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट भी पिछले कई सालों से नीम को लेकर अलग अलग शोध कर रहा है। शोध के दौरान ही संस्था ने एक ऐसी नीम की वैरायटी की खोज की जो न सिर्फ कम समय में फल देने के लिए तैयार हो जाता है बल्कि करीब करीब हर परिस्थिति में इसको उगाया भी जा सकता है।
3: पहली बार फूल आते हैं लगभग जो सामान्य प्रजातियां हैं सामान्य ग्रोइंग नीम है औसत 5 साल के बाद आते हैं। 5 से शुरुआत होकर के 6, 7, 8 तक भी आते हैं। लेकिन हमारी जो नई विकसित प्रजातियां हैं ये प्रजातियां दूसरे साल प्लांटेशन के दूसरे साल से ही फूल आना शुरू करते हैं और तीसरी चौथी या फोर्थ ईयर का आता है तो सफिशियंट मात्रा में बीज हार्वेस्ट किया जा सकता है।
2: नीम पर नए नए शोध कर रहे वन वैज्ञानिकों का कहना है कि नीम की खेती से न सिर्फ किसानों की आय में इजाफा हो सकता है बल्कि मिट्टी का स्वास्थ्य भी बेहतर होता है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के वन वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले दिनों में नीम की खेती किसानों की आय को कई गुना बढ़ा सकती है।
4: जहाँ नीम एक तरह से एक फंडरू ट्री था जिसका कोई वैल्यू नहीं था सवाए इसके कि हम कोई छाया ले लें कुछ निम्बोलिया FIM बना लें, आज ये एक कमर्शियल क्रॉप में तब्दील एक तरह से कन्वर्ट हो रही है और ये मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आने वाला है जहाँ वृक्ष और कृषि दोनों जो क्रॉप्स हैं फसलें हैं ये आपस में मिलके किसान को एक अतिरिक्त आय और यूं कहूं कि जो एडिड इनकम है उसकी तरफ खींच रहे हैं।
2: नीम की मांग लगातार बढ़ रही है। खाद बनाने वाली कंपनियां भी नीम की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए हर संभव मदद कर रही हैं। इसी कड़ी में देश की अग्रणी खाद बनाने वाली कंपनी इफ्को ने फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ एक समझौता कर नीम की नई वैरायटी के रिसर्च और खेती के लिए बेहद महत्वपूर्ण योगदान दिया है। गुजरात के अहमदाबाद में कलोल में मौजूद इफ्को की खाद कंपनी ने कई एकड़ जमीन नीम की खेती के लिए FRI को दी है ताकि यहाँ इसकी खेती के साथ साथ रिसर्च भी किया जा सके।
5: पहले हम लोगों ने बहुत सारी जगह इसका प्रयास किया, विदेशों में भी कई जगह प्रयास किया गया लेकिन अंतिम निर्णय यह हुआ कि हम अपने देश के शोध संस्थान फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में इसका शोध करेंगे। वहां पे हम लोग गए, वहां के निदेशक से बात की और निदेशक से बात करने के बाद में ये निर्णय लिया गया कि पॉलीप्लाइडी विधि से जिसमें नीम में क्रोमोसोम्स के नंबर को बढ़ा करके इसके उत्पादन को तेज किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, इसकी ग्रोथ को तेज किया जा सकता है और उसमें नीम का तेल और एजरडिक्टिन की मात्रा दोनों बढ़ाई जा सकती है। तो ये शोध परियोजना यहां से शुरू होती है, फिर उस शोध परियोजना को हम लोगों ने वित्तीय मदद की और उसका अनुश्रवण उनके लिए जो भी जरूरतें थी, उनके लिए जमीन की जरूरत थी, उनके लिए फंड्स की जरूरत थी, उनके लिए आदमी की जरूरत थी, जो भी उनकी आवश्यकताएं हुई उन आवश्यकताओं को पूरा करके ये 6 साल का अनवरत प्रयास हमारी इफ्को की टीम ने और एफआरआई के साइंटिस्ट ने, बहुत ही योग्य वैज्ञानिक है एफआरआई के, उन लोगों के प्रयास से 6 प्रजातियां रिलीज हुई हैं।
2: नीम को बढ़ावा देने के लिए आखिर इफ्को ने ये पहल क्यों की, इसकी वजह खुद कंपनी के मार्केटिंग डायरेक्टर योगेंद्र कुमार बता रहे हैं।
5: 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की कि हम अब देश में 100% नीम लेपित यूरिया का ही प्रयोग करेंगे, यानी जितना भी यूरिया बाजार में बिकता है, जो किसान भाई हमारे प्रयोग करते हैं, उसमें नीम के तेल की, नीम की एक लेपन किया जाएगा, नीम की एक कोट होगी। तो वो एक निर्णय माननीय प्रधानमंत्री जी का था, उससे प्रेरित होके हमारे प्रबंध निदेशक डॉक्टर वी एस अवस्थी साहब ने अपनी संस्था के में निर्णय लिया कि इतना नीम का तेल आएगा कहां से और इतना निमोली कहां से पैदा होगी, इसके उत्पादन को बढ़ाना है और इसके नीम में कोई ऐसी शोध करके प्रजाति हमको लानी है जिससे नीम का तेल ज्यादा मिले, वो जल्दी बढ़े, जो भी निमोली किसान भाई एकत्रित करते हैं उनको क्रय करने की एक सुनिश्चित व्यवस्था अगर हम कर लें, और उस सुनिश्चित व्यवस्था को क्रय करने के बाद में, क्रय करके उसका जो आगे का काम है, उसके प्रोसेसिंग का काम है, विधायन का काम है, उसे उत्पाद बनाने का काम है, इसको भी अगर हम बढ़ावा दें, तो ये बात बिल्कुल सत्य है कि जैविक खेती को बढ़ावा देने में, उत्पादन को बढ़ाने में और साथ ही साथ जितने भी रसायन मुक्त खेती के लक्ष्य हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, भारत सरकार ने बनाए हैं, उन सबको पूरा करने में एक बहुत बहुत ही लाभकारी कदम होगा इसके लिए।
6: इसमें पॉलीप्लांटिंग टेक्निक से एकदम टिश्यू कल्चर के माध्यम से नीम के पेड़ को ऐसा करें कि वे 3 या 5 साल के अंदर निमोली देने लगे, तो उसके कारण दो चीजें होंगी, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड का अब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा और उसके कारण वातावरण में जो प्रदूषण है वो कम होगा, और दूसरा ये निमोली ये जल्दी आ जाएगी तो उसको 15 रुपए किलो पे हम खरीदते भी हैं, और इस पे हम रिसर्च भी करा रहे हैं कि किस तरीके से नीम के और जो अच्छी चीजें हो सकती हैं, जैसे बायोपेस्टिसाइड बन सकते हैं नीम से, उसमें भी बायोपेस्टिसाइड के माध्यम से हम किसान को ज्यादा पैसे दे सकते हैं, उसकी आमदनी बढ़ा सकते हैं। फिर हमने फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट को कांटेक्ट किया और उनको उनके साथ संपर्क स्थापित करके हमने एक प्रोजेक्ट चलाया जिसको कि हमने टोटली फंड किया कि हमें नीम की वैरायटीज वो आप डेवलप करके दीजिए जो पॉलीप्लांटिंग तरीके से टिश्यू कल्चर के माध्यम से जल्दी से जिनका विकास हो और इसमें फूल और फल जल्दी आने लगे। तो इस दिशा में हमारे देश में तकरीबन 60 से ज्यादा वैरायटीज है नीम की।
0: रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं, और अपन ने वैरायटी को जाना कि नीम की कौन कौन सी वैरायटी है और खास तौर पर नीम की खेती किस तरीके से कर सकते हैं इसके बारे में जाना। कार्यक्रम में और बहुत सारी जानकारी है नीम से जुड़ी, यानी खेती से जुड़ी, लेकिन इसको सुनने से पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम। सुनते हैं इस प्यारे से भीली गीत को। बने रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांटिया।

आज समाज में बालिकाओं के प्रति पुरुष तो ठीक, महिलाएं भी परंपराओं का हवाला देकर अपनी फूल सी कोमल बच्चियों को अपनी जिंदगी को ठीक से जीने नहीं देती। हमारे समाज में अनेक बच्चियां रूढ़िवाद एवं सामाजिक प्राचीन परंपराओं के कारण माँ के कोख में ही खत्म कर दी जाती है। यदि जन्म लेती है तो परिवार पर बोझ बन जाती है, यह रूढ़िवादी परंपरा है। बच्चियां अपनी सिसकियां अपने हृदय में संजोकर अपने पिताजी की गोद में शायद यह जरूर अभ्यंतर से कहती होगी,

0: वन वैज्ञानिक डॉक्टर रमाकांत और इनकी टीम पिछले कई सालों से वरिष्ठ वन वैज्ञानिक डॉक्टर अशोक कुमार के नेतृत्व में नीम पर लगातार शोध कर रही है। किसानों के लिए नीम की नई किस्म FRI ने जो विकसित की है, आखिर उसमें ऐसा क्या खास है, ये वो खुद बता रहे हैं।
1: इन प्रजातियों को तेल की मात्रा, अत्यधिक तेल की मात्रा सामान्य प्रजातियों से लगभग औसत 5-8% तेल ज्यादा, और अजाडिरिक्टिन इसका एक केमिकल मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, लिमोनाइड ग्रुप का होता है, वो सामान्य प्रजातियों में 3000 के आसपास, 2500 से 3000 ppm के आसपास ही पाया जाता है औसत, और हमारी इन 6 प्रजातियों में जिसमें मिनिमम 7000 का और मैक्सिमम 10000 ppm तक का है, इसका औसत 9000 आसपास है।
0: नीम की इस नई प्रजाति की खोज जब की गई, तो सबसे पहले ये ध्यान में रखा गया कि अगर इसे खेत में लगाया जाता है तो फिर उस खेत में दूसरी फसल की पैदावार संभव नहीं है, जो किसानों के हित में नहीं था। ऐसे में ये सवाल उठता है कि फिर किसान इसकी खेती कैसे करें।
2: जो गरीब किसान है, जिसके पास बहुत बड़ी जमीन नहीं है, उसकी आय में बढ़ोतरी करने का है, और उसका जो खेत होता है वो छोटा खेत होता है, 1 एकड़ का, 2 एकड़ की जमीन है। अब अगर वो अपने खेत की बाउंड्री पे नीम के पेड़ अगर लगा दे और उसमें जो निमोरिया जो बनती है उसको मार्केट में बेच दे, तो उससे उसकी कमाई का एक एक्स्ट्रा साधन उसको मिल सकता है, जिससे कि उसकी आय जो खेती से जो आ रही है वो तो रहेगी, इसके अलावा ये एक एडिशनल इनकम उसके लिए बन सकती है। तो यही उद्देश्य है कि किसी भी किसान को अपनी बाउंड्री पर नीम के पेड़ लगा दे और उससे वो आय कमा सके।
0: किसान नीम की खेती कहाँ करें, या यूं कहें कि नीम के पेड़ को किसान उपजाऊ जमीन में ना लगाकर कहाँ लगाएं? इसकी सही सही जानकारी तो मिल गई, लेकिन सवाल एक और बनता है कि आखिर किसान नीम की खेती क्यों करें?
1: लीफ से लेकर के तना, फल, तेल सभी की उपयोगिता विभिन्न प्रकार की दवाओं के रूप में भी किया जाता है। दैनिक जीवन में दातुन से लेकर के कॉस्मेटिक बनाना, टॉयलेटरीज बनाना, मेडिसिन बनाना, ये सारी उपयोगिता इसकी जो बहुत पहले से एस्टेब्लिश है, इसमें हमारा कोई नया नहीं है। लेकिन जो ये इसके लगाने का जो पर्पज है, अदर पर्पज को आप इनके बाद देखें कि सामान्य नीम अगर आप लगाते हो तो उससे ज्यादा इसमें उत्पादन मिलेगा। आप नीम के अच्छी प्रजातियों को लगा करके ज्यादा तेल की मात्रा के आधार पर उसको मार्केटिंग कर सकते हैं। अधिक उपज के बाद बस शीघ्र ही इसमें फल आएंगे आपके साथ में। क्रॉप के साथ कल्टीवेशन का किया जा सकता है, जो लेसर उपयोगी जमीन है उस जमीन पर इसका प्लांटेशन करके लाभ कमाया जा सकता है।
3: नीम एक दिन इकोनॉमिक एंड वाइबल मॉडल होगा एग्रीकल्चर के लिए, और जो कि आज भी है, केवल हमको उसके गुणों को पहचानने की आवश्यकता है, उसकी कीमत को महसूस करने की आवश्यकता है और उस तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है।
4: रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी किसान साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और अभी अपन ने गुणों को किस तरीके से पहचान कर सकते हैं हमारे किसान साथी, उस पर हमारे विषय विशेषज्ञ की इस खास बातचीत को सुना कार्यक्रम में। और भी बहुत सारी बातचीत है ऐसे कार्यक्रम के माध्यम से आपको बताने के लिए, लेकिन इससे पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम, सुनते हैं इस प्यारे से भीली गीत को। बने रहिए आपके RJ मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांटिया भील 90.8 FM, अपना रेडियो अपनी बात है।

0: एफआरआई की टीम नीम की इस प्रजाति पर पिछले कई सालों से काम कर रही थी। लगातार रिसर्च का काम चल रहा था, लेकिन एफआरआई की रिसर्च को मजबूती मिली साल 2015 के बाद। और वो कैसे, ये खुद बता रहे हैं वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर रमाकांत।
1: भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद देहरादून के विभिन्न संस्थानों जैसे जोधपुर फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून और अन्य संस्थाओं ने मिलकर इसमें कार्य तो 91, 92, 93 में ही प्रारंभ कर दिया था, लेकिन वो कार्य अनुसंधान कार्य लगातार नहीं चला, छुटपुट हुआ, आइसोलेटेड पार्ट्स में हुआ। इसके बाद में हमने 2015 में वन अनुसंधान संस्थान देहरादून ने इफको की सहायता से इफको के साथ मिलकर के एक अनुसंधान कार्यक्रम नीम सुधार अनुसंधान परियोजना की शुरुआत की।
0: एफआरआई ने जिस नीम की नई प्रजाति की खोज की है उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं और ये बाकी नीम की प्रजाति से कैसे अलग है, इसकी पूरी जानकारी दे रहे हैं संस्था के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर अशोक कुमार। डॉक्टर अशोक भी पिछले कई सालों से इस नई प्रजाति पर शोध कर रही टीम का ही हिस्सा हैं।
2: जो हमारी नई प्रजाति हमने जो डेवलप की है वो 2 से 3 साल में फ्लावरिंग करना चालू करती है। दूसरा इसका एक सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, नीम में करीब जो आम नीम है उसमें 25 से 30% के आसपास ऑयल मिलता है, लेकिन जो हमारी प्रजातियां हैं इनमें करीब करीब 38 से लेके 41% तक जो है नीम ऑयल पाया जाता है। और जो तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो आस्पेक्ट है, इसमें एक अजैडिक्टिव कंटेंट होता है। ये कंटेंट नीम में आम नीम में करीब 2500 से 3000 ppm के आसपास होता है, जबकि जो ये हमारी उन्नत जो किस्में हैं इनमें 8000 से लेकर के और 10000 के आसपास तक ये वेरी करता है। सो ये तीन जो पैरामीटर्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं और इन्हीं के बेस पे हम लोगों ने ये वैरायटी जो है डेवलप की है।
0: डॉक्टर अशोक ने नई प्रजाति के बारे में तो बताया, लेकिन किसानों को ये जानना भी जरूरी है कि अगर किसान इसकी खेती करें तो उसे क्या क्या करने की जरूरत पड़ेगी, नीम की खेती में किसानों को कितना खर्च आएगा, अगले साल की शुरुआत से किसानों के लिए ये बाजार में उपलब्ध होगा।
2: मुझे लगता है कि इसमें बहुत बड़ी किसी इन्वेस्टमेंट का जरूरत नहीं है। उनको अच्छी किस्म के पौधे अभी तो ये हमने निजात किए हैं, धीरे धीरे नर्सरीज में जाएंगे, इनका मल्टीप्लीकेशन होगा, तो इन पौधों को खरीद के सिर्फ लगाना है और इस तरह से लगाना है ताकि जो उनकी जो एक एक एक तरह से जमीन के किनारे पे है या फिर बैकयार्ड में उसमें लगाना है, ताकि कुछ नीम के पेड़ अगर वहां रहेंगे तो वो 2 से 3 साल बाद में फिर वो प्रोडक्शन करना चालू करेंगे, उनमें बीज का उत्पादन होगा जिसको सेल करके एक अच्छी आमदनी उसमें मिल सकती है। और मैं नहीं समझता हूं कि इसमें किसान को किसी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ेगी।
0: नीम की इस प्रजाति को खोजने में कई तरह की चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। कई सालों से लगातार इस पर काम कर रहे वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर अशोक कुमार का कहना है कि देश के कई हिस्सों में इसको लेकर शोध किए गए, तब जाकर उनकी टीम इस प्रजाति को खोज पाई।
2: ये बहुत चुनौतीपूर्ण काम था, पूरे देश से अच्छा जर्मप्लाज्म इकट्ठा करना, उस जर्मप्लाज्म को मेंटेन करना, और सबसे बड़ा जो इसमें चैलेंज है, मैं इसको बिल्कुल स्पेसिफिकली बताना चाहूंगा कि नीम के बीज को आप केवल 15 से 20 दिन ही इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बाद में उसका जो जो जर्मिनेशन का पावर है वो खत्म हो जाता है, वायबिलिटी खत्म हो जाती है। तो इन 15 दिन में पूरे बीज को लाना, उसको रिसर्च स्टेशन में इकट्ठा करना, उसके बाद उसकी बुआई करना, उसको मेंटेन करना और आगे बढ़ाना, ये मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा काम था। इसके बाद जो इस प्रोसेस में है कि हमको अलग अलग रीजन्स में इन सभी जो जो हमने जर्मप्लाज्म इकट्ठा किया है उसको इवेल्युएट करना होता है, उसमें ये देखना होता है कि जो आनुवंशिक जो इसके गुण है और जिस पर्यावरण में जिस वातावरण में ये उग रहा है उसमें आपस में इनका किस तरह का इंटरेक्शन है, ये मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा चैलेंज था।
0: नीम की इस नई प्रजाति की खोज में टिश्यू कल्चर का बेहद महत्वपूर्ण स्थान है। एफआरआई के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर अजय ठाकुर बता रहे हैं कैसे टिश्यू कल्चर ने इस पे मदद की।
3: जब हमने आनुवंशिक सुधार के बारे में के बाद जब पौधे बनाए उसका परफॉर्मेंस देखा तो हमने क्या किया कि क्लोनल मेथड बोलते हैं। क्लोनल मेथड में हम किसी चीज की हूबहू कॉपी तैयार करते हैं। तो टिश्यू कल्चर में एक बहुत बड़ी सुविधा

0: अपने मेथड के द्वारा उसमें बहुत तरह की जो है हम PGR बोलते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हार्मोन होता है, जैसे हमारे ह्यूमन में भी होता है। फॉर एग्जांपल आपको पता है इंसुलिन है, तो वो पूरा हमारा शर्करा जो शुगर का है उसका डिसाइड करता है। उसी तरह प्लांट के कुछ जो है हार्मोन होते हैं, जैसे कि ऑक्सिन है और साइटोकाइनिन है, उसके विधि द्वारा हम उसको पुनर्जीवित करते हैं। और पुनर्जीवित करके पहले तो हम एक बीमारी फ्री पौधे का एक प्रारूप तैयार करते हैं, जिसको बोलते हैं कि पहला तो हम प्रारूप तैयार करेंगे कार्बन कॉपी से पहले। जब हमको वैसा मिल जाता है जिसमें कोई भी बीमारी नहीं होता है, तो एक शूट, एक जो उसका तना है या एक ब्रांच जो निकलता है या एक छोटा पौधा निकलता है, उससे हम कई पौधे बनाते हैं।
1: हालांकि टिश्यू कल्चर की तकनीक पर काम करने के दौरान कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा, साथ ही साथ इस प्रोसेस के दौरान कई बार निराशा भी हाथ लगी।
0: कई तरह के चुनौतियों का सामना करना पड़ा। तो पहले तो हम बताया कि एक जो हम कहते हैं कि हम जब भी कोई काम करते हैं तो पिछला रिपोर्ट को देखते हैं, तो हमने उन रिपोर्ट के बेसिस पे काम जब किया तो हमने पाया कि जो जिन पौधों पे हम काम कर रहे हैं उस तरह का हमको उसमें रिजल्ट मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि किसी ने एक हार्मोन को कहा था कि अगर एक यूनिट देंगे, तो किसी ने कहा था कि उसको 40 यूनिट देंगे। तो हमने दोनों को लगा के देखा तो हमने देखा कि हमारे उसमें नहीं काम कर रहा है। तो हमने पहले तो अपने शोध को हमारे जो पौधे थे उसके हिसाब से विकसित किया। हमने पाया कि जो जितने लोगों ने बोला था उसका हमने 8 गुना कम किया, तब जाके हमको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। तो इससे दो फायदे हुए कि हमको एक तो केमिकल की आवश्यकता या हार्मोन की कम पड़ी, दूसरा उसमें उसके क्लोनिंग में कोई छेड़खानी नहीं होती, यानी वो अपने क्लोनल स्वरूप को मेंटेन करता है। दूसरा उसका चुनौती था कि जब हम ये पौधा लाना, कि जब भी हम लाते हैं तो 24 घंटे तक में इसको लाना जरूरी होता है, तो हम इसको बहुत ही स्पेसिफिक तरीके की सिस्टम हमने डेवलप की थी। एक हम कूल बॉक्स ले जाते थे, कूल बॉक्स में हमेशा आइस पैक के साथ हम उसको लेके वहां से लाते हैं, और ऐसी व्यवस्था करते हैं या तो उसको हम हवाई जहाज से, या तो हम एसी वाले कंपार्टमेंट वाले ट्रेन से, या फिर हम अगर वाहन का इस्तेमाल करते हैं, कई जगह हमको जीप ही मिलता है, तो एसी वाले वाहन से हम उसको पौधे को काटते थे, सवेरे में काट देते थे, क्योंकि सवेरे के टाइम में सबसे ज्यादा सबसे शांत केमिकल माहौल होता है। और उसके बाद हम उसको पैक कर देते थे, और पैक करके उस कूल बॉक्स में डाल के आइस पैक के बीच में करके हम उसको अगले वहां ले आते थे। तो ये एक बहुत बड़ी इस तरह की चुनौती थी, बहुत निराशा हाथ लगी। देखिए टिश्यू कल्चर में हम दो चीज कहते हैं, एक तो क्लोन होता है और दूसरा क्लोन नहीं होता है, उसको कैलस बोलते हैं। तो शुरुआती दौर में हमको कैलस मिलता था, जब भी कैलस होता है तो उसमें क्लोनिंग नहीं होके वेरिएशन हो जाता है, उसमें मतलब चेंजेज आ जाती है, तो हमारा पर्पस ही डिफीट हो जा रहा था। तो ऐसा हमने बहुत जब किया, तब हम उसको हमने क्या किया, उसके हार्मोन को घटाना या बढ़ाना उस तरीके के कम से कम उसके 17 या 18 एक्सपेरिमेंट किए। जब 17 या 18 प्रयोग के बाद हमने पाया कि इसमें हार्मोन लेवल, हमने हर प्रजाति के लिए अलग अलग हार्मोन लेवल डेवलप किया, किसी के लिए 0.1 मिलीग्राम प्रति लीटर के हिसाब से था, किसी के लिए 0.4 मिलीग्राम प्रति लीटर के हिसाब से था। शुरुआती दौर में हमने 10 मिलीग्राम प्रति लीटर भी इस्तेमाल किया था। तो हमने इस पूरे प्रकरण में हमें साल लग जाता है सेट करने में।
1: FRI नीम को लेकर कई और शोध और खोज करना चाहती है, लेकिन उसके पास सबसे बड़ी चुनौती है कि उसे अपने शोध के लिए दूसरे संस्थाओं पर निर्भर रहना पड़ता है।
2: जो हमारा सेटअप है, हम लोगों के पास अपनी ट्रायल के लिए कोई जमीन नहीं है, जिसके लिए हमें या तो किसानों पे या दूसरी ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड रहना पड़ता है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट जो इश्यू आता है वो है लैंड का। इस केस में इफको, क्योंकि हम लोगों के जो है कि फंडिंग एजेंसी था, तो इफको की वजह से हम लोगों को कुछ इसमें सपोर्ट मिला है, लेकिन इन जनरल एक चुनौती यह है। और दूसरा यह है कि सीमित जो हम लोगों के पास जो वित्तीय संसाधन है वो निश्चित रूप से इसमें बाधा करते हैं। अगर वित्तीय संसाधन हमें मिलते हैं तो हम लोग और भी जो है स्पेसीज पे, उनकी वैरायटीज पे और क्लोन डेवलपमेंट में काम कर सकते हैं।
1: नीम की खेती किसानों के लिए बेहद फायदेमंद है। इसमें पाए जाने वाले रासायनिक तत्व न सिर्फ मिट्टी को

0: ताकत देते हैं बल्कि कई तरह की बीमारियों से भी बचाते हैं।
1: इसमें जो लिमोनॉइड श्रेणी के जो रासायनिक घटक होते हैं उनका जो है कीटनाशक गुण बहुत ज्यादा मात्रा में है, इसलिए इस तेल का उपयोग जो है कीटनाशक के रूप में किया जाता है। जो घटक इसके एंटी फंगल घटक खासकर जो है उनका उपयोग जो है चर्म रोग में भी किया जाता है। तो इस ऑयल इस जो ये जो तेल है नीम का तेल जो है ये औषधीय और कीटनाशक दोनों ही दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। दूसरा जो यौगिक है उसका नाम है एजाडेरिक्टिन। एजाडेरिक्टिन के भी कई श्रेणियां हैं जिसमें मूल रूप से एजाडेरिक्टिन ए जो है ज्यादा सक्रिय माना गया है। ए से लेके एस तक के इसके वेरिएंट जो है ज्ञात हैं। ए जो है एजाडेरिक्टिन ए ये जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है।
0: नीम का इस्तेमाल आयुर्वेदिक औषधियों में सदियों से होता आया है। नीम का इस्तेमाल कई तरह की बीमारियों को ठीक करने में किया जाता है।
2: नीम के औषधीय गुणों की बात करें तो स्किन के जितने भी डिसऑर्डर्स हैं यानी त्वचा की जितनी बीमारियां हैं उन सभी में लगभग नीम बहुत अच्छा काम करता है। हम एलर्जी की कंडीशंस लेते हैं, यदि हम इस तरह की बॉयल्स हो जाते हैं, फुंसियां हो जाती हैं जो गर्मियों में भी हो जाती हैं और इन्फेक्टेड फुंसियां भी होती हैं, बॉयल्स बोलते हैं जिनको, या नॉन हीलिंग अल्सर्स हैं जो कि हील नहीं हो पा रहे खासतौर से डायबिटिक पेशेंट्स को, यहां तक कि नीम जैसे कि डायबिटीज में भी बहुत उपयोगी है, शुगर को कम करने में भी कारगर है और शुगर के पेशेंट्स को अक्सर देखा गया है कि स्किन डिसऑर्डर्स बहुत होते हैं और उनको अगर कोई चोट लग जाती है, अल्सर हो जाते हैं तो वो नॉन हीलिंग वूंड्स या नॉन हीलिंग अल्सर्स कहलाते हैं, वहां पर भी नीम बहुत अच्छा काम करता है। इवन हम ऐसा भी एडवाइस करते हैं कि जो चोट आपकी ना भर रही हो उसमें नीम के पत्तों का काढ़ा बनाकर उसको वॉश करें और फिर बैंडेज या जो भी आपको चिकित्सा बताई गई है उसे करें।
3: नीम एक ऐसा वृक्ष है जिसको हम कल्प वृक्ष की संज्ञा दे सकते हैं। इस धरती के ऊपर जितनी भी तरीके की वनस्पतियों में रोग या कीड़े लगते हैं, जितने हमारे जानवरों में रोग या कीड़े लगते हैं, जितने मनुष्यों में मानव जाति में जितने रोग और कीड़े हैं, उन सबको मारने का, उन सबको नष्ट करने का, उन सबका समन करने का एक कोई उपाय है, वो नीम है।
0: नीम की ये नई प्रजाति किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। सरकार और देश की अग्रणी संस्थाएं जिस तरह से नीम की खेती और उसके अलग अलग उत्पाद को प्रोत्साहित कर रही हैं, उससे आने वाले दिनों में नीम किसानों के लिए एक अतिरिक्त आय का स्रोत बन सकेगा।
4: रेडियो टांटा भील 90.8 FM सुनने वाले सभी किसान साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों को सुना हमने, जाना किस तरीके से नीम के खास गुण होते हैं और किस तरीके से औषधि पौधे के रूप में इसको देखा जाता है और किस तरीके से इसको बाजार में बेचा जाता है और इसमें कितने सारे खास गुण रहते हैं इसके बारे में जानकारी को जाना। हमें आशा है कि हमारे किसान साथी अब समझ गए होंगे कि हम अपनी एक नई खेती को कर सकते हैं, नई चीज है, नए खेती है, इसको किस तरीके से कर अपनी आय को हम बढ़ा सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री ने भी आह्वान किया था कि इस तरीके की खेती हमारे किसान साथियों को औषधीय खेती करना चाहिए जिससे आने वाले समय में हमारे किसान साथियों की आय में बढ़ोतरी हो। इसी के साथ साथियों हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम खेती बाड़ी कार्यक्रम से जाने का। यह कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। तो आपके रेडियो साथी मनीष लेते हैं जाने की अनुमति और चलते आपको सुनवाते हैं एक और प्यारे से बीली गीत को। नमस्कार।

0: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया व्हील 90.8 एफएम।
1: आपनू रेडियो आपड़ी बातें।
0: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया व्हील 90.8 एफएम।
1: आपनू रेडियो आपड़ी बातें।
2: नमस्कार साथियों, रेडियो टांटिया व्हील 90.8 एफएम सुनने वाले सभी किसान साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और दोस्तों कैसे हैं हमारे किसान साथी, हमें आशा है कि हमारे किसान साथी अच्छे होंगे और हमारा रेडियो टांटिया व्हील 90.8 एफएम सुन रहे होंगे। हाँ, क्योंकि बड़ी अच्छी बात है, हम इस कार्यक्रम के माध्यम से लेकर आते हैं। तो हमारे किसान साथियों के लिए आज के इस खास कार्यक्रम में 30 सेगमेंटों पर हम बात करते रहते हैं। आज के हमारे कार्यक्रम खेतीबाड़ी में बात करेंगे एफपीओ, क्योंकि बहुत सारे किसान साथी एफपीओ के बारे में जानते नहीं है, यानी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी किस तरीके से गठित होती है, इसका क्या फायदा होता है और कौन कौन एजेंसियां इसको सहायता करती है और हमारे किसान साथियों को बहुत मदद करेगी एफपीओ, क्योंकि एफपीओ बनाना यानी संगठन बनाना और उससे लाभ लेना ये बेहद जरूरी है। साथ में हमारे जो भारत सरकार द्वारा इस पर बहुत सारा काम किया जा रहा है, राज्य सरकार द्वारा बहुत सारे काम किया जा रहा है, क्योंकि यदि हम फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी यानी एफपीओ बनाते हैं तो बहुत सारे फायदे हैं। तो आइए हमारे इस कार्यक्रम खेतीबाड़ी में आज हम एफपीओ पर चर्चा करेंगे और साथ साथ में पशुधन पर भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि पशुधन हमारे लिए बहुत जरूरी है और खेती किसानी में पशुधन का बहुत ज्यादा महत्व रहता है। और साथ साथ में हम एक उन्नतशील किसान जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है उनकी एक कहानी भी सुनेंगे आज के कार्यक्रम खेतीबाड़ी में। तो देर नहीं करते हैं, आपको सीधा ले चलते हैं और इस सेगमेंट में सबसे पहले जानते हैं एफपीओ यानी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी किस तरीके से काम करती है, कैसे इसका हमारे किसान साथी लाभ ले सकते हैं। तो आइए सुनते हैं इस रिपोर्ट को।
3: किसान भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में एक अभियान चलाया जा रहा है जिसका नाम रखा गया है किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी, और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है आजादी का अमृत महोत्सव का। बता दें आपको कि 6 दिवसीय इस अभियान का मकसद ये है कि हमारे किसानों को खेती किसानी और पशुपालन के क्षेत्र में जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जितने भी कार्य किए जा रहे हैं, उनके बारे में अवगत कराया जा सके, उनके प्रति जागरूक किया जा सके। और आज इसमें क्या कुछ खास होने वाला है बता दें आपको, आज बात होगी एफपीओ की, किसान उत्पादक संगठन की। क्या है ये, किस तरह से हमारे किसान इससे जुड़कर लाभ ले सकते हैं, आइए जानते हैं।
4: हमारे देश में छोटे और सीमांत किसानों की संख्या काफी है, ऐसे में जब ये किसान अकेले खेती करते हैं तो उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। साथ ही जब वो अपनी उपज को बाजार में ले जाते हैं तो उन्हें उपज का सही दाम भी नहीं मिल पाता। ऐसी समस्याओं से बचने के लिए कई किसान मिलकर किसान समूह बनाते हैं। ये समूह खेती में आ रही सभी बाधाओं को मिलकर पार करते हैं, जिससे बिना किसी रुकावट के हर किसान को उसकी फसल का वाजिब दाम मिल सके। ये संगठन किसानों का एक ऐसा समूह है जो कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होता है। ये संगठन खेती किसानी से जुड़े काम को आगे बढ़ाने में मदद करता है। एफपीओ से कई किसान जुड़े होते हैं। मौजूदा समय में एफपीओ की मदद से किसानों को अपनी उपज का मोल भाव करने का मौका मिल रहा है। किसान उत्पादक संगठन से किसानों को न सिर्फ अपनी फसल बेचने की सुविधा मिल रही है, बल्कि कृषि उपकरण, खाद, बीज, उर्वरक जैसी जरूरी और अहम चीजें अच्छी गुणवत्ता और उचित मूल्य में मिलते हैं। एफपीओ ने छोटे, सीमांत और भूमिहीन किसानों को इकट्ठा कर किसानों की आर्थिक शक्ति और उनके बाजार लिंकेज को बढ़ाने में मदद की है, जिससे उनकी आय में सुधार हो सके। एफपीओ से खासकर छोटे किसानों को काफी फायदा हो रहा है और किसानों की आय बढ़ रही है। लघु कृषक कृषि व्यापार संघ और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक देश में किसान उत्पादक संगठनों को बनाने और उनको बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं। सरकार 2021-22 में 2,500 किसान उत्पादक संगठनों किसानों की स्थापना करेगी। इससे देश के करीब 60,000 किसानों को मदद मिलेगी। ये 2,500 FPO बनाने का काम केंद्र की उस योजना का हिस्सा है, जिसके तहत सरकार ने 2023-24 तक देश भर में 10,000 नए कृषि उत्पादक संगठन स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। 5 साल के लिए हर एक किसान उत्पादक संगठन को सहायता दी जाएगी। हर एक FPO में 50% छोटे, सीमांत और भूमिहीन किसान शामिल होंगे।
0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपनू रेडियो आपड़ी बातें।
2: एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और अभी आपने इस खास रिपोर्ट को सुना। अब आपको हम FPO के बारे में सतर्क जानकारी देने के लिए हम तैयार हैं और हमारे साथ विषय विशेषज्ञ के तौर पर जुड़ रहे हमारे साथ विशेषज्ञ, उनकी हम बात को सुनेंगे कि FPO हमारे लिए कितना महत्व है, किस तरीके से गठित होता है, कौन कौन एजेंसी इसमें मदद करती है, इसके बारे में हम जानते हैं। लेकिन इससे पहले सुनते हैं इस प्यारे से गीत को। बने रहिए आपके RJ मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो 90.8 FM। आप लोग रेडियो अपनी बात है।

आज समाज में बालिकाओं के प्रति पुरुष तो ठीक, महिलाएं भी परंपराओं का हवाला देकर अपनी फूल सी कोमल बच्चियों को अपनी जिंदगी को ठीक से जीने नहीं देती। हमारे समाज में अनेक बच्चियां रूढ़िवाद एवं सामाजिक प्राचीन परंपराओं के कारण माँ के कोख में ही खत्म कर दी जाती है। यदि जन्म लेती है तो परिवार पर बोझ बन जाती है, यह रूढ़िवादी परंपरा है। बच्चियां अपनी सिसकियां अपने हृदय में संजोकर अपने पिताजी की गोद में शायद यह जरूर अभ्यंतर से कहती होगी,

0: झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: साथियों, जैसे आपको सबको सूचित है कि भारत सरकार ने कृषि किसान उत्पादक संगठन की एक महत्वपूर्ण योजना लेके आई थी। भारत सरकार का उद्देश्य है कि आने वाले विगत वर्षों में 10,000 से अधिक देश भर में कृषक उत्पादक संगठन बनाना। इस कृषक उत्पादक संगठन का प्रमुख ये फायदा है कि इसका उद्देश्य है कि किसानों को योजनाबद्ध तरीके से उनके उत्पाद को मूल्य संवर्धित करके या सीधा बाजार से उपभोक्ता तक जोड़ना। सरकार का उद्देश्य है कि किसान अपना उत्पाद है सीधा उपभोक्ता तक पहुंचाए और उनको मंडी से और उनके जो मिलने वाली जो उनको राशि है वो मंडी की तुलना में उपभोक्ता से अच्छी राशि मिले और बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रहे और मंडी से किसानों को जो लागत लगने वाली है फालतू की वो लागत से वो बचे। इसमें किसान उत्पादक संगठन वर्तमान में बनाने में 3-4 संस्थाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, जिसमें एक नाबार्ड बैंक है, नेफेड है, SFC है और NCDC है। इन सब ऑर्गेनाइजेशन संस्थानों ने क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बनाए हैं। ये विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। ये वहाँ पे ये संगठन इन महत्वपूर्ण संस्थानों के सहयोग से किसान उत्पादक संगठन के निर्माण और उसमें उनके रजिस्ट्रेशन पंजीकरण की प्रक्रिया और उनके बिजनेस के व्यवसाय को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। यदि किसी किसान साथी अपने क्षेत्र में कृषक उत्पादक संगठन का निर्माण करना चाह रहा है तो इन संस्थानों से संपर्क करके वो एक क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से मिल सकते हैं।
2: देश भर की सहकारी समितियां FPO के गठन में सहयोग करेंगी, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में खेती में निवेश को बढ़ाया जा सके। इतना ही नहीं, छोटे और सीमांत किसानों के पास मूल्य संवर्धन सहित उत्पादन तकनीक, सेवाओं और मार्केटिंग को अपनाने के लिए आर्थिक क्षमता नहीं होती है। ऐसे ही किसान हैं जो FPO से जुड़कर कामयाबी की दहलीज को छू रहे हैं।
3: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।

0: घंटे अभी 90.8
1: 40% या 4 लाख रुपए जो भी कम हो वित्तीय सहायता का प्रावधान है। किसान भाई बहन अब नई टेक्नोलॉजी का लाभ उठाकर उन्नत खेती कर सकते हैं। सभी कृषि योजनाओं और सेवाओं को डिजिटल रूप से प्रयोग करने के लिए किसान सुविधा ऐप तैयार किया गया है तथा ये सुविधा ऐप देश की विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपनू रेडियो आपड़ी बातें।
3: किसान भाइयों और बहनों, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार आपकी समृद्धि के रास्ते में आने वाली हर बाधा को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपनू रेडियो आपड़ी बातें।
0: रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी किसान साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और अभी आपने FPO के बारे में सब जानकारी सुनी। हमारे विषय विशेषज्ञ ने भी बताया कि किस तरीके से बहुत जरूरी रहता है FPO संगठन बनाना, और साथ साथ में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी इस बात पर जोर दिया है, और खासतौर पर हमारे जो कृषि मंत्री हैंगे उन्हें भी खासतौर पर इस पर जोर दिया है। और ये आपको बता देना चाहते हैं कि ये एक अभियान चलाया जा रहा है कि किसानों को किस तरीके से सरकारी योजना का लाभ दिया जाए, कैसे लाभ दिया जाए, कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है, उस पर भी विशेष तौर पर चर्चा की है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब वक्त हो चुका है हमारे अगले सेगमेंट जिसका नाम है पशुपालन पर चर्चा, विशेष चर्चा। तो आइए इनको बात को सुनते हैं, लेकिन इससे पहले सुनते हैं इस प्यारे से गीत को। बने रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। अपना रेडियो अपनी बात है।
4: Gaan we gaan

0: की जय जोहार जय जोहार जय जोहार।
1: हमारे देश में पशुपालन का विशेष स्थान रहा है। इससे जहां कृषि के बहुत सारे काम संपन्न होते हैं, वहीं ये आय का अतिरिक्त जरिया भी होते हैं। लेकिन कुछ सालों से पशुपालन का मुख्य उद्देश्य उत्पादकता हो गया है। पिछले कुछ सालों से हमारे देश में दूध की मांग और उत्पादकता दोनों में इजाफा हो रहा है। एक अनुमान के हिसाब से करीब 16% की वृद्धि के साथ हम आगे बने हुए हैं, जिसकी खास वजह सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाएं हैं। सरकार की इन योजनाओं में पशुपालन, उनका स्वास्थ्य, टीकाकरण, पोषण युक्त आहार, आवास और नस्ल सुधार जैसे विषय शामिल हैं, जिनमें मुख्य है राष्ट्रीय पशुधन मिशन, पशुपालन अवसंरचना विकास निधि, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, पशुधन किसानों के लिए KCC, राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण
2: होता है।
3: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपू रेडियो आपड़ी बातें।
4: हमारे किसान भाइयों को इसकी जानकारी हो, नस्ल को संवर्धित करने के लिए आप जानते हैं कि नस्ल को तैयार करने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं। एक नस्ल जब तैयार होती है तो इसीलिए काफी इम्पोर्टेंट है हम नस्ल के दूध को लगातार बढ़ाते रहे। तो नस्ल का दूध बढ़ाने के लिए अच्छे सांडों से उनका मिलान करवाना और अच्छे सांडों का चयन करना। हम बात करते हैं सांडों के चयन के लिए, जैसे हमारा प्रोजेनी टेस्टिंग प्रोग्राम है कि हम क्योंकि जो हमारा सांड होता है वो तो दूध नहीं देता, दूध उसके बच्चे देते हैं, तो उसके जो फीमेल काफ किस तरह का परफॉर्म करते हैं उसके बेसिस पे हम असेसमेंट करते हैं कि ये बुल कैसा है, इसकी अनुवांशिक क्षमता क्या है, इसकी दूध देने की क्षमता क्या है, क्योंकि बुल जो है बहुत अहम रोल प्ले करता है हमारे नस्लों के संवर्धन में। तो नस्लों का संवर्धन करने के लिए बुल का चयन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप कृत्रिम गर्भाधान का इसलिए प्रयोग करें, कृत्रिम गर्भाधान से नस्ल को आप संवर्धित कर सकते हैं, उसके उत्पादकता बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जो हमारे बुल सीमेन स्टेशन पे उपलब्ध होते हैं वो अच्छी उत्पादकता वाले होते हैं। उनके उनका जो है प्रोजेनी टेस्टेड बुल्स होते हैं, पेडिग्री सिलेक्टेड बुल्स होते हैं, तो उन बुलों का ही सीमन हम यूज करके अपने जो है नस्ल को संवर्धित कर सकते हैं, अपने नस्ल को विकसित कर सकते हैं। अच्छी नस्ल के पशु हमारे पास हो इसके लिए किसानों को हमेशा जागरूक रहना चाहिए। अच्छी नस्ल का मतलब मेरा कहना है कि अच्छी नस्लें हमारे देश की कई सारी है, जैसे कि आपने देखा होगा साहिवाल पंजाब से है, गिर हमारे गुजरात से है, राठी हमारी राजस्थान से है, साथ ही साथ थारपारकर एक नस्ल है वो भी राजस्थान से है, रेड सिंधी भी नस्ल हमारे देश में है, उसके भी बहुत सारे पशु हैं हमारे देश में, वो रेड सिंधी के भी पशु हैं। तो अच्छी नस्लों का सीमन भी आप जो आपकी कम दूध उत्पादन करने वाली गाय है उनमें उपयोग कर सकते।
1: सरकार के प्रयासों से एक बार फिर देश में देसी नस्लों के पशुओं का चलन बढ़ा है। विशेषज्ञ बताते हैं कि विदेशी नस्लों की तुलना में देसी नस्लों के पशुओं की प्रतिरोधक क्षमता बढ़िया होती है। वहीं उत्पादन क्षमता में इजाफा करने के लिए नस्ल सुधार जैसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। आजकल तो कृत्रिम गर्भाधान के लिए IVF तकनीकों का भी सहारा लिया जा रहा है।
4: कुछ नए नए तकनीक आ गई है आजकल, जैसे हम बात करते हैं IVF तकनीक जो मनुष्य में उपयोग की जाती थी, IVF तकनीक के द्वारा भी आप अपना नस्ल का सुधार कर सकते हैं और एक ही जनरेशन में यानी कि एक ब्यांत में ही आप एक पुश्त में ही आप अपनी नस्ल को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं अगर आप IVF तकनीक का उपयोग करेंगे। नहीं तो अगर आप कृत्रिम गर्भाधान कर रहे हैं तो आपकी नस्ल को बढ़ाने में मतलब 7 पुश्तें लग जाती हैं, तो 7 पुश्तों में जो आप चीज ठीक कर रहे हैं वो एक पुश्त में IVF तकनीक से ठीक कर सकते हैं। हमारे किसान भाई और भी फायदा ले सकते हैं क्योंकि अब सेक्स सॉर्टेड सीमन अवेलेबल हो गया है हमारे देश में। पहले ये तकनीक केवल अमेरिका देश में ही उपलब्ध थी, अब हमारे देश में हमारी देसी नस्लों के लिए सेक्स सॉर्टेड सीमन उपलब्ध है। तो सेक्स सॉर्टेड सीमन का उपयोग करके केवल बछिया ही पैदा की जा सकती है, तो इससे आपके जो मेल पशु है, क्योंकि अब मेल की उपयोगिता खत्म होती जा रही है, एग्रीकल्चर में मैकेनाइजेशन बढ़ रहा है, ट्रैक्टर का उपयोग करते हैं ना आप, तो अब जब आप ट्रैक्टर का उपयोग करेंगे तो आपको बैलों की तो जरूरत नहीं है खेतों में, तो बैलों की जरूरत नहीं है, इसके लिए आप सेक्स सॉर्टेड सीमेन का उपयोग कर सकते हैं। तो मैं किसान भाइयों से आग्रह भी करूंगा कि वे सेक्स सॉर्टेड सीमेन की तरफ जाए, और जिससे कि उन्हें बच्चियों का लाभ मिले, बच्चियां पैदा हो, इससे 90% सटीकता के साथ बच्चियां पैदा आप कर सकते हैं, और बहुत अच्छा सेक्स सॉर्टेड सीमेन हमारे देश में उपलब्ध है। उत्तराखंड लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड से आप संपर्क कर सकते हैं इसके लिए, मध्य प्रदेश लाइफ स्टॉक पोल्ट्री डेवलपमेंट कारपोरेशन से संपर्क कर सकते हैं इसके लिए, आप गुजरात लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड से संपर्क कर सकते हैं इसके लिए, सांगली महाराष्ट्र में ABS कंपनी भी सेक्स सॉर्टेड सीमेन का उत्पादन कर रही है, वहां भी संपर्क किया जा सकता है, मेहसाना डेयरी से संपर्क किया जा सकता है। तो हमारे किसान भाई संपर्क करके सेक्स सॉर्टेड सीमेन का उपयोग ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो उनकी आय में वृद्धि होगी और काफी अच्छा नस्लों का संवर्धन भी होगा।
1: इस तरह देखा जाए तो सरकार का हर प्रयास हमें सफलता की राह पर ले जा रहा है, बस जरूरत है तो समय रहते सरकार की योजनाओं का लाभ लेने की। इन योजनाओं के लाभ से आने वाले समय में दूध उत्पादन में हम और अच्छे परिणाम हासिल कर सकेंगे, साथ ही पशुपालकों की आय में भी इजाफा हो सकेगा।
2: कार्यक्रम में वक्त है पशुपालक कैलेंडर पर नजर डालने का, यानी कि जानने का कि वर्तमान समय में आप कौन कौन से पशुपालन से संबंधित कार्य कर सकते हैं जिससे आपके पशुओं का स्वास्थ्य बेहतर बना रहे। तो फिर आइए नजर डालते हैं पशुपालक कैलेंडर पर।
5: पशुओं को HS एवं BQ रोग से बचाव का टीका अवश्य लगवाएं। इस माह में अधिक गर्मी की संभावना रहती है। पशुओं में जल व लवण की कमी, भूख कम होना एवं कम उत्पादन के लक्षण आ सकते हैं। ऐसे में पशु को तापमान से बचाने का इंतजाम करें। पशुओं को दोपहर में छाया एवं हवादार स्थान पर रखें। पशुओं को दिन में कम से कम 4 बार पानी पिलाएं। गाभिन पशुओं को अतिरिक्त आहार दें एवं ब्याने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए 50 से 60 ग्राम खनिज मिश्रण नियमित रूप से दें। भेड़ के मेमनों में भेड़ चेचक एवं एंट्रोटॉक्सिमिया का टीका पशु चिकित्सक की सलाह से जरूर लगवाएं। गोपालक फार्म की सफाई पर विशेष ध्यान दें। आवास को सूखा एवं स्वच्छ रखें। मुर्गियों में कृमिनाशक दवा का इस्तेमाल पशु चिकित्सक की सलाह से अवश्य करें। साथ ही पानी की समुचित व्यवस्था रखें। पशुओं को बाह्य परजीवी से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से दवा का छिड़काव नियमित रूप से करें। पशुओं को अंतर परजीवी नाशक दवा पशु चिकित्सक की सलाह से नियमित रूप से दें। पशुओं को संक्रामक रोग जैसे गलघोंटू, ब्लैक वाटर के रोग रोधी टीके समय पर लगवाएं। इस मौसम में पशुओं में फास्फोरस की कमी के कारण पायका के लक्षण नजर आने लगते हैं, जिससे पशु मूत्र पीने, मिट्टी चाटने लगते हैं। बचाव के लिए पशुओं को खनिज लवण मिश्रण अवश्य दें। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज और विटामिन सभी संतुलित मात्रा में प्राप्त करने के लिए पशुपालक एजोला घास का उपयोग करें।
3: रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी किसान साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और अभी अपने किसान साथियों ने जाना कि पशुपालन कैलेंडर इस माह का क्या कहता है, किस तरीके से हमें अपने पशुपालन करना चाहिए, किस तरीके से अपने पशुओं का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी बीमारी इसमें होती है, इस पर भी हमें खास तौर पर ध्यान रखना होगा। अब साथियों अगला हमारा सेगमेंट है हमारे जो उन्नतशील किसान है, किस तरीके से उन्होंने अपने जीवन में बदलाव किया है उनकी कहानी को हम जानते हैं।
2: किसान भाइयों बहनों, देश में मनाया जा रहा है आजादी का अमृत महोत्सव, जिसके तहत चलाया जा रहा है एक अभियान जिसका नाम रखा गया है किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी। अब आप सोच रहे होंगे कि हम बार बार इसका जिक्र क्यों कर रहे हैं, वो इसलिए ताकि आप भी इससे जुड़े और इससे ज्यादा से ज्यादा लाभ लें। बता दें आपको कि इस 6 दिवसीय अभियान के पहले दिन बात हुई थी ODOP की, यानी कि एक जिला एक उत्पाद की, और इसके बारे में हमारे किसानों को जागरूक किया गया था, लेकिन कई किसान इससे पहले से ही जुड़े हुए हैं और लाभान्वित भी हुए हैं। आइए ऐसे ही किसानों से मुलाकात करते हैं, जानते हैं उनकी कामयाबी की दास्तान।
1: उत्तर प्रदेश में देश का करीब 40% गन्ना पैदा किया जाता है, इसीलिए गन्ना यहाँ की मुख्य फसल है। पिछले 50 सालों से मुजफ्फरनगर के ज्यादातर किसान गन्ने से गुड़ बनाने का काम करते आ रहे हैं। यहाँ पर बनने वाला गुड़ गुजरात, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों में भी भेजा जाता है, इसीलिए मुजफ्फरनगर को गुड़ का बड़ा बाजार माना जाता रहा है। वैश्विक स्तर पर अपनी छाप छोड़ने वाला ये गुड़ अब हौसलों की उड़ान भर रहा है। इस काम में नई रफ्तार देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की एक जनपद एक उत्पाद कार्यक्रम काफी कारगर साबित हो रहा है। केंद्र सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार उन विशिष्ट शिल्प कलाओं व उत्पादों को प्रोत्साहित करने का काम कर रही है जो देश में कहीं और उपलब्ध नहीं है, जैसे प्राचीन व पौष्टिक काला नमक चावल, गेहूं, डंठल शिल्प, चिकनकारी, कपड़ों पर जरी जरदोजी का काम, मृत पशु के सींगों व हड्डियों से बनाई कलाकृतियों और लघु उद्यम शामिल है। इस योजना से उत्तर प्रदेश के किसानों और कारीगरों को भी अलग ही पहचान मिल रही है। हुनर

0: गन्ने का बना रहे हैं। शुगर इसमें देखिए डायबिटिक नहीं होता गुड, ऊपर से डॉक्टर भी ये सलाह देते हैं कि गुड़ का ही यूज कीजिए, आप चीनी को थोड़ा अवॉइड कीजिए। इसी वजह से हमने ये किया है कि बच्चे थोड़ा इसको यूज करें, चीनी से बने हुए प्रोडक्ट ना खाएं, चॉकलेट वगैरह ना खाएं। इसीलिए चॉकलेट के फ्लेवर में भी ले आए हम, बटर स्कॉच में भी लेकर आए हैं, मैंगो में भी लेकर आए हैं, कच्चे आम में भी लेकर आए हैं, हर तरह का फ्लेवर है हमारे पास। किसान है, खुद का कोल्लू है हमारा, खुद बनाते हैं, खुद यहाँ पे बेच रहे हैं।
1: उनके बनाए अलग अलग स्वाद के ये गुड़ काफी लोकप्रिय हो रहे हैं। हर उम्र के हिसाब से गुड़ की वैरायटी होने के कारण इनकी मांग काफी बढ़ रही है। युवा किसान की माने तो अब वो अपना उत्पाद ऑनलाइन भी बेचेंगे, जिससे व्यवसाय का दायरा बढ़ाया जा सके और लोगों तक उनका उत्पाद आसानी से पहुंचाया जा सके।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपनो रेडियो, आपड़ी बातें।
3: रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी किसान साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और हमारे किसान साथियों ने सारे सेगमेंटों को सुना। सबसे पहले जाना कि FPU यानी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी किस तरीके से गठित होती है, इसका क्या फायदा है, कौन कौन सी एजेंसियां इसमें काम करती है, इस पर इसको जाना। साथ साथ में पशुपालन कैलेंडर का क्या कहता है, किस तरीके से अपने पशुओं की हमें सुरक्षा करनी चाहिए, किस तरीके से पशुओं की देख रेख करनी चाहिए और क्या फायदा होता है पशुपालन से, इस पर भी हमने जिक्र किया। और साथ साथ में क्या कौन कौन सी बीमारी इस माह में फैलती हैं, किस तरीके से सावधानी बरतनी चाहिए, उस पर भी हमने नजर डाली। साथ साथ में हमने एक उन्नतशील किसान जिन्होंने गन्ने का व्यापार करके आज एक आसमान और बुलंदियां सुनी छुई हैं, उनको भी हमने सुना। साथियों हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम खेती बाड़ी कार्यक्रम से जाने का। तो साथियों कैसा लगा कार्यक्रम हमें जरूर बता सकते हैं हमारे इस नंबर पर। नंबर है हमारा 94251-3603। इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं हमें, अपनी जानकारी या फिर आपको कुछ पूछना है इस नंबर पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं। साथियों हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम से जाने का। आपके हमारे अगले कार्यक्रम में फिर होगी मुलाकात। तो चलते चलते आपको सुनवाते हैं एक और ऐसे गीत को। बने रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपका रेडियो, अपनी बातें। नमस्कार।

0: शराब मारे ही थोड़ा।
1: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।

0: गीत संगीत की इस महकती हुई शाम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका दोस्त समीर, और चलिए मिलते हैं एक और उभरते हुए कलाकार से, एक नए टैलेंट से। कौन है ये, क्या है ये, इनके बारे में जानते हैं और इनके गीतों का मजा लेते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हमारे आपके ही आज के कलाकार प्रोग्राम को। आज का प्रोग्राम बहुत स्पेशल है दोस्तों, एक नया टैलेंट, एक नई गायिका आज हमारे साथ हैं। ये हैं डॉक्टर रोहिणी काले। बाकी डॉक्टर साहब अपने बारे में खुद बताएंगी, वो कौन है, क्या है, कहाँ है। डॉक्टर रोहिणी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। वेलकम टू आवर प्रोग्राम।
1: यस, गुड इवनिंग, थैंक यू सो मच सर। हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर रोहिणी काले फ्रॉम पुणे। बाय प्रोफेशन आई एम अ डॉक्टर एंड जनरल प्रैक्टिशनर, बट जनरल प्रैक्टिस में मैं बहुत, मेरा मन नहीं लगा, तो मैं मेरा इंटरेस्ट ज्यादा गायनेक और इनफर्टिलिटी में था। मैंने सोचा ऐसा मैं कुछ करूं कि लोगों को मैं जिंदगी भर याद रहूं। तो आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग इन गायनेक इनफर्टिलिटी। सो मैंने 2000 से ज्यादा डिलीवरीज की है और मोर देन 5000 कपल्स कंसीव्ड विथ माई ट्रीटमेंट। सो आई एम हैप्पी इन माई प्रोफेशन। और मैं पुणे में रहती हूँ कैंप में, तो वहाँ पे बहुत अच्छी जगह है, वो बहुत प्लीजेंट प्लेस है। सो शॉपिंग और अलग अलग होटल्स यहाँ पे है, और यंगस्टर्स के लिए भी घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है। सो पुणे इज अ हिस्टोरिकल प्लेस, तो यहाँ पे मैं सिंस 20 ईयर्स आई एम हियर इन पुणे। थैंक यू सर।
0: अमेजिंग, बहुत खूबसूरत। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रोहिणी। तो दोस्तों, आपने सुना डॉक्टर रोहिणी क्या करती हैं और कहाँ रहती हैं, तो चलिए शुरू करते हैं इस प्यारे से प्रोग्राम को रोहिणी जी के ही गाए हुए इस प्यारे से गीत से।

0: बहुत खूब, बहुत ही प्यारा गीत। रोहिणी मैम मुझे ये बताएं, आपको गाने का शौक कब से हुआ, कब से गा रही हैं आप?
1: समीर सर जी, गाने का शौक तो मुझे बचपन से ही है। मेरी मम्मी जो थी उसको सिंगिंग में बहुत इंटरेस्ट था, हालांकि वो प्रोफेशनल सिंगर नहीं है। किचन में एक हमारे रेडियो रहता था और वहां पे सुबह से लेके शाम तक गाने चलते रहते थे, न्यूज चलते रहते थे। तो मेरी सुबह वो गाने से ही, प्रार्थना या कोई देशभक्ति पर गाने, इससे होते होते फिल्मी गाने हम सुनते थे। तो ऐसे ही मेरा बचपन था। और मेरी मम्मी कुछ गाना चल रहा है तो वहां पे जो आशा जी या कोई भी सिंगर है, लता जी, कोई मुरकी लेते थे, अच्छी तान लेते थे, तो वाह वाह कितना अच्छा गाया। तो ये सब बहुत उसको अच्छा लगता था। ये सब देखते देखते मैं भी बड़ी हो गई और मुझे भी गाने में एक रुचि पैदा हो गई। इस तरह से गाने का शौक बचपन से ही है मुझे सर।
0: बहुत बढ़िया, बहुत प्यारी बात है आपने बताया, और बहुत टेक्निकल टर्म्स यूज किए कि किस तरीके से जब आपके यहाँ पर गुनगुनाया जाता था तो उसकी तान, उसका सुर।
1: मैं बताना चाहूंगी सर, जब मैं लाइक स्कूल गर्ल थी या टीनेज में ही मेरी मुलाकात एक प्रोग्राम के जरिए ओपी नैयर जी साहब से, रिदम किंग ओपी नैयर साहब से हो गई।
0: ओह
1: और
0: माय
1: उन्होंने
0: गॉड,
1: मेरा गाना सुना और गाना सुनने के बाद उनका स्पीच था, उनको वेलकम सॉन्ग था मेरा, गाना सुनने के बाद उनका एक स्पीच था। उसी स्पीच के पहले ही उन्होंने बोला कि ये जो बच्ची अभी गा रही थी प्लीज उसको ऊपर बुलाइए।
0: ओह
1: और
0: माय
1: उसके
0: गॉड,
1: बाद उन्होंने मुझे इतना अप्रिशिएट किया और उन्होंने कहा कि बच्चा तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है, सिर्फ उसको एक रियाज की जरूरत है और आप रियाज करोगे अच्छा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और मेरी मम्मी से भी मांगा उन्होंने कि इसे इसे मुझे दे दो, मैं इसे कैसे क्या बना बना दूंगा। लेकिन मैं डॉक्टर बनना चाह रही थी, मेरे घर वाले, तो मम्मी ने बोला कि नहीं ये तो पहले डॉक्टर बनेगी बाद में सिंगर बनेगी। तो इस
0: ओके।
1: तरह से
0: नहीं कोई बात नहीं मैम, आप एक अच्छे डॉक्टर भी हो और एक अच्छे सिंगर भी हो, उसमें बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए लियोनार्डो दो विंची के बारे में आपने सुना होगा, वो कितनी सारी कलाओं के जानकार थे। ही वॉज एन आर्किटेक्ट, वो सिंगर थे, म्यूजिशियन, मतलब वो इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते थे। ही वॉज अ मैथमेटिशियन, इसके बाद वो पोएम्स लिखते थे, वो स्कल्पचर्स बनाते थे, पेंटिंग्स करते थे। सो बहुत सारी चीजें वो करते हैं। तो एक इंसान के अंदर बहुत प्रतिभाएं हो सकती हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत बढ़िया। तो चलिए दोस्तों सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत रोहिणी जी का ही गाया हुआ।

0: बहुत खूब। तो डॉक्टर होने के साथ साथ क्योंकि आप एक गायिका भी हैं, तो मुझे ये बताइए कि ऐसा कौन सा गीत है जो आपकी पर्सनालिटी को पूरी तरह से डिस्क्राइब करता है, सूट करता है, आपकी शख्सियत को बयान करता है, कौन सा गीत है वो?
1: हर एक इंसान की पर्सनालिटी अलग अलग रहती है, दो पर्सनालिटी रहती है, एक तो सेंसिटिव और एक प्रैक्टिकल। तो मैं जब सेंसिटिव हो जाती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि ये मुझे ये गाना सूट ज्यादा हो जाएगा, जे ये जिंदगी गले लगा ले, ऐ जिंदगी गले लगा ले, ये गाना मेरे पर्सनालिटी को सूट होता है।
0: ओके।
1: उसी के साथ जो गाना है, दिल है छोटा सा छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की

0: ये गाना मेरी पर्सनैलिटी को ज्यादा सूट होता है।
1: बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। आप कुछ कह रही थी?
0: बाय नेचर मैं एम्बिशियस भी हूँ और एट द सेम टाइम मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, और मैं जब दूसरों को बहुत हेल्प करने में विश्वास रखती हूँ, मैं एक अच्छे ह्यूमन बीइंग होने की कोशिश करती हूँ, तो ऐसे कुछ गाने सेंसिटिव रहेंगे तो मुझे लगता है ये मेरे पर्सनालिटी को सूट करता है। जैसे कि ये भी है गाना, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर धुवे में उड़ाता चला गया, तो ये गाना भी मेरे लिए सूट होता है सर।
1: बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छा कहा आपने मैम।
0: थैंक यू सो मच सर।
1: तो चलिए दोस्तों, एक गीत सुनते हैं रोहिणी जी की ही आवाज में।

0: बहुत खूब। रोहिणी जी आगे बढ़ते हैं, आप
1: यस सर बिल्कुल
0: कुछ कलेक्ट करती हैं क्या, जैसे कुछ भी घड़ियां या कुछ और चीजें? जैसे मुझे जूते इकट्ठे करने का बड़ा शौक है, तो आज ऐसा कुछ कलेक्शन है आपके पास?
1: हाँ सर जी, मुझे डायरिया जो रहती है वो कलेक्ट करने का बहुत शौक है।
0: वेरी नाइस।
1: इससे पहले बहुत ज्यादा था डायरी लिखना और अलग अलग डायरी खरीदना, उसमें कुछ ना कुछ शेरो शायरी लाइफ के बारे में लिखना। और मैं ऐसे ये करती हूँ कि डायरी एक ऐसा जरिया है जो हम खुद को एक्सप्रेस करते हैं उसमें। सो कभी डेली रूटीन लिखना उसमें, या मेडिकल रिलेटेड कुछ है तो वो लिखना, सॉन्ग्स लिखना। ऐसे मेरे पास बहुत सी अलग अलग तरह की डायरिया हैं, तो ये मुझे बहुत शौक है। फिर ड्रेस, अलग अलग जैकेट्स, जैसे कोई अच्छा फंक्शन है तो उसी तरीके का ड्रेस पहनना, या कभी फॉर एग्जांपल 15 अगस्त है तो उसको मैच होने वाला उस तरीके का ड्रेस। तो अलग अलग ड्रेस की कलेक्शन मेरे पास है, तो वो मुझे बहुत शौक है।
0: वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी नाइस,
1: थैंक यू सर।
0: बहुत खूबसूरत। तो दोस्तों आपने सुना कि रोहिणी जी को डायरियां इकट्ठी करने का शौक है, जो कि बहुत ही क्यूट एक कलेक्शन हैबिट है, बहुत प्यारा।
1: यस सर।
0: तो चलिए एक प्यारा सा गीत भी सुनते हैं रोहिणी जी की ही आवाज में।

0: रोहिणी जी, आगे बढ़ते हुए आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके सबसे अच्छे दोस्त के बारे में हमें बताइए, कौन है वो और वो आपके सबसे अच्छे दोस्त क्यों हैं?
1: बीइंग ए मेडिकल प्रोफेशन और स्कूल से भी मुझे बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे सिंगर्स ग्रुप के अलग, मेडिकल प्रोफेशन, स्कूल, कॉलेज, और उसमें सबका नाम तो नहीं ले सकती, लेकिन मेरी बहुत से नजदीकी दोस्त है, मैथिली, मोनिका, और ये सब सुन रहे हैं अभी प्रोग्राम,
0: जी
1: सुचेता, आरती, डॉक्टर मीना जो यहाँ गा चुके हैं, वो भी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, संदीप, अनिरुद्ध, और इसके साथ डॉक्टर अभिनंदन और उसकी वाइफ जो डॉक्टर सुजाता है, वो भी बहुत अच्छे दोस्त है, प्रतिभा, सीमा, स्नेहिल, ये भी अच्छे दोस्त है। ये अच्छे दोस्त मुझे लगता है इसलिए है क्योंकि ये सपोर्टिव है। आजकल के बिजी वर्ल्ड में वो सामने आके कुछ हेल्प नहीं करेंगे, लेकिन एटलीस्ट कभी हम फोन करेंगे, कुछ एडवाइस उनको पूछेंगे तो बहुत अच्छे एडवाइस भी देंगे, बहुत सपोर्टिव है। कभी हम एक दूसरे के घर जाएंगे तो इतना कुछ वो अपने लिए करते हैं, इतने लवेबल है, और एक दूसरे फ्रेंड्स को एक दूसरे के साथ जोड़ने की वो हर बार कोशिश करते हैं, तो वो बहुत अच्छा है कि आजकल आजकल के बिजी लाइफ में हम एक दूसरे को फोन पे भी बात नहीं कर सकते, एक दूसरे के साथ वक्त नहीं बिता सकते, लेकिन कब वक्त आएगा तो ये सब लोग ऐसे हैं कि सबको बोलेंगे कि हम चलो गेट टुगेदर करते हैं, एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे से बातें शेयर करते हैं, अब तक हमने क्या, इन 4 सालों में क्या किया, 5 सालों में क्या किया, तो इस तरह से वो बहुत अच्छे क्वालिटीज है और वो मुझे जज नहीं करते किसी तरह से, तो वो सबसे अच्छी क्वालिटीज इन सभी में है।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप खुश, आप खुशकिस्मत हैं, आप लकी हैं कि आपके इतने सारे दोस्त हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, आपके साथ हैं, और ये दोस्त वो दोस्त नहीं हैं जो फोन भी नहीं उठाते या फोन पे बात करके खत्म कर देते हैं, ये वो दोस्त हैं जो आपसे मिलते हैं।
1: यस
0: ऑफ कोर्स,
1: यस मिलते हैं, मिलने की कोशिश करते हैं, ऐसे दोस्त हैं मेरे, बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे।
0: अमेजिंग, बहुत खूब।
1: यस
0: तो चलिए अगला गीत आपके इन सभी दोस्तों को डेडिकेट करते हैं और सुनते हैं।

0: बहुत खूब, बहुत प्यारी बात। तो रोहिणी जी, आपका सबसे पसंदीदा गायक या गायिका कौन है और क्यों?
1: सर, मेरी पसंदीदा गायिका डेफिनेटली आशा जी है। आई लव द वे हाउ शी सिंग्स, और उनकी जो हर गाने में जो हरकतें रहती है, मुर्कियां, हर सॉन्ग में एक एक वो अलग अलग तरीके से, अलग अलग अंदाज से गाती है। उनका हर एक स्टाइल में मैं बहुत पसंद करती हूँ। और हालांकि मैं लता जी को भी पसंद करती हूँ, बट आशा जी मेरी फेवरेट है। और शी इज अ वर्सेटाइल सिंगर, वो क्लासिकल सॉन्ग्स भी उतने ही अच्छे से गाती है, फिर सैड सॉन्ग्स, गजल्स, कैबरे सॉन्ग्स, डिस्को सॉन्ग्स, सेंशुअल सॉन्ग्स, वो बहुत अच्छे तरीके से गाती है। और अनेक बहुत से लैंग्वेज में उन्होंने गाने गाए हैं। और मुझे लगता है सर कि इनकी लाइफ बहुत ट्रेजेडी पूर्ण, मतलब कि बहुत उनके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आए हैं, लेकिन वो ट्रेजेडी किधर भी उनके गाने में असर नहीं करती है, इफेक्ट नहीं करती है। और हर गाना उनका एक यूनिक रहता है। तो आई लव आशा जी सो मच, और करती हूँ और करती रहूंगी उनके गाने मुझे दिल से।
0: बहुत खूब। तो चलिए दोस्तों, सुने एक और प्यारा सा गीत रोहिणी जी की ही आवाज में।

0: बहुत बढ़िया रोहिणी जी, ए फन क्वेश्चन, बस यू ही मजे मजे में, आपकी जिंदगी में सबसे पहली बार कुछ खाने की चीज आपने क्या बनाई थी और वो कैसी बनी थी?
1: खाने की चीज मैंने जिंदगी में पहली बार, मैं जब हम हॉस्टल लाइफ हमारी थी तब हम एक्चुअली हॉस्टल में पहले रह चुके थे, उसके बाद में हम सेपरेट, हम कई फ्रेंड्स सेपरेट एक रूम लिया था 1 BHK फ्लैट, वहां रह रहे थे। तो हर एक का टर्न आता था, जैसे चाय बनानी है तो मेरा भी टर्न आता था। तो चाय बनाना मेरे लिए इतना मुझे मुश्किल लगता था, तो मैंने पहली बार जो चाय बनाई थी किचन ओटे पे बैठ के, कट्टे पे बैठ के, और तभी मैंने वो हर एक चीज, कितनी शक्कर डालनी है, कितनी चाय पत्ती डालनी है, ऐसे मेरे फ्रेंड्स को पूछ पूछ के मैंने वो बनाया था। और मेरी सब फ्रेंड्स लोगों ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया था कि एक चाय बनाई लेकिन जैसे तुम्हारे लिए ये रॉकेट साइंस है। सो इस तरह से मैंने चाय बनाई थी और पूरी आधे से ज्यादा वो जल गई थी चाय। तो इस तरह से मैंने पहला मेरा ये बनाया था, चाय बनाई थी। उसके बाद मैंने दाल भी बनाई थी, तो वो भी दाल का तड़का जो है मैं दूर से ऐसे तड़का लगाती थी और भाग जाती थी और पूरी दाल तब तक जल जाती थी। इस तरह से मैंने ये दो चीजें पहली बार जिंदगी में बनाई थी, दाल और ये चाय।
0: वेरी नाइस।
1: जो मेरे फ्रेंड्स अब तक याद रखती है कि चाय कैसे बनाने की रोहिणी, अब अभी भी तू ओटे पे या कट्टे के, किचन कट्टे पे बैठ के सब बनाती है क्या, वो अभी भी मुझे पूछते हैं फोन करके। इस तरह से
0: आपकी बात सुन के मुझे वो जोक याद आ रहा है जो कुछ शायद साल डेढ़ साल पहले सोशल मीडिया पे चल रहा था कि एक बार एक बंदा था, उसकी वाइफ चली गई मायके, तो उसने अपने फ्रेंड को फोन किया कि अरे यार मेरे को चाय बनानी है तो कुकर में कितनी सीटियां दे दूं। तो वो उसके दोस्त ने कहा पागल हो गया क्या, कुकर में बनती है क्या चाय, गधे के बच्चे, कढ़ाई चढ़ाओ।
1: कढ़ाई चढ़ाओ, ओके वाओ, उससे भी ज्यादा ग्रेट।
0: हाँ तो आप भी पता नहीं कौन सा बर्तन इस्तेमाल किया था मैम आपने।
1: मैंने बर्तन तो सही लिया था लेकिन okay. हर एक स्टेप में इतनी पूछी जा रही थी कि मेरे
0: जल गई बेचारी,
1: मैं तो बाबा उतर ही जातू, तू अभी चाय मत बना, अभी वो जल ही जाने वाली है। तो इतनी चीजें, इतना ऐसा नहीं रहता है, इतने तू छोटी छोटी बातें पूछ रही है,
0: बहुत खूब।
1: तो इस तरह से मैंने चाय, जब कभी भी मेरा टर्न आता था मैं किचन ओटे पे बैठ के अगेन एंड अगेन आई यूज टू आस्क देम कि कैसे बनाना है, आगे कैसे करना है। अब तक उनको याद है।
0: सो द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल बट द पेशेंट डाइड। ओके
1: कुछ
0: तो चलिए दोस्तों सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत रोहिणी जी की ही आवाज में।

0: बहुत खूब। आपको और बेहतर समझने के लिए रोहिणी जी, मैं पूछना चाहूंगा कि आपकी हॉबीज क्या हैं, थोड़ा सा उनके बारे में बताइए।
1: जाहिर है गाने गाना यही मेरी ज्यादा हॉबी है, गाने सुनना। बट इसके साथ एक अलग हॉबी मुझे ज्यादा थी, अभी थोड़ा कम हो गई, लेकिन नए नए रास्ते ढूंढना, गलियों से ये गली से रास्ता उस गली से जाएगा, वो रास्ता कौन सा रहेगा, फिर कौन सी गली आएगी, तो नए नए स्पॉट ढूंढना, नई जगह ढूंढना, ये मेरी और मेरी फ्रेंड्स लोगों की भी हॉबी थी। तो स्कूल डेज में भी हम साइकिल चलाएंगे, इस गली से कहाँ पे रास्ता जाएगा, तो एवरी डे हम रास्ता ढूंढते थे कि कहाँ जाएगा। ये एक मेरी हॉबी थी, एक अलग हॉबी है ये। और फिर न्यू टेक्नोलॉजी जो अभी अभी है पुणे में, कि नए तरीके के घर देखना, जाके खुद जाके फ्लैट देखना, किस तरह से ये घर बनाते हैं, कैसा आर्किटेक्चर है, कैसे डिजाइन किया है, इंटीरियर डिजाइन किस तरह से किया है, तो इसमें मुझे बहुत रुचि है। जैसे आपके एक इंटरव्यू में मैंने सुना कि आप आर्किटेक्ट बनना चाहते थे,
0: जी जी जी
1: तो इस तरह का मुझे भी एक शौक था कि किस तरह से ये होता है, तो ये एक मुझे हॉबी है सर।
0: वेरी
1: आज
0: नाइस।
1: भी मैं वो फॉलो करती हूँ, कभी मुझे वक्त मिलता है संडे सैटरडे तो मैं वहां जाती हूँ, अलग अलग तरीके के घर देखती हूँ, और पुराने घर भी देखना पसंद करती हूँ, पुराने वाड़े यहाँ पे है पुणे में, किस तरह से लोग रहते थे, कैसे उनका लाइफ रहता होगा, तो ये देखना भी मैं पसंद करती हूँ।
0: बहुत खूब
1: और एक हॉबी है
0: जी,
1: अच्छे लोगों से मिलना और उनको सुनना,
0: ओके,
1: ये बहुत अच्छा लगता है मुझे, बहुत अच्छा लगता है।
0: कमाल है, ये सचमुच अच्छी हॉबीज हैं। सिंगिंग तो देखिए वो तो आपकी जिंदगी हो गई, वो तो है ही है, उसको तो आप अपने आप से डिटैच कर ही नहीं सकते। हॉबीज वो होती है जिसमें हम एक अलग तरीके से उसको एंजॉय करते हैं, अपने वक्त में गायब हो जाते हैं, भूल जाते हैं अपने आप को, एक अलग तरीके की हॉबी। अब विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट टू एवरी लिसनर, अब कई बार लोग कहते हैं कि वॉचिंग क्रिकेट इज माई हॉबी, तो वो बात मुझे समझ नहीं आती, क्योंकि वॉचिंग क्रिकेट मतलब अगर आप हॉबी की डेफिनेशन देखें डिक्शनरी में जाके तो वो ये नहीं है। खैर एनीवेज हम जानने देते हैं उस बात को। तो चलिए दोस्तों सुने एक प्यारा सा गीत रोहिणी जी की ही आवाज में।

0: वेरी नाइस, बहुत सुंदर गायकी। डॉक्टर रोहिणी, अब हम हमारे प्रोग्राम की उस जगह आ गए हैं जहां पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हमारे सुनने वालों के लिए, नए सिंगर्स के लिए कुछ मैसेज दीजिए, कुछ कहिए उनसे।
1: ओके, नए सिंगर्स के लिए या सुनने वाले सबको एक बात मैं कहना चाहूंगी कि हर एक पर्सन को भगवान ने एक आर्ट दिया है, एक स्किल दिया है। वैसे तो सॉरी सर, वैसे तो जिंदगी कितने है ब्रेड एंड बटर के लिए सब प्रोफेशन में है, लेकिन अपना पैशन फॉलो करना बहुत जरूरी है। हमको जो भगवान ने स्किल दिया है या आर्ट दिया है वो ढूंढ निकाले, हर एक को स्किल दिया है तो वो ढूंढ निकालना अपना काम है, क्योंकि सभी को थोड़े वक्त के लिए यहाँ जिंदगी मिली है। जब हम इसके बाद भगवान के पास जाते हैं और वो पूछेगा कि आपको मैंने जो स्किल दिया आपका, आपने उसका क्या किया, तो हम कहेंगे, मैं कहूंगी मैं डॉक्टर बन गई, मैंने ये किया। वो ठीक है, वो अपने ब्रेड एंड बटर के लिए किया या लोगों की सेवा की तो अच्छा किया, लेकिन मैंने तुम्हें जो आर्ट दिया था उसका तुमने क्या किया। तो मैं कहूंगी, सपोज मैं कहूंगी अरे नहीं मैंने कुछ नहीं कर पाई, तो वो कहेगा चलो वापिस आपको एक अगला जन्म लेना पड़ेगा और वो स्किल या आर्ट आपको यूज करना पड़ेगा। तो इसी जिंदगी में क्यों ना हम ये सब ढूंढ के निकाले। 64 कला है दुनिया में, तो उसमें की एक कला भी हम निपुण उसमें हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। वो फॉलो करो, अपना पैशन फॉलो करो, अच्छे से जियो और जीने दो, हंसते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, दोस्तों से मिलते रहो और अपनी जो मन की बात जो है लोगों को, मतलब कि अपने दोस्तों से शेयर करते रहो। यही जिंदगी है, क्योंकि आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस यही एक पल है, और ये पल जो है वो हम सेलिब्रेट करते जाए तो जिंदगी बहुत हसीन है। सबको हेल्प करते रहो और एंजॉय करो जिंदगी में, यही मेरा सबके लिए एडवाइस है सर।
0: बहुत सुंदर संदेश, बहुत प्यारा संदेश दोस्तों आपने सुना। डॉक्टर रोहिणी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपके गीत सुने, आपसे बातें की।
1: थैंक यू सर,
0: बहुत
1: थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर, आपका शुक्रिया, आपके पूरे टीम का, राज सर, आप समीर सर और पूरे सुनने वाले ऑडियंस का, सबका शुक्रिया करती हूँ। गुड नाइट, थैंक यू सर,
0: थैंक यू। बेहद शानदार गायकी, बेहद शानदार टैलेंट, एक और हसीन संगीत और गीत से भरी हुई शाम के लिए कल फिर हाजिर हो जाऊंगा एक नए टैलेंट के साथ। सुनना ना भूलिएगा।

नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज के कलाकार के इस प्यारे से प्रोग्राम में, जहां कुछ ख्वाब आवाज बनकर सजते हैं, कुछ जज्बात गीतों में ढल जाते हैं, और जब दिल गाता है तो हर सुनने वाला अपना सा लगने लगता है। आज हम लेकर आए हैं कुछ ऐसे ही कलाकार जिनकी आवाज में सच्चाई है और सुरों में जादू। तो चलिए इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करें।

0: आज के कलाकार का एक और बहुत ही पवित्र, बड़ा ही प्यारा, क्यूट, मासूम सा एपिसोड लेकर मैं हाजिर हुआ आपके साथ। दोस्तों, आज हमारे साथ जो टैलेंट है, जो प्रतिभा है, जो गायिका है, उनसे बात करके मुझे तो हमेशा बहुत मजा आता है। आज आप उनकी आवाज सुनेंगे तो आपको भी बड़ा मजा आने वाला है। हमारी प्रतिभा है मीना अय्यर मैम, और मैं मीना अय्यर मैम से रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे मैं हमेशा करता हूं, भाई मैं जानता हूं मीना मैम को, लेकिन आप लोग जानिए ना, उनकी आवाज में जानिए, उनसे बात कीजिए। जब वो आपसे बात करेंगी तो आपको पता चलेगा कौन है वो। तो मीना मैम, हमारे सुनने वालों के लिए बोलिए ना, आप कौन है, कहाँ है, क्या करती है।
1: जी, सारे श्रोताओं को सबसे पहले मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुंबई में रहती हूँ, गाना गाती रहती हूँ, सुनती भी रहती हूँ बहुत सारे कलाकारों को, वेदांत सिखाती हूँ, और जैसे हर कोई हाउसवाइफ काम करती है वैसे काम भी करती हूँ।
0: ऑलराइट, ब्यूटीफुल। ये मतलब ठीक है, आपने बड़े ही अम्बली और बड़े ही प्यार से कह दिया कि हाउस वाइफ।
1: हाँ, यथार्थ है भाई।
0: हाँ, तो लेकिन वो सबसे बड़ा कर्तव्य है, सारी सारी दुनिया उसी से चल रही है। हम जाके कॉर्पोरेट ऑफिस में बैठ के खूब सारे कागज के काले पीले कर देते हैं और हमको लगता है दुनिया ऐसे चल रही है। नो, रात में जाके खाना ना मिले ना तो सब खत्म। हाँ, फिर सारा संगीत निकल जाता है।
1: कॉर्पोरेट का काम भी अपने वक्त में किया ना, 20 साल किया।
0: ये आपने बताया था मुझे। तो दोस्तों, ये हैं मीना मैम, बहुत ही खुश मिजाज, बहुत ही हंसती हुई और सीरियस पढ़ाई करती हुई वेदांता, इस तरीके की बातें और मेडिटेशन, एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच मीना मैम डज। मजेदार वाली बात है कि बहुत ही प्यारी गायकी भी है मीना मैम की। तो चलिए ना, फिर आज हम मीना मैम की गायकी काबिलियत उठाते हैं, सुनते हैं उनका ये प्यारा सा गीत जो उन्होंने हमारे लिए रिकॉर्ड किया।

0: बहुत खूबसूरत। मीना मैम, मैं मानता हूं आज के कलाकार फैमिली में आप नई नहीं हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आपको जानते भी हैं, बट फिर भी बहुत से ज्यादा लोग हैं जो आपको नहीं जानते हैं। तो आपकी जो गाने गाने की जो प्रतिभा है सिंगिंग, वो कब शुरू हुई, कहां से शुरू हुई?
1: कहा जाए तो जब से होश संभाला तब से मैं गा ही रही।
0: वाओ।
1: लेकिन उसको आगे ले जाने के लिए मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि ऐसे एक माहौल में मैं पहुंच जाऊं जहां ये और पनप सके।
0: ओके।
1: तो मेरे ग्रेजुएशन होने के बाद एक अखबार में मैंने एक इश्तेहार देखा कि नीडेड एन असिस्टेंट फॉर द A&R डिपार्टमेंट एट HMV।
0: His master's voice.
1: हाँ,
0: ma'am?
1: मैंने हाँ मैंने बोला ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा। तो आई अप्लाइड, मैंने कहा ठीक है जो भी आएंगे लेट मी ट्राई एटलीस्ट। एंड मेरी खुशकिस्मती ये थी कि मेरे मौसा जी वहाँ HR के हेड थे। हालांकि उन्होंने इंटरव्यू नहीं लिया, A&R डिपार्टमेंट के वाइस प्रेसिडेंट ने लिया था मेरा इंटरव्यू। और 300 जनों में सिर्फ 2 सेलेक्ट होने थे, तो भगवान की मर्जी थी कि मैं वहां पहुंचूं, तो मैं भी सेलेक्ट हो गई उसमें।
0: All right.
1: तो 1981 आई जॉइंड HMV या एज द रिकॉर्डिंग असिस्टेंट। रिकॉर्डिंग असिस्टेंट माने रिकॉर्ड करने वाली बात कोई नहीं थी, आर्टिस्टों की देखभाल करनी होती थी, और जब रिकॉर्डिंग हो जाए तो साइड ए में क्या आएगा साइड बी में क्या आएगा वो मैं तय करती थी।
0: अच्छा, कैसेट्स के ऊपर? कैसेट्स के ऊपर या वो रिकॉर्ड्स के ऊपर?
1: LP रिकॉर्ड और कैसेट दोनों। बड़ा मजेदार काम था। तो उसमें सब म्यूजिक डायरेक्टर, सिंगर्स, लिरिसिस्ट, फिल्म प्रोड्यूसर्स, सबसे मुलाकात होती रहती थी।
0: क्या बात है। तो आपकी जो गायकी की शुरुआत हुई वो वहीं से हुई?
1: नहीं, वहां तो मैं सबको सुन रही थी ना।
0: फिर
1: मेरा गाना तो बचपन से घर में ही चल रहा था, स्कूल में गाया, कॉलेज में गाया, किसी फंक्शन में गाया, यू नो।
0: ऑलराइट, ब्यूटीफुल।
1: हाँ।
0: तो दोस्तों, आपने जाना बचपन से गाते गाते, और आई मस्ट से मीना मैम जो है बहुत ज्यादा फॉर्चुनेट रही की, और आई सिंसियरली फील कि हमारे सुनने वाले बहुत सारे लोगों को, आई थिंक मोर देन 80% जो हमारे लोग हैं, हमारे जो आज के कलाकार की फैमिली है जो सुन रहे हैं, उनको HMV पता होगा, हिज मास्टर्स वॉइस। हाउ क्यूट। उस जमाने में वो LPs बनते थे, रिकॉर्ड्स, काले रंग के डिस्क जैसे। हो सकता है आज की जनरेशन उनको फोटोज में देखती हो, बट दोज वर ब्यूटिफुल डेज। ग्रामोफोन होते थे घरों में और उसके ऊपर वो LPs बजते थे। So, those were the golden eras. Okay. तो वहां पर मीना मैम थी, pretty fortunate, I must say, और इस तरीके से उनके गाने की शुरुआत हुई। तो आइए ना, फिर शुरुआत तो हो गई, अब एक प्यारा सा गीत भी सुने मीना मैम की ही आवाज में।

0: अमेजिंगली ब्यूटिफुल. तो मीना मैम म्यूजिक ओके, बचपन से आप गा रही थी
1: जी,
0: अच्छी बात हो गई. बट प्रभावित किससे थी, किससे इंस्पायर्ड थी आप? किसी को तो देखा होगा कि ऑलराइट मे बी शमशाद बेगम, क्योंकि आप तो ओल्ड स्कूल हो ना, तो
1: मे बी ओल्ड भैया.
0: या दैट इज ट्रू. देखो उसमें तो कोई दोराय नहीं है, बट मे बी गीता बाली, मे बी यू नो फ्यू अदर सिंगर्स. तो एनीवेज आप किससे इंस्पायर थी?
1: लता मंगेशकर पहले तो
0: ओके,
1: एंड गीता दत्त, आशा जी. अब किसी का नाम ना लूं ऐसे नहीं हो सकता. लता जी, यस लता जी वाज फर्स्ट टू इम्प्रेस. एंड एम एस सुब्बलक्ष्मी से मैं बहुत ही प्रभावित रही.
0: राइट, अमेजिंग.
1: क्योंकि उनकी संस्कृत की जो डिक्शन थी उससे, और वो जब गाती थी तो भक्ति बह उती थी उनके मुंह से. आई रियली लव्ड हर. या
0: ब्यूटिफुल. दोस्तों आपने गौर किया, मीना जी ने एक बहुत ही प्यारा शब्द इस्तेमाल किया है जो बहुत बहुत सारे लोगों की राडार में नहीं है, मतलब आपके कॉन्शियंस में नहीं है. दैट इज डिक्शन. संस्कृत का डिक्शन उन्होंने बोला. एंड ये डिक्शन जो वर्ड है ना, ये मेरा भी बहुत बहुत फेवरेट है, क्योंकि मेरे जो वॉइस ओवर के जो टीचर्स हैं उन्होंने मेरे को खूब पीट पीट के ये सिखाया है. दे ऑलवेज केप्ट ऑन सेइंग दैट ब्लडी हेल यू कीप वर्किंग ऑन योर डिक्शन. प्रोनंसिएशन एंड डिक्शन दो चीजें हैं जो मतलब खास करके मेरे और आपके फील्ड से जुड़े हुए लोगों के पास तो होनी ही चाहिए. गौर कीजिए ना, किसी का भी आप गाना सुनिए, चाहे वो लता हो, चाहे वो आशा जी हो, चाहे वो मोहम्मद रफी हो, उनकी स्पीच कितनी क्लियर होती है. माय गॉड, एक एक वर्ड, एक एक लेटर, एक एक चीज कानों को सुनाई देती है. कहीं पर भी गोफिंग अप नहीं होता. हाउ ब्यूटिफुल. चलिए तो फिर आगे बढ़ते हुए एक और प्यारे से गीत का आनंद पहले उठाएं, एंड देन विल कम बैक टू टॉक टू मीना मैम.

0: बहुत खूब। अब हम सुन भी रहे हैं आपको, अब भी आपकी आवाज की लरज, आपकी आवाज का टेक्सचर हमको सुनाई दे रहा है, फिर भी आप क्या करती हैं अपनी आवाज को मेंटेन करने के लिए? कैसे आप, हाउ डू यू टेक केयर ऑफ योर वॉइस, वॉइस कॉर्ड्स, ट्रैकिया, लैरिंजियस, इन सब लैरिंग्स, इन सब का कैसे ख्याल रखते हो आप?
1: पहली बात तो सतत गाते रहना चाहिए।
0: वाह, okay.
1: कुछ ना कुछ,
0: okay.
1: दिन में एक घंटा बोलिए, आधा घंटा बोलिए, गाने से रिश्ता हमेशा जोड़े रखना चाहिए, सबसे पहली बात तो वो। दूसरा, बाय पर्सनल एक्सपीरियंस, जब भी कुछ ठंडी चीज खा लेती हूँ तो मुझे थोड़ी तकलीफ हो जाती है, तो नाउ फॉर द लास्ट सो मेनी इयर्स मैं कुछ भी ठंडा लेती नहीं, कुछ भी नहीं, ना पानी, ना आइसक्रीम, ना दही, ना कुल्फी, ना कुछ भी, कुछ भी नहीं। और तीसरी चीज मैं जो करती हूँ कि हमेशा गर्म, मतलब गुनगुना पानी ही पीना, इवन रूम टेम्परेचर वाला पानी नहीं। और उस पानी में बड़ा सा पतीला लेके सुबह सुबह मैं गर्म करके रख देती हूँ उसको, उसमें थोड़ा जीरा और अजवाइन डाल के, तो दैट अजवाइन कीप्स माय थ्रोट क्लियर एट ऑल टाइम्स।
0: ऑलराइट, सो दोस्तों, मीना जी की अपनी पर्सनल टिप्स हैं, ये पर्सनल रेसिपी है अपनी आवाज को बिल्कुल फिट रखने के लिए। बिकॉज मीना मैम, जिस तरीके से हम गाने सुन रहे हैं, उनके गीत सुन रहे हैं, वो तो एक बात हुई, उसके अलावा मीना मैम भजन्स भी करती हैं, देन स्टेज परफॉर्मेंसेस भी हैं, तो वहां पर अपने आवाज का ख्याल तो रखना ही पड़ेगा। एंड मोर ओवर, मुझे लगता है 80% से ज्यादा लोग हमारे जो आज के कलाकार फैमिली के हैं, वो सब ठंडा तो छोड़ ही चुके होंगे, मुझे ऐसा फील होता है। और जिन्होंने ठंडा ले रखा है, अभी भी आइसक्रीम खाते हैं या कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, आई मीन हैट्स ऑफ टू देम, भाई बड़े हिम्मत वाला काम है आपका कि ठंडा खा के भी आप गा पाते हैं। बट बी केयरफुल, आप छोड़ देंगे तो बेहतर होगा। चलिए आगे बढ़ते हुए, जैसा मेरा मैम ने कहा कि गाते रहिए इज द फर्स्ट थिंग, क्या बात है, तो आई विल स्टार्ट डूइंग इट टुडे। ओके, चलिए दोस्तों, एक प्यारे से गीत का आनंद पहले उठाएं। मीना मैम ने हमारे लिए उसको प्यार से तैयार किया।

0: Meera ma'am, of course, you had been singing from your childhood.
1: Yes.
0: और फिर इसके बाद HMV, wow. तो बहुत सारे एग्जीबिशंस या परफॉर्मेंसेज, स्टेज परफॉर्मेंसेज, नॉन स्टेज परफॉर्मेंस देखे नहीं, दिए भी होंगे ना आपने तो. तो अपना कोई बहुत, आई परफेक्टली अंडरस्टैंड, कोई भी परफॉर्मेंस होता है ना वो अपने आप में एक रिमेम्बरेंस होती ही है, बट स्टिल कोई सबसे अच्छी सी प्यारी सी याद हमें बताइए जो आपकी परफॉर्मेंस की रही हो कि हाँ दैट वाज वन परफॉर्मेंस व्हिच आई लाइक द मोस्ट. ऐसा
1: दो एक्सपीरियंसेस हैं. एक तो फर्स्ट टाइम मैं उत्तरकाशी गई थी फॉर अ स्पिरिचुअल कैंप, वहां चिन्मय मिशन का आश्रम है. तो फर्स्ट डे एक दिन शाम को हम पहुंचे, अगले दिन दोपहर में we all were taken for a dip in the Ganges. उसके किनारे ही हमारा आश्रम है. So we went and came and then evening the camp was to start. अब जब कैंप शुरू होता है तो कैंप आचार्य ने कहा कि पहले मीना एक भजन सुनाएगी, उसके बाद हम शुरू करते हैं कैंप, जो भी टेक्स्ट ले रहे थे. तो I was so amazed at my singing. अभी भी मैं याद करती हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं. देर वॉज अ कम्प्लीट, क्या बोलते हैं, मेक ओवर बोलते हैं ना वॉइस का. वो गंगा जी में डिप लेने से हुआ या उनके आशीर्वाद से हुआ या हमारे गुरुदेव बड़े खुश हुए कि मैं वहां पहुंच गई, उसका ग्रेस था. बट आई हैव स्टार्टेड सिंगिंग सो मच बेटर After my first dip in the Ganges at Uttarkashi. There she is called Bhagirathi.
0: Mm-hmm.
1: I can never forget that experience.
0: I get it.
1: Yeah. और दूसरा हुआ जब मेरा कीमोथेरेपी चल रहा था in 2021. तो अचानक से एक मैडम का फोन आया कि हमको आषाढ़ी एकादशी, वो महाराष्ट्र में बहुत ही इम्पॉर्टेंट दिन होता है विठला डेटी के लिए. तो उन्होंने कहा आषाढ़ी एकादशी के दिन हमको आपके मराठी अभंग का प्रोग्राम चाहिए, आप करेंगी क्या? तो मैंने हाँ बोल दिया. फिर घर वाले बोलते हैं कि भाई यू विल बी गोइंग थ्रू दिस, यू नो, रिएक्शंस ऑफ द कीमोथेरेपी, विल यू बी एबल टू सिट डाउन फॉर 80-90 मिनट्स एंड परफॉर्म? मैंने कहा वो विठला ही कर देगा, नो प्रॉब्लम. एंड आई एक्चुअली सैट एंड सैंग फॉर 90 मिनट्स. एंड उस दिन जितने मुझे कॉम्प्लीमेंट्स मिले, यू नो, मराठी सिंगर, आई फॉरगेट द नेम, शी सेड योर डिक्शन इज इन एवरी लैंग्वेज इज सो गुड, यू सैंग इन मराठी विथ सो मच ईज, बिल्कुल नहीं लगा कि आप दक्षिण भारत से हो. आई थिंक दैट वॉज अ ह्यूज कॉम्प्लीमेंट ड्यूरिंग माई सिकनेस बेसिकली, एंड इट जस्ट लिट मी अप टोटली.
0: ऑलराइट, अमेजिंगली ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस आई मस्ट से. इस बात से मुझे याद आ रहा है, मेरे एक मित्र हैं, उनके साथ में किसी टेम्पल पे गया था एंड वी हैड बीन ड्राइविंग और ही वॉज काइंड ऑफ रेकलेसली ड्राइविंग. तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा अरे राजू भैया ये क्या कर रहे हो, ध्यान से चला लो यार गाड़ी. तो उन्होंने कहा कि मैं तो चला ही नहीं रहा हूं. मैं तो चला ही नहीं रहा हूं. वो तो मतलब उनको गॉड को मतलब ही कॉल्स सेठ जी कि वो सेठ जी चला रहे हैं, मैं तो चला ही नहीं रहा हूं. तो आपने अभी कहा ना कि विठला गाएंगे, आई मीन वो कराएंगे, मुझे नहीं पता. द सेम वे हाउ ब्यूटिफुल इज दैट, यू हैंड ओवर योर सेल्फ टू द गॉड, यू प्रे and then just feel the difference and just feel the miracle happening. तो वही हुआ प्यारा सा गीत. आइए एक और प्यारा सा गीत का लुत्फ उठाएं पहले मीना मैम की आवाज में, फिर आगे बढ़ते हैं.

0: ब्यूटीफुल। दो ऑफ कोर्स अभी तक आपकी बातचीत से हमें हल्का हल्का सा अंदाजा तो लग चला है, लेकिन फिर भी आपकी जो क्रिएटिविटी है, आपकी जो सिंगिंग है, आपके जो टैलेंट है, आपका जो म्यूजिक है, उसको क्या चीज मोटिवेट करती है? क्या चीज है ऐसी जो आपको पुकारती होगी कि आइए ना मीना जी गाते हैं? ऐसा क्या है?
1: सबसे पहले तो नेचर मुझे बुलाता है।
0: ओके।
1: जब कभी भी किसी सुंदर जगह पे पहुंचू, कोई पहाड़, समुंदर, कोई नदी, कहीं भी ऐसी नेचुरल ब्यूटीफुल प्लेस में पहुंचू, तो अपने आप में गाने लगती हूँ। मुझे याद है हम लोग नॉर्वे गए थे ऑन हॉलीडे, और उस दिन एकादशी थी, और मेरी आदत है कि विष्णु सहस्रनाम उस दिन बोलना ही बोलना है। तो मैं वहां, देर वॉज दिस फ्योर्ड बोलते हैं उसको उधर, देर वेर ओनली सम 8 हाउसेस देर एंड वी वेर इन वन ऑफ देम, और वहां एक स्ट्रीम बह रही थी, मैं वहीं बैठ गई और पूरा सहस्रनाम पढ़ा। मुझे कुछ अता पता नहीं था कि अगल बगल में क्या हो रहा है, वॉज कंप्लीटली लॉस्ट। तो प्रकृति को देखते ही ना मैं तुरंत संगीत मेरे में आ जाता है, और उनमें भी एक तरह का संगीत है, किसी बर्ड्स के चहकने में, एनिमल्स के आवाजों में, बच्चों की किलकारियों में, उसमें भी संगीत मुझे सुनाई देता है। आई गेट इंस्पायर्ड बाय ऑल दिस।
0: वाओ, दैट इज सो ब्यूटीफुल दोस्तों। बस यहाँ पर मैं एक चीज मेंशन जरूर करना चाहूंगा, आई नो आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने कहीं पर पढ़ा ही था इस चीज को कि म्यूजिक का एक वेवलेंथ होती है, एक तो वो शायद 480 होती है या कुछ ऐसा है, आई एम नॉट श्योर हेयर, और अक्रॉस द वर्ल्ड सारे के सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स उसी के ऊपर ट्यून किए गए हैं, चाहे फिर वो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स हो, विंड इंस्ट्रूमेंट्स हो, गायकी हो, कुछ भी हो, वो सारे के सारे जो सुर हैं, ताल, सारे गामा वगैरह वगैरह, वो उसी वेवलेंथ पर सेट किए गए हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, सारे म्यूजिशियंस ने मिलकर तय किया है, एंड सरप्राइजिंगली दैट वेवलेंथ इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम नेचर। झरने का पानी जो गिरता है उसकी जो आवाज आती है वो वही वेवलेंथ है, चिड़ियां जो बोलती हैं वही वेवलेंथ है, जो मीना मैम ने बताया ना। तो दोस्तों दिस इज साइंटिफिक, यू कैन सर्टनली गूगल इट, गूगल की इतनी तो मदद लीजिए, देखिए क्या है वहां पर। बहुत खूब, चलिए एक प्यारे से गीत का आनंद उठाएं यहां पर, डूब जाएं इन लहरियों में, आइए ना सुनते हैं।

0: बहुत बढ़िया, अमेजिंगली ब्यूटिफुल। अब हम लोग आज की दुनिया में रहे हैं, आप भी बहुत सारे परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं, और जो इजीली अवेलेबल टूल आज की डेट में हमारे पास है उसको भी हम यूटिलाइज कर रहे हैं, इवन राइट नाउ एट दिस मोमेंट, दैट इज सोशल मीडिया। सो कलाकारों के लिए, गायकों के लिए, चलो मैं बात नहीं कर रहा रील बनाने की, वेर यू शो योर फेस एंड देन यू एक्ट, मैं बात कर रहा हूँ गीतकारों की, सिंगिंग वालों की, जो सिंगर्स हैं, उनके लिए सोशल मीडिया कितना इम्पोर्टेंट है मैम, वो बताइए।
1: बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर कोई किसी कॉन्सर्ट में पहुंच नहीं सकता और हर कोई किसी रिकॉर्डिंग को लाइव सुन नहीं सकता
0: जी।
1: तो ऐसे जब फीचर होते हैं तो दुनिया भर में आप अपनी आवाज को पहुंचा सकते हो और सब लोग आपके नाम के साथ एक चेहरा भी देख सकते हैं। नहीं तो व्हेन वी वर स्मॉल, मोहम्मद रफी या मुकेश या किशोर कुमार, दे वर जस्ट नेम्स फॉर अस, हमको पता ही नहीं था कि इनकी शक्लो सूरत क्या है, कैसी है, बट दिस हेल्प्स अ लॉट
0: ऑफ कोर्स।
1: हाँ,
0: हाउ ब्यूटीफुल इज दैट,
1: माने यश और कीर्ति में बड़ा काम करता है।
0: हाँ, मोरओवर अपने को अच्छा लगाने में भी काम करता है,
1: कॉन्फिडेंस बढ़ता है,
0: कॉन्फिडेंस बढ़ता है ना, वरना तो आप ठीक है अकेले अकेले गाते रहिए और
1: जी।
0: क्योंकि सीरियसली मैं यहाँ पर अपने प्लेटफॉर्म पे बोल सकता हूँ, क्योंकि मेरे सारे आज के कलाकार के जितने भी मेंबर्स हैं वो मेरे परिवार वाले हैं, एंड आई एम नॉट स्केयर्ड ऑफ देम एंड दे लव मी एंड आई लव देम, तो इसलिए मैं बिंदास बोल सकता हूँ। बहुत बहुत सारे इंटरव्यूज लिए मैम, इतने सारे लोगों से, आप लोगों से बातचीत की है, बहुत बड़े बड़े पोजीशंस पर बैठे हुए, बहुत बड़े पढ़े लिखे लोगों से भी जब मैंने इंटरव्यू किया तो वो भी बहुत बुरी तरीके से घबरा रहे थे, दे वर अफ्रेड, दे वर स्केयर्ड इन टॉकिंग टू मी, व्हाई,
1: क्यों,
0: वही तो मैंने जानना चाहता था कि भाई आफ्टर ऑल व्हाई, कहते यार पहली बार परफॉर्मेंस कर रहे हैं, ऐसा कभी हुआ नहीं, ऐसा रेडियो पर बात कभी की नहीं। मैंने कहा कम ऑन, मैं आपका दोस्त हूं, आपसे बात कर रहा हूं, आपके परिवार वाला हूं और आप मेरे, बट द अंडरलाइंड स्टेटमेंट इज मैसेज इज कि अपने आप को ना दुनिया के सामने दिखाना, बताना, अपनी प्रतिभा को लोगों के सामने रख देना आसान काम नहीं होता दोस्तों।
1: बिल्कुल,
0: आप आराम से घर में गा लीजिए, बाथरूम में छुपके गा लीजिए, दैट इज ओके, लेकिन एक बार सामने आते हैं ना तो अलग ही माहौल होता है।
1: करेक्ट,
0: आई अंडरस्टैंड, एंड सोशल मीडिया ने वहां पर हम सभी की बहुत मदद की है। चलिए तो बी ब्रेव दोस्तों, और तब तक एक गीत का भी आनंद उठाइए मीना मैम की ही आवाज में।

0: बहुत खूब बहुत खूब।
1: मैम आपकी गायकी में, आपकी पैशन में, आपके हॉबी में, कह लीजिए हॉबी तो नहीं कहूंगा पैशन कहूंगा, आपका जो सिंगिंग है उसमें आपके फैमिली ने कैसे सपोर्ट किया, हाउ डिड दे सपोर्ट यू?
2: मेरी माँ जो थी, अभी भी हैं सॉरी, उन्होंने ऐसी रिकॉग्नाइज्ड माय एबिलिटी टू सिंग, क्योंकि बचपन में मैं चर्च में भी कॉयर गा के आ गई हूँ, यानी जहाँ किसी ने बुलाया आई यूज्ड टू गो एंड सिंग।
1: अरे वाह, दैट्स नाइस।
2: तो शी एनरोल्ड मी इनटू लर्निंग यू नो सम क्लासिकल म्यूजिक, बट आफ्टर अ कपल ऑफ इयर्स आई हैड टू स्टॉप बिकॉज स्टडीज वेयर मोर इम्पोर्टेंट। उन्होंने कहा पहले पढ़ाई पूरी करो, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, उसके बाद फिर ये सब करते रहना, अभी के लिए इतना बस है। और आज की तारीख में मेरे हस्बैंड बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव हैं हर एस्पेक्ट में, एंड मेरे लिए हर तरह की सुविधा भी बना देते हैं। अभी घर में अगर प्रोग्राम है तो ही विल सेट अप एवरीथिंग, या किसी एक्सटर्नल हेल्प से माइक्स लगाना और सिस्टम लगाना और जो भी है, उनका खाना पीना सारी व्यवस्था सब कर देंगे।
1: हाउ क्यूट,
2: वेरी वेरी सपोर्टिव ही इज, बिकॉज ही अंडरस्टैंड्स दैट माई हीलिंग हैपन्स विथ माई म्यूजिक, एंड एवरीबडी एल्स ऑल्सो फील्स गुड विथ म्यूजिक हैपनिंग एवरी टाइम इन द हाउस और एनीवेयर एल्स। या
1: तो दोस्तों ये एक मैसेज है, थेरेपी, म्यूजिक थेरेपी हेल्प्स n number of people out of n number of ailments. तो अपने आप को म्यूजिक के हवाले कर दीजिए ना और फिर देखिए चमत्कार। आइए अगला गाना हम पेश करते हैं मीना मैम के ही हस्बैंड को डेडिकेट करते हुए, जो कि इतना सपोर्ट करते हैं उनको, इतने क्यूट क्यूट हरकतें करते हैं उनके लिए, सारे अरेंजमेंट्स, माइक सेटअप, खाना पीना वगैरह वगैरह। थैंक यू सो मच सर। लीजिए मीना मैम का ये गीत आपको डेडिकेटेड है।

0: बहुत बढ़िया मैम, ऐसा कौन सा आप क्या सलाह देना चाहेंगे जो आज के सिंगर्स हैं, उनको क्या सलाह देना चाहेंगे कि कैसे, हाउ शुड दे एक्चुअली परस्यू देयर पैशन ऑफ सिंगिंग, व्हाट शुड दे डू, एंड नंबर ऑफ टाइम्स उनकी हिम्मत टूट जाती होगी ना मैम?
1: अनेकों कारण है। अगर उनका ध्येय ये है कि मैं गाना गा के पैसे कमाऊं, बहुत बड़ा इंसान हो जाऊं, तो कुछ हद तक ही वो हो सकता है। अगर माय पर्सनल वे ऑफ ट्रीटिंग म्यूजिक इज कि मैं उस ऊपर वाले के लिए गाती हूँ, इवन इफ आई सिंग अ फिल्म सॉन्ग इट इज फॉर हिम, व्हेन आई सिंग किसी विरह का गाना है तो भी वो उसके लिए है। तो व्हेन यू इन्वॉल्व द सुप्रीम, सक्सेस विल डेफिनेटली फॉलो यू।
0: ओके,
1: और अगर पैसे के पीछे रहोगे ना तो कहीं ना कहीं जाके वो स्टैग्नेंट हो जाएगा। और जितना क्या बोलते हैं, बुरी आदतों से आप दूर रहोगे तो आपकी गायकी अच्छी रहेगी, जीवन भर रहेगी। और जैसे मैंने पहले भी कहा, रोज गाते रहना चाहिए। इट इज क्या इबादत का रूप है ये संगीत। उसको मतलब ऐसे वैसे ट्रीट नहीं करना चाहिए।
0: ब्यूटीफुल। सो दोस्तों, ठीक है, टेक इट योर वे, आपको जैसे समझ में आती हो। लेकिन जो मुझे सुनाई दिया जो मैसेज वो ये है कि आप अपने पैशन की पूजा कीजिए, उसको कैलकुलेट मत करिए कि इफ इट ऑल आई सिंग दिस मच विल कम, नो, जस्ट अपनी पूजा करते चलिए, अपने पैशन को परस्यू करते चलिए, क्या आएगा वो बाद में देखिएगा, क्योंकि अगर जैसे ही आपने उसके ऊपर फोकस किया, यू आर फिनिश्ड, खत्म। अम्बलनेस, आपकी किसी भी कलाकार की जो अम्बलनेस होती है,
1: इसके लिए हमको हमेशा एक उदाहरण मिलता है हमारे गुरुजी से कि जिस पेड़ में सबसे ज्यादा फल लगे हो ना,
0: वो झुका हुआ,
1: उसकी डाली हमेशा झुकी हुई।
0: राइट। हाँ। क्या बात कही है, बहुत खूबसूरत। बहुत खूबसूरत कि जो पेड़ में सबसे ज्यादा फल होता है वो झुका हुआ होता है। तो दोस्तों प्लीज, कहीं पर भी अगर घमंड आपके आसपास भी हो ना, तो निकाल दीजिएगा उसको। प्लीज डोंट थिंक दैट आई एम द वन हु इज रनिंग दिस शो। नो नो, हम सिर्फ एक माध्यम है, वी आर कोरियर्स, वी आर पोस्टमैन्स, बस हम इसके अलावा कुछ नहीं है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए एक बहुत ही प्यारा सा गीत सुन ले पहले मैंने माम का।

मीना मैम, थैंक यू सो वेरी मच. आपके साथ पहले भी दिव्य दर्शन के प्रोग्राम मैंने बनाया, उसमें भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा. एंड ये प्रोग्राम बनाना तो ये तो खैर मेरा, आई मीन आई लव दिस बेबी.